मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति

0: को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

कठिनाइयाँ कभी रास्ता नहीं रोकती, वे हमें मजबूत बनना सिखाती हैं। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अब जो भजन हम आपको सुनवाएंगे उसमें उस समय का वर्णन है जब रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने के बाद भगवान श्री राम उन्हें वन में जगह जगह पर ढूंढते हैं।

जिसे परमात्मा का आश्रय प्राप्त है उसे न तो किसी का भय है और न ही वह कभी किसी विपत्ति से घबराता है। ईश्वर उसका मार्गदर्शन करते हैं और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा कलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मान तक पीड़ा देने लगी। राजद्वार मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़ कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किस कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: लेंगे और किस्म का बढ़िया का चुनाव हम कर लेंगे तो फिर उस टाइम हमने पैदावार भी बढ़िया ही मिल लगी। तो इसमें भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि बात करें हम भाई जोबनेर ग्रीन है और आल ग्रीन है, HS23 है, तीन किस्में इसमें बताई गई हैं। पहली किस्म हम बात करेंगे आल ग्रीन की, इसकी पत्तियां एक समान हरी कोमल हो हैं, इससे 5-6 कटाई ली जा सके हैं, किस्म है आल ग्रीन। अगली किस्म है जोबनेर ग्रीन या ज्यादा उपज देने वाली किस्म है, इसकी पत्ती एक समान हरी मोटी रसीली, और जो आल ग्रीन किस्म बताई थी पहले डी, उसकी पत्तियां आते हैं थोड़ी ही बड़ी पत्ती इसकी पाई जा है, किस्म है या जोबनेर ग्रीन। तीसरी किस्म इसमें आ जाए है HS23, इसकी पत्तियां गहरी हरी मोटी बड़ी कोमल और जल्दी तैयार होने वाली किस्म है, पहली कटाई के लिए बिजाई के 30 दिन के बाद यह शुरू हो जाए है, यानी कि तैयार हो जाए है, और इस तम 6 से 8 कटाई ले सके हैं, किस्म है HS23। भाई ये तो थी किस्म, इब भाई अपने खेत की तैयारी, क्योंकि खेत की तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैदावार तो खेत में ही मिलेगी, तो अपनी जो खेत की जमीन है उसने बाद जोत कर बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, ऊँ तो पालक की जो बिजाई है वह सारी डाल की जमीन में हो जाए, लेकिन बलवी दोमट जमीन इसके लिए बहुत बढ़िया मानी जा है, जमीन ना अपनी ने 3-4 बार इसकी बाई जुताई करके ने तैयार कर लें, सुहागा पाटा ला लें, खेत ने एक सार कर लें, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बना लें, और मिट्टी समतल, पानी निकासी का इसमें साधन होना चाहिए, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। हाँ, जब हमें खेत ने तैयार करे हैं, पहली जो अपनी जुताई करे हैं, उस टाइम पे जो भी मार दो देसी खाद है, जितना भी है, चाहे 5-7 गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन हो पूरा तैयार खाद, वो अपने खेत में उस टाइम पे मिला। बाकी बिजाई के टाइम की बात करें तो भाई बिजाई का जो सही समय है इसका अगस्त लेकर और दिसंबर थी, कद्दे भी इसने हम बोस के हैं, लेकिन पालक की बिजाई साल में किसी टाइम भी हम तो कर ले हैं, लेकिन जो सही समय बताया गया वो अगस्त दिसंबर के बीच में अगर इसकी बिजाई करें हैं तो और भी बढ़िया पैदावार हमने मिल रहा है। बीज की मात्रा की बात करें तो अगर हमने 1 किले में पालक की बिजाई करनी है तो 8-10 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी, 8-10 किलोग्राम बीज बढ़िया किस्म, जुणसी हमने किस्म लेनी है, चाहे हम जोबनेर ग्रीन ले रहे हैं या फिर आल ग्रीन ले हैं या फिर HS23 लें हैं, कोई सी भी किस्म लें, 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी, और बिजाई हमने इसकी भाई खुड्डा में करनी है, लाइना में कह दें, और लाइन ते लाइन का जो फासला हमें रखना है वो 20 सेंटीमीटर का रखना है, और जो पौधे से पौधे का फासला इसमें रहेगा वो 5 सेंटीमीटर का हमने रख कर चलना है। बाकी जो रासायनिक खाद, इनकी मात्रा की बात करें तो देशी खाद तो हमने बता दिया कि भाई जितना भी आपने दो रहे, लेकिन हो बिल्कुल तैयार खाद, कच्चा खाद ना हो, क्योंकि अगर कच्चा खाद अपने खेत में दे दे हैं तो फिर दीमक की समस्या बढ़ती चली जा है, तो तैयार खाद हो, वो खेत की जब हम पहली जुताई करें उसे टाइम पर हमने खेत में मिला देना है। बाकी रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद इसमें 65 किलोग्राम तो यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, अगर 1 एकड़ में यानी कि 1 किले में इसकी काश्त कर रहे हैं तो 1 किले की मात्रा रहेगी 65 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। तो भाई यू हमने बिजाई के टाइम पे इसमें देना है, बाकी हमने सिंचाई का ध्यान रखना है, अगर बिजाई के टाइम पे सिंचाई हमने लग के कम है, नमी कम है अपने खेत में, तो फिर हमने बिजाई के तुरंत बाद एक हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि बीज जो है नमी मान के जल्दी उसमें अंकुरण हो जाए और सही तरीके से बढ़वार अपनी फसल ले ले। बाकी मौसम का हिसाब देख कर इसमें 8-10 दिन के अंतर पे हल्की हमने सिंचाई करते रहना है। बाकी भाई अपना निराई गुड़ाई का ध्यान रखें, 2-3 निराई गुड़ाई की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खरपतवार हैं, खरपतवार इसमें जमाव ना लेने दें, और ये पालक पालक की बात नहीं है, कोई सी भी हमें फसल ले हैं खरपतवार उसमें हमने नहीं होने देने हैं, निराई गुड़ाई करते रहें। तो भाई कुछ मोटी मोटी बात से अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपनी पालक की फसल से भरपूर फायदा ले पाओगे।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes and the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today till May 10th during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department said the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, Coastal Karnataka and Rayalaseema today. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143

किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और अब समय हो चला है कार्यक्रम रूपरेखा का।

कवि गोष्ठी श्रोता सुनेंगे शाम 7:30 पर। शाम 5:30 पर समय रहेगा युवा संसार कार्यक्रम का।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर कृषि संबंधी समस्या व समाधान विषय पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमेश कुमार यादव।

सुगम संगीत कार्यक्रम रात 8:25 पर, दिन में 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, और रात 8 बजे समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी रोहतक से प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

ज्यों ज्यों मेरे जीवन में सादगी बढ़ती गई, त्यों त्यों रोगी के लिए दवा लेने की पहले से जो अरुचि थी वह बढ़ती गई। जब मैं डरबन में वकालत करता था, तब डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता मुझे देखने आई थी। उस समय मुझे कमजोरी रहती थी और कभी कभी सूजन भी हो जाती थी। उन्होंने इसका इलाज किया और उससे मुझे आराम हुआ। इसके बाद देश लौटने तक कोई कहने लायक बीमारी हुई हो इसकी याद मुझे नहीं। जोहन्सबर्ग में मुझे कब्ज़ रहता था और जब तब सिर दर्द हो जाता था। दस्त की कोई दवा लेकर तबीयत को संभाले रहता। खाने पीने में परहेज तो सदा ही रखता था, पर उससे मैं पूर्णतया व्याधि मुक्त नहीं हुआ। मन बराबर कहा करता कि विरेचनों से मुक्ति मिल जाए तो अच्छा हो। इसी समय मैंने मैनचेस्टर में नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन अर्थात कलेबा त्याग संघ की स्थापना का समाचार पढ़ा। लेखक की दलील थी कि अंग्रेज़ बहुत बार और बहुत खाते हैं, रात को 12 बजे तक खाते रहते हैं और फिर डॉक्टर के यहाँ भटकते फिरते हैं। इस उपाधि से छूटना हो तो सवेरे का नाश्ता अर्थात ब्रेकफास्ट छोड़ देना चाहिए। मैंने देखा कि ये दलील यद्यपि मुझ पर पूरी तरह नहीं लगती थी, फिर भी अंशतः लागू होती है। मैं 3 वक्त पेट भरकर खाता था और दोपहर की चाय भी पीता था। मैं कभी अल्पाहारी नहीं था। निरामिषाहार में और मसालों के बिना जो जो स्वाद लिए जा सकते थे मैं लेता था। मैंने सोचा कि मैं सवेरे का खाना छोड़ दूं तो सिर के दर्द से ज़रूर छुटकारा पा जाऊं। मैंने सवेरे का नाश्ता छोड़ दिया। थोड़े दिन खला तो ज़रूर, पर सिर का दर्द तो चला ही गया। इससे मैंने ये नतीजा निकाला कि मेरी खुराक ज़रूरत से ज़्यादा थी। कब्ज़ की शिकायत इस परिवर्तन से नहीं गई। कूने के कट स्नान का इलाज करने से थोड़ा आराम मिला, पर जितना चाहिए थे उतना नहीं। इसी बीच उस जर्मन होटल वाले ने किसी दूसरे दोस्त ने मुझे जूस्ट की रिटर्न टू नेचर अर्थात प्रकृति की ओर लौटो नामक पुस्तक दी। मैंने मिट्टी के उपचार के बारे में पढ़ा। सूखे और हरे फल मनुष्य की कुदरती खुराक है। इस बात का भी इस लेख में जोरों से समर्थन किया है। केवल फलाहार का प्रयोग तो मैंने इस वक्त नहीं किया, पर मिट्टी का इलाज तुरंत शुरू कर दिया और उसका मुझ पर आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ। उपचार इस प्रकार था। साफ खेत की लाल या काली मिट्टी लेकर उसमें अंदाजे से पानी मिलाया, साफ पतले गीले कपड़े में लपेटकर पेट पर रखी और उस पर पट्टी बांधी। ये पुलटिस रात को सोते वक्त बांधता और सवेरे या रात को जब नींद खुलती तो खोल देता। इससे मेरा कब्ज जाता रहा। ये मिट्टी के उपचार मैंने उसके बाद अपने अनेक साथियों पर किए और मुझे स्मरण है कि शायद ही वे किसी पर निष्फल गए हों। देश में आने के बाद मैं ऐसे उपचारों के विषय में आत्मविश्वास खो बैठा। प्रयोग करने का, एक जगह जमकर बैठने का मुझे मौका नहीं मिला। फिर भी मिट्टी के और पानी के प्रयोग के विषय में मेरी जो श्रद्धा शुरू में थी लगभग वही आज भी है। आज भी मर्यादा के अंदर रहकर मिट्टी के उपचार खुद अपने ऊपर तो करता ही हूँ, अपने साथियों को भी काम पड़ने पर उसकी सलाह देता हूँ। अभी आपने मिट्टी और पानी के प्रयोग विषय पर गांधी जी के विचार सुने और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन।

0: इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा का अंक यहीं पर संपन्न हुआ।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। सुबह सवेरे कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र को। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

आवाज़ की दुनिया में ये हमको ले जाता था, ये रेडियो ही है साहब जो मन बहलाता था। कि नुक्कड़ की दुकानों पर, कभी अपने पुराने ठिकानों पर, चाय की चुस्कियों में तो कभी मंजिल पर पहुंचाने वाली बग्गियों में, हर जगह बस ये अपनी यादें छोड़ जाता था, ये रेडियो ही है साहब जो मन बहलाता था। बड़े ही नाजों से रखते थे इसे हमारे दादा, था इसका घर कच्चे मकानों में बना एक छोटा सा आला। दद्दू की कच्ची नींद को इसने सालों संभाला था, ये रेडियो ही है साहब जो मन बहलाता था। गांव की चौपालों पर एक मेला सा लग जाता था, जब क्रिकेट मैच रेडियो पर आता था। स्क्रीन की दुनिया को भी कब तक आंखें सहन करेंगी, सुकून तो इस दिल को आखिर रेडियो से ही पहुंचाता था, ये रेडियो ही है साहब जो मन बहलाता था। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता। और सभी को आकाशवाणी रोहतक के स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आकाशवाणी रोहतक हरियाणा का पहला रेडियो स्टेशन है जिसकी स्थापना 8 मई यानी आज ही के दिन 1976 में हुई थी। यह ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा है। यह हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रमुख मंच प्रदान करता है। हरियाणा की संस्कृति, लोकगीत, समाचार, कृषि आधारित कार्यक्रम और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम यहां से प्रसारित किए जाते हैं। यह केंद्र प्रसार भारती के अंतर्गत आता है और स्थानीय लोगों के लिए सूचना और मनोरंजन का एक भरोसेमंद साधन है। इस केंद्र की रेंज लगभग 47,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह केंद्र लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में भी सहायक रहा है। आज से कई वर्षों पहले गांव में मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो ही था। जब देश में हरित क्रांति आई तब इसमें सबसे बड़ा योगदान रेडियो का ही माना गया था। जब वैज्ञानिकों ने नए बीजों और दवाइयों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई, देश में सभी फसलों के लिए जो भी नए नए बीज अनुमोदित किए गए उनके बारे में किसानों को जानकारी सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही मिलती थी। रेडियो जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम रहा है। दूर दराज के इलाकों में जहां किसी की भी पहुंच नहीं थी, वहां पर भी रेडियो आसानी से पहुंच जाता था।

सुबह सवेरे कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और अब एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाने के लिए आप सभी अपनी गरिमामयी उपस्थिति के लिए सादर आमंत्रित हैं। इस समारोह में लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तिथि 8 मई 2026 यानी कि आज, समय प्रातः 10 बजे, स्थान राधा कृष्णन ऑडिटोरियम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, निवेदक समस्त आकाशवाणी परिवार। सूचना समाप्त हुई।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, आज के डिजिटल युग और इंटरनेट के समय दौर में रेडियो मनोरंजन, समाचार और सूचना का एक सशक्त, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। आज के समय में रेडियो के बहुत सारे फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसे सुनते हुए अपना दूसरा कोई भी काम, जैसे कि ड्राइविंग करना, खाना पकाना या दफ्तर का काम जारी रख सकते हैं। रेडियो बहुत ही किफ़ायती है, इसके लिए महंगे डिवाइस या इंटरनेट डेटा की ज़रूरत नहीं होती, जो इसे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बेहतरीन बनाता है। प्राकृतिक आपदाओं या संकट के समय जब इंटरनेट या फ़ोन का नेटवर्क ठप हो जाता है, तब रेडियो ही संचार का एकमात्र भरोसेमंद साधन होता है। रेडियो स्थानीय समाचार, मौसम की जानकारी और क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सुनने का सबसे तेज माध्यम है। यह टीवी या मोबाइल की तरह आंखों पर जोर नहीं डालता और ना ही इसकी लत लगती है। यह थकान कम करने और मूड को अच्छा करने का में सहायता करता है। बदलते डिजिटल परिवेश में भी रेडियो की प्रासंगिकता और उसका स्थान आज भी कम नहीं हुआ है, बल्कि उसने खुद को एक नए रूप में ढाला है। आज का रेडियो सिर्फ श्रव्य का एक माध्यम नहीं, बल्कि मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का एक विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है।

श्रोताओं, सोशल मीडिया के दौर में गलत जानकारियों के बीच रेडियो को सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जाता है। ग्रामीण और जमीनी स्तर पर संचार के प्रभावी साधन के रूप में रेडियो काम करता है। पारंपरिक रेडियो अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंच गया है। जी हाँ, अब आप आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रम केवल रेडियो डिवाइस के माध्यम से नहीं बल्कि मोबाइल ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं। मन की बात जैसे कार्यक्रमों ने रेडियो को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़कर उसे राष्ट्रीय संवाद का माध्यम बना दिया है। संक्षेप में, रेडियो अब सिर्फ ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं है बल्कि यह अपने डिजिटल और एआई सक्षम अवतार के साथ जन जन की आवाज बना हुआ है।

आते हैं। बुजुर्गों के लिए तो रेडियो एक दोस्त की तरह काम करता है, जिससे उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता। पुरानी फिल्में, पुराने गीत, समाचार बुजुर्गों को बेहद पसंद आते हैं। यह उन्हें पुरानी यादों में ले जाकर मानसिक रूप से सक्रिय रखने में सहायता करते हैं। और इसी तरह से महिलाओं के लिए भी रेडियो बहुत फायदेमंद है। यह उन्हें स्वास्थ्य, अधिकारों, रसोई और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। रेडियो युवाओं को अपनी आवाज़, कहानियाँ और प्रतिभा साझा करने का मंच प्रदान करता है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह युवाओं को रेडियो प्रोग्रामिंग, रिपोर्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग जैसे तकनीकी कौशल सीखने का अवसर देता है, जो कि उनके करियर में बहुत सहायक होते हैं। और श्रोताओं, बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों के विकास में भी रेडियो की भूमिका शिक्षाप्रद, मनोरंजक और कल्पनाशील होती है। यह बच्चों को कहानियाँ, कविताएँ और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनाकर भाषा कौशल, एकाग्रता और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। बिना स्क्रीन के यह श्रवण कौशल को विकसित करता है और ग्रामीण या दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का एक सुलभ साधन है। तो श्रोताओं, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो कि रेडियो के कार्यक्रमों से लाभान्वित ना होता हो।

श्रोताओं, आज आकाशवाणी रोहतक के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50 वर्षों का ये सफर केवल समय की यात्रा नहीं बल्कि अनगिनत सपनों, मेहनत, समर्पण और विश्वास की कहानी है। स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे आकाशवाणी परिवार को दिल की गहराइयों से एक बार ढेरों शुभकामनाएं।

और श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके ठीक बाद 8:15 पर अंग्रेज़ी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military

घूर के है जल ओटने न ढोर नहीं और मैं पीले बैठी ही वो भैया की साजे कु

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
3: एनपीएस पेंशन?
2: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
3: बुढ़ापा सुरक्षित?
2: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।

अरे एक फोटू में है बरमा जी, एक फोटू में है बरमा जी, है सृष्टि का कर देव सितारे। और एक फोटू में है लक्ष्मी माता, है विष्णु जी की पाटन हार। और एक फोटू

तनावत को होती हर देवता है देवर दान है एक फोटू में है हरी चंद और है मदनावत का है

एक फोटू में कैरसन छलिया उसे कंस को कुर्मी को मारे रया। एक फोटू में है भगत सुदामा भूखा वर्ण वेचा।

काया भी तेरी को ना क्यों कर रहा से।

आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे धर्मेंद्र कतलूपुरिया और साथी। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी रोहतक के स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर विशेष फोन इन कार्यक्रम।

0: सभी सुनने वालों को उषा मलिक का नमस्कार और अर्चना जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार उषा और गीता को भी नमस्कार। अभी अभी हमारा तो स्टूडियो में आना हुआ है और हमारे तमाम सुनने वालों को आज के दिन विशेष नमस्कार, क्योंकि आज के दिन आकाशवाणी रोहतक अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी कर रहा है, मना रहा है, स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं आकाशवाणी रोहतक की। आप सभी को तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं और दो लाइनें बोलते हैं
0: जी।
1: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए,
0: कारवां बनता गया।
1: देखिए कारवां 50 वर्षों के इस मुकाम पर आकर ठहर गया उषा, और कितनी उपलब्धियां, कितने हमारे श्रोताओं का हमारे साथ साथ रहा
0: है, कितनी यादें हैं अर्चना जी।
1: बहुत सारी यादें हैं, इतनी यादें हैं कि कुछ तो हमारे स्मृति पटल पर आ ही नहीं पाएंगी, हमारे श्रोता हमें याद दिलाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखिए बहुत सारा कुछ तो हम लोग संजोए रहते हैं अपने दिमाग में, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे श्रोता हमें बताते हैं।
0: बिल्कुल, तो उनका लगाव है, स्नेह है, रेडियो के प्रति समर्पण है, तभी उनको याद रहता है,
1: तभी उनको याद रहता है। आपने उस दिन ऐसे किया था, आप ऐसे बोले, आप ऐसे करते हैं, आप प्रसारण में ऐसे बोलते हैं,
0: आप इतने दिन बाद इस कार्यक्रम में आए हैं, पुराने कार्यक्रम उन्हें याद रहते हैं, पुराने प्रस्तुतकर्ता उन्हें
1: याद रहते हैं। और कई बार तो श्रोताओं का जो लगाव है हमारे साथ उसके बारे में जानकर मन भर आता है। देखिए कितना लगाव है, और हमारा आवाज के माध्यम से बहुत सारे श्रोताओं के साथ नाता है, रिश्ता है, और ये बहुत खूबसूरत है उषा।
0: बिल्कुल, रेडियो की दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है।
1: बहुत खूबसूरत दुनिया है। अच्छा, रेडियो की दुनिया के बारे में एक खास बात और है, जैसे आप श्रव्य दृश्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल, जैसे टीवी पर आप कुछ देखते हैं
0: जी,
1: तो आपको सामने दिख जाती है एक इमेज। हम लोग इमेजेस को गढ़ते हैं अलग अलग इमेजेस, अलग अलग छवियां श्रोता हमारे प्रस्तुतकर्ताओं के बारे
0: में, वो फिजिकली वो रंग रूप के बारे में ये सोचते हैं कि इनकी आवाज ऐसी है तो इनकी उम्र ये होगी, इनका डील डोल ये होगा,
1: ऐसा सोचते हैं। और हम आकाशवाणी को ही ये लाभ प्राप्त है, ये श्रेय है कि हम इमेजेस गढ़ते हैं और डिफरेंट इमेजेस गढ़ते हैं एक ही व्यक्ति के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: अलग अलग छवियां।
0: जब अर्चना जी मैं रेडियो में नहीं आई थी, घर में रेडियो सुनती थी, पापा सुनते थे, इसलिए तो मैं भी जब सुनती थी प्रेजेंटर्स को तो मैं भी ये सोचती थी कि इस उम्र के होंगे, ऐसे ऐसे ही होंगे और ये इनकी लंबाई चौड़ाई होगी, इस तरह से सोचती थी मैं भी।
1: तो छवियां गढ़ने में आकाशवाणी का कोई सानी नहीं है उषा। चलिए फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं
0: जी।
1: हेलो,
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: रत्ना जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मुन्ना बोल रहा था जी, गांव तिवाड़ा सखी दादरी।
1: जी मुन्ना जी बोलिए, मेरे साथ उषा मलिक भी हैं।
2: उषा जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है।
2: सभी आकाशवाणी परिवार को 50वीं वर्षगांठ की उनमें जन्मदिन की शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आवाज बहुत कम आ रही है आपकी।
2: हमने सुनाई दे रही है जी आपकी आवाज।
1: अच्छा, चलिए हमें भी सुनाई दे रही है, बताइए मुन्ना जी आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे?
2: आज के दिन ये कहना चाहूंगा जी अर्चना जी, पूरे आकाशवाणी परिवार में बधाई हो, और आकाशवाणी परिवार हमारा जी फले फूले और सदा जी हमारा साथ देता रहे, और इस प्रसारण में दुबारी से थोड़ा दुरुस्त करवाओ।
0: ज्यादा तेज
1: क्या करवाएं,
2: मतलब इसको दुरुस्त करवाओ ठीक, बीच बीच में कई बार व्यवधान आ जाए, मीडियम में ऊपर।
0: दोबारा से बताइए श्रोता बंधु,
2: जो अपना ये
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक मुन्ना, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है। जब से कुछ समय पहले हमारा मीडियम वेव का जो प्रसारण था थोड़ा सा दिक्कत में आया था, तो
2: 48 साल बीत्या था ना जी, टूट गया था यो।
1: हाँ जी भैया, टूट गया था यो, और आज 50 साल का हो गया आकाशवाणी रोहतक, तो इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो जरूर दुरुस्त कराएंगे। उम्र के साथ साथ कई बार देखिए सेहत में गिरावट आने लगती है, तो उसको दुरुस्त करवाना हमारा फर्ज बनता है। हम अपने तकनीकी विभाग से जरूर बात करेंगे, वो लोग सुन भी रहे होंगे और आपकी बात उन तक पहुंची भी होगी। और बताइए,
2: दूसरी बात यह थी अपनी, जो मैंने एक दिन पहले लिखाया था श्रोता मंच कार्यक्रम में, आज भाई
1: आपका वो सुझाव पाइपलाइन में है, जरूर उस पर अमल होगा, थोड़ा थोड़ा सा इंतजार करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: जी। हेलो हेलो,
3: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए।
3: राजेंद्र सैन बोल रहा
0: हूँ। हाँ जी राजेंद्र जी,
3: ये आकाशवाणी रोहतक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उषा मलिक जी और गीता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार जी।
0: नमस्कार आप सभी तक, नमस्कार आपके पहुंची। और बताइए कार्यक्रमों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज?
3: कार्यक्रम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे आकाशवाणी का ये जो टावर है, ये क्वालिटी आवाज की, ये तो हमारी शिकायत बनी हुई है,
1: ये जब तक दुरुस्त नहीं होगी सैनी जी बनी रहेगी। आपको नमस्कार।
3: नमस्कार अर्चना जी, और एक आपसे ये अनुरोध है कि एक बार आप गीत संगीत सुना रहे थे, उसमें वाहन का गाड़ी का वो बारे में बता रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो पे गाने आप बजा रहे थे, ऑडियो के गाने बजाए तो और भी अच्छी आवाज की।
1: आज आज कब किस समय की बात कर रहे हैं आप?
3: ये महीने के भर की बात होगी होगी अर्चना जी, जब ऐसा लगा कि ये ऑडियो के गीत होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के आवाज आती है।
1: कौन हम थे ड्यूटी पे, कोई और प्रस्तुत करता थे?
3: आप थी दोपहर का कार्यक्रम सुना रहे थे आप, उसके गाड़ी के बारे में और वाहन के बारे में बता रहे थे, जब हमें ऐसा लगा कि वीडियो के गाने अर्चना जी चला रही होंगी,
1: जी आप हमारी बात सुनिए। राजेंद्र जी आप अच्छा अनुभव रखते हैं सुनने का, और काफी पुराने हमारे सुनने वाले हैं। हमें याद आया कि हमने कोई गीत वीडियो से नहीं लिया था, सभी गीत आपको ऑडियो ही सुनवा रहे थे। अगर हम यहाँ से वीडियो भी प्ले करेंगे रेडियो से, आपको तक तो ऑडियो ही पहुँचता है उसका, और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है आपकी बात में हो सकता है कि कुछ तथ्य हो कुछ सत्य हो, लेकिन हमने सभी गीत अपने डेटाबेस से प्ले किए थे, उसमें हो सकता है कि ऑडियो से, ऑडियो जो हमारा है वो वीडियो से डाउनलोड हो या वैसे कोई दिक्कत हो, तो आगे से ध्यान रखेंगे
3: जी। आज जी और जो उद्घोषिका आते हैं, उद्घोषक आते हैं, वो 50 या 40 गाने उनमें से आगे पीछे करके सुनाते रहते हैं, अगला अलग कोई ऐसा जो उनमें आगे पीछे करके सुनाते रहे, ऐसा हो जो नए नए गीत निकाल के लाए और सुनाए कार्यक्रम में, तो
1: चलिए 50वीं जो हमारी वर्षगांठ है आकाशवाणी रोहतक की, उस पर हम ये अपने सभी प्रस्तुतकर्ताओं को ये ताकीद करेंगे कि वो नए नए गीत लेकर आएं और अपनी जो उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको फाड़ के फेंक दें।
0: जी बिल्कुल, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल।
3: हर जिले की एक चिट्ठी अर्चना जी सुनाते थे, वो भी आजकल कम सुनने को मिलती है। अगर
1: कम नहीं, आपको सुनने को ही नहीं मिलती है, कम कहाँ, आपने कब कब सुनी? कम नहीं, आप कहिए सुनने को नहीं मिलती है या बंद हो गया
3: ये कार्यक्रम? अगर दोबारा से बनाया जाए तो अच्छा लगे और जिले के बारे में ज्यादा।
1: चलिए आज के दिन आपके सुझाव आपने दिए हैं, हमने नोट किए, और आप हमारे काफी पुराने और नियमित श्रोता हैं, आपकी बातों में जी जी
3: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: हेलो,
4: राम राम बहन जी।
0: राम राम जी, पप्पू राम गाट है हमारे साथ।
4: हाँ बहन जी, गाँव लुटेसर के
0: जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज आप?
4: आज तो बहन जी, मैं पहले तो 50वीं वर्षगांठ की सारे बहन भाइयों को और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ,
0: और आकाशवाणी परिवार की तरफ से हमारे सभी सुधी श्रोताओं को भी बहुत शुभकामनाएं।
4: और बहन जी, आकाशवाणी रोहतक का तो वैसे बड़ा नाम रहा है, और इसमें तो जो कार्यक्रम आते हैं जैसे लोक
1: कॉल एकदम से ड्रॉप हो गई। गीता आपसे अनुरोध है कि जब एक कॉल हमारी समाप्त होती है वहां से आप कॉल को डिसकनेक्ट किया करें, तभी हम दूसरी कॉल को ठीक और सही ढंग से ले सकते हैं। दूसरी कॉल का स्टैंड बाय टोन आ रहा था, अगली कॉल लेते हैं। शोधा भाई से माफी चाहेंगे कि उनकी कॉल एकदम से ड्रॉप हुई है
0: जी।
1: हेलो,
5: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: धीरज रबारी बात कर रहा हूं।
1: जी रबारी जी, आपका स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज आकाशवाणी रोहतक अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं अपनी आकाशवाणी रोहतक की। बताइए क्या कहेंगे आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में, सुझाव प्रतिक्रियाएं?
5: आज कुछ शिकायत नहीं करने का, आज
1: अच्छी बात है,
5: बस आज मंगलमय जो अवसर है उसको आकाशवाणी रोहतक परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा रोहतक परिवार
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रबारी जी।
5: हाँ जी, धन्यवाद, और सभी को बहुत शुक्र मैं श्रोता हूँ, अनाउंसर को, टेक्निकल टीम को
0: जी, धन्यवाद आपका भी,
5: धन्यवाद।
0: हेलो,
6: नमस्कार जी, अर्चना बहन जी।
1: जी नमस्कार,
6: उषा मलिक जी को और गीता जी को भी नमस्कार
0: जी, सभी तक आपकी नमस्कार पहुंची। कहिए,
6: जाहिर प्रजापत बोल रहे
0: जी। प्रजापत जी,
2: बिल्कुल देता है, ये 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार को।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं, और आकाशवाणी से यूं ही जुड़े रहें, कार्यक्रमों को सुनते रहें और हमें बताते भी रहें।
2: बिल्कुल जुड़े रहो जी, हम तो 50 साल से ही सुनते आ रहे हैं जी।
0: जी बहुत अच्छी बात है,
2: हमारा आकाशवाणी दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और ऐसे ही हमारे प्रस्तुतकर्ता प्रस्तुत करते रहे, ऐसे हम श्रोता सुनते रहे, इसी काम करते हैं जी हम तो।
1: तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल देखते हैं जी। नमस्कार,
0: हेलो।
7: हेलो,
0: हाँ जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
7: हाँ जी, मुसा मलिक जी, अर्चना जी और गीता जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, पहुंची आपकी
7: जी। मैं गांव पथरवा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आपका नियमित श्रोता राजेश कुमार बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी राजेश जी,
7: मैं सबसे पहले तो संपूर्ण आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोताओं को स्वर्णिम जयंती के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं।
7: और उसके बाद अपना भी ये कहना चाहूंगा, मैं आज आकाश सारा आकाशवाणी परिवार 89 वर्ष 11 महीने की यात्रा पूरी कर चुका है
1: जी,
7: जिसमें से 50 वर्ष हमारे अपने आकाशवाणी रोहतक के।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, आकाशवाणी लगभग 90 वर्ष का हो रहा है हमारा, और आकाशवाणी रोहतक 50 वर्ष का हुआ आज।
7: और मैं 44 वर्ष का सफर मैं भी इसके साथ पूरा कर चुका हूँ
0: जी, जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है,
1: बड़ी खुशी की बात है।
7: बालकुंज से जुड़ाव शुरू हुआ था,
1: अच्छा,
7: और उसके बाद युवा संसार की दहलीज को पार कर चुका हूँ
1: जी,
7: और मैं एक नेत्रहीन पर्सन हूँ और खुद एक अध्यापक हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, जो अध्यापक होता है दूसरों को राह दिखाता है। राजेश जी,
7: मेरे लिए सबसे बड़ा महागुरु से आप कह सकते हैं वो आकाशवाणी रोहतक है
1: जी। शुक्रिया आपका।
0: और राजेश जी, सभी के जीवन में रेडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो भी लगाव रखते हैं रेडियो से।
7: बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो यही उम्मीद और आशा करता हूँ कि हमारा आकाशवाणी हमेशा ऐसे ही प्रकृति के नए नए पथ पे चलता रहे और नए नए आयाम स्थापित करता रहे।
1: बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी।
7: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करता रहे।
1: बिल्कुल, हमारा ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसीलिए हम तमाम जो अपने श्रोता वर्ग हैं, जितना भी हमारा श्रोता वर्ग है, उसको मद्देनजर रख के उनके मनोरंजन के लिए, उनके ज्ञान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए अपने प्रसारण करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये
7: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल नाटक जो है ना थोड़े से कम हो गए,
1: बल्कि नाटकों का तो प्रसारण अब फिर से शुरू हो गया है। आपने पिछले दिनों एक नया नाटक सुना होगा, और अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने एक रूपक का भी प्रसारण किया है, आजकल इनका निर्माण होने लगा है।

0: धीरे आप सुनेंगे नए नाटक और रूपक।
1: बिल्कुल
2: जी जी जी
0: हाँ जी,
2: तो पुनः शुभकामनाएं अर्चना जी।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।
1: हेलो,
3: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार जी, सुंदरपाल कौशिक
3: आत्मा
1: जी।
3: बहन को, गीता बहन को भी राम राम। बुड्ढा मास्टर सुंदरपाल कोशिक सवाई पन्ना गांव के हूँ, जहाँ से बोल रहा हूँ दीदी।
0: आप
1: जी
0: मास्टर भी कह देते, जिब भी चल जाता, बुड्ढा लगाना जरूरी था। जी
3: बताओ बहन जी,
0: जी
3: ये मिलो बताओ के बात है कि बिचरन लगी कई बार मैं दिख रहा क्या 1 साल का आपका डाटा। मैं सिर्फ और सिर्फ अर्चना बहन जी के प्रोग्राम से 2 पैराग्राफ, 1 साल का पूरा डाटा है। फिर वो ये तो सुनाए कौन जाएंगे बेचारे भाई, श्रोता सास लाग रहे होंगे। आप तो सीनियर उद्घोषिका हो तो थोड़े गलती ना करें करो।
0: ना, कौन सी गलती फिर कर दी,
3: हाँ
0: कौन सी गलती कर दी,
3: मैं लिख रखी है, लिख के बताऊंगा
0: पूरी बता दियो। पर
3: मैं।
0: आज गलतियां का दिन कौन है, आज तो न्यू बता दो। आकाशवाणी की जो स्वर्ण जयंती है उस पे आपकी क्या भावनाएं हैं, आप गलती का एक
3: वाह
0: रजिस्टर खोल ले बैठे सो।
3: वाह, मैं बताऊं, मैं तो आपने दे रहा जिसा इरेगुलर
0: आपकी
3: हूँ।
0: सारी आलोचना का स्वागत है, लिख कर भेज दो।
3: लिख
0: फिर वो सारी सुधार लेंगे।
1: नहीं, आप आ जाइए आकाशवाणी में।
0: और आप
3: तो
0: मास्टर रह गए, आपने सच्चे गलती गलती निकालनी और लाल पेन लगाना शुरू
3: पहली गलती
0: कर
3: तो बहन जी आज मनु कहे दिव्य आकाश शिक्षा सूचना और संगीत से आपका निरंतर प्रोग्रेस तरक्की करता रहे। आज
0: जी जी बहुत बहुत
3: बहन जी मैं
0: शुक्रिया।
3: तो 1978 में लिखा था सुंदरपाल अकेला, और फिर शादी होगी फिर लिखा सुंदरपाल जोड़ा।
0: अच्छा,
3: तो अपने दिए के थी बहन जी
0: इब आप
3: अपनी
0: रिटायर हो गए तो
3: रूपा
0: आपने बोल दिया बूढ़ा मास्टर। जी
3: फिर वो हरिशन दूजी थे, इन्होंने बोला भाई इन्हें ब्याह कर लिया, अजीब जोड़ा लिखने लग गए वो।
1: जी
0: चलिए, और बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं हमने स्वीकार कर ली, ठीक है।
3: हाँ लेकिन लाग फिर करेंगे प्रोग्राम, ठीक है दीदी। नमस्कार
0: जी,
3: नमस्कार, राम राम।
0: नमस्कार नमस्कार, राम राम।
1: हेलो हेलो,
4: हेलो,
1: हाँ जी बहुत स्वागत है
4: हाँ जी
1: कार्यक्रम में
4: भाई जी नमस्कार। मैं बोन कला दयाचंद शर्मा बोल रहा हूँ।
1: जी दयातन जी कैसे हैं।
4: हाँ जी बढ़िया। प्रोग्राम किसी का है आपका आज,
0: जी
4: आपका यो स्थापना प्रोग्राम किसी का है, रखने प्रोग्राम बता रहे थे।
0: उषा आपको जानकारी होगी, बताइए।
1: ये राधा कृष्ण ऑडिटोरियम है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, और वहाँ आपको लोक संगीत का कार्यक्रम भी सुनने को मिलेगा।
4: हाँ, वहीं जा रहा हूँ मैं
1: जी, जरूर पहुँचिए।
4: हाँ गाड़ी में वहीं जा रहा हूँ।
1: जी जरूर पहुँचिए, स्वागत है आपका।
4: मैं
1: हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आपका। और आप
4: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय।
1: हाँ जी,
4: हाँ जी, ऑडिटोरियम कौन सा है जी। हाँ
1: राधा कृष्ण ऑडिटोरियम।
4: जी
1: राधा कृष्ण ऑडिटोरियम।
4: अच्छा
1: हाँ जी,
0: ना अगली कॉल देखते हैं।
1: हेलो
5: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी,
5: मैं गांव लोबारी टीबा जिला सोनीपत से राजेंद्र बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है,
5: हाँ जी
1: बताइए।
5: आपको जय स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं।
1: जी हमारे सभी सुनने वालों को भी, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं, लगाव रखते हैं और हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं। आपको हमसे भी ज्यादा दिली शुभकामनाएं।
5: हाँ जी मैं 66 से सन 66 पढ़ूंगा आपका।
1: जी आप जरूर 66 से सुनते होंगे, और 1976 में जो है आकाशवाणी रोहतक की
5: हाँ जी
1: स्थापना
5: मैं
1: हुई थी।
5: दिल्ली से सुना करता पहले।
1: हाँ जी दिल्ली सुनते होंगे पहले, बहुत अच्छी बात है।
5: बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया,
1: जी यूं ही अपना साथ बनाए
5: बहुत
1: रखिए
5: अच्छा।
1: हमारे साथ।
5: और सुनाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, बोलने वाले भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी कोशिश यही करते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें।
5: हाँ जी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच,
1: धन्यवाद आपका। यूं ही जुड़ी रहिए आकाशवाणी के साथ।
5: ठीक है जी, ठीक है,
1: धन्यवाद। हेलो
5: धन्यवाद।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो,
5: हेलो,
1: हाँ जी
5: नमस्कार जी अर्चना जी। नमस्कार
1: अर्चना जी, तक भी आपके नमस्कार पहुंचे, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: जी, मैं बलवान सिंह सोलान बोल रहा हूँ जी, गांव बांस से।
1: हाँ जी बलवान जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज इस विशेष अवसर पर।
5: आज मैं अपने आकाशवाणी की 50वीं वर्षगांठ पर सभी भाइयों को और आकाशवाणी को शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी बहुत शुभकामनाएं आपको भी।
6: अर्चना जी और उषा जी तो कभी कभी आती हैं, पता नहीं रेडियो के ऊपर हम तो तरस जाते हैं, आज इनकी भाषा सुन के आज इनकी बोली सुन के खुश हो गया हूँ मैं।
1: नहीं अर्चना जी तो दिन में अक्सर ही आती हैं और हम भी सुबह की सभा में भी आते हैं, आज दिन में भी आप सुनेंगे।
6: आप दिन में तो सुबह तो आते हैं अर्चना जी, दो पैर को आते हैं, दो पैर को मैं बहुत कम मिलता हूँ। मैं तो सन 1978 से आपकी आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता था
1: जी,
6: और अब भी सुनता हूँ, दिन में बहुत कम सुनता हूँ अब
1: जी। जब भी समय मिले, जब भी समय मिले आप सुनिएगा।
6: हाँ जब भी मिलता है जब भी सुनता हूँ जी मैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होते हैं और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है, सभी प्रकार के जो कार्यक्रम हमारे सभी अच्छे लगते हैं
1: जी। बहुत धन्यवाद, आप पसंद करते हैं और हम यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।
6: उषा जी को भी नमस्कार है मेरी
1: जी। नमस्कार नमस्कार,
6: सभी भाइयों को नमस्कार,
1: पहुंची आपकी नमस्कार सभी तक, धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो।
1: नमस्कार
0: हाँ जी
1: जी।
0: जी नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं बहादुर बोल रहा हूँ जी, रानी सुंदरपाल से।
0: जी बहादुर जी, बताइए आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं जी। मैं
0: जी, और क्या कहना चाहते हैं आकाशवाणी रोहतक के बारे में?
1: ये कहना चाहता हूँ कि फले फूले और सभी आपको स्थापना दिवस पे सबको बधाइयाँ, सभी श्रोताओं को,
0: जी
1: और आपको भी, अंचला मिस्ट को भी, और आपको भी जी। बोलिए।
0: जी आपकी भावनाएं हम तक पहुंची और यही
1: हाँ
0: कहेंगे कि रेडियो की मधुर दुनिया आवाजों और भावनाओं को यूं ही जोड़ती रहे,
1: जी, हाँ
0: और
1: जी।
0: हमेशा सुनते रहिए आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रम, है ना? हेलो। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते जी।
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।
0: जी छत्तीसगढ़ से आपकी फोन कॉल, बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश जी।
1: बताइए, अपनी प्रतिक्रिया
0: धन्यवाद।
1: दीजिए हमारे कार्यक्रमों के बारे में।
0: सबसे पहले तो बधाई इस 50वें वर्षगांठ के लिए।
1: जी शुक्रिया।
0: और आकाशवाणी रोहतक से हम लगभग पिछले 8-9 सालों से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा अच्छा लगता है और लगातार कार्यक्रम में भाग भी लेते रहते हैं।
1: बिल्कुल, आपकी फोन कॉल आती हैं और बिल्कुल सुनते हैं हम भी आपकी आवाजों को। जी
0: जी
1: इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ,
0: जी जी
1: और
0: बहुत
1: हमें
0: बहुत शुक्रिया
1: बहुत
0: जी।
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हेलो
1: हेलो।
0: जी, नाम बता दीजिए।
1: राम राम जी बहन जी, दोनों बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी।
0: जी
1: जी
0: नमस्कार जी,
1: मैं
0: आपको भी
1: अमित शर्मा जी, जुलाना से जी,
0: जी। अमित जी बताइए।
1: हाथ जोड़ के जी आकाशवाणी रोहतक को और सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम जी। जी
0: जी बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या कहेंगे और?
1: ये कहना चाहूंगा मैडम जी, जैसे कि 2000 से चालू किया था जी एफएम चलाना,
0: हाँ जी,
1: और 26 साल हो चुके जी मैंने एफएम सुनते हुए आपका भी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है जब श्रोता
1: हाँ
0: बताते
1: जी,
0: हैं,
1: हाँ जी मैम।
0: इसी तरह
1: और
0: सुनते
1: जी
0: रहें। जी
1: मैम ये कहना चाहूंगा मैम, जैसे कि स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है मैडम जी, जैसे कि जितने भी स्रोत कोई भी हो आता है फोन में बड़े रहते हैं, लेकिन हमारी किराना की दुकान है मैम पुराना बस स्टैंड पे, और मैडम जी एफएम चलता रहता, कोई ग्राहक आता तो ये बोलता है अब ये रागनी कैसे चला रहा है माँ, ये रोता का बड़ा एफएम भाई।
0: जी देखिए, रेडियो का सबसे बड़ा फायदा ही यही है ना, कि
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: अपना
1: हाँ
0: काम
1: जी
0: भी साइड बाय साइड कर सकते हैं, और साथ के साथ इसके जो मनोरंजन है रेडियो के माध्यम से, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं, है
1: जी
0: ना जी।
1: सही। सबसे
0: यानी कि
1: बड़ा तो
0: हाँ
1: बेनिफिट ये है मैडम जी, जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है मैम, जैसे कि स्पीकर में बजता रहता है, ऑनलाइन चलाता हूँ मैम
0: जी,
1: एफएम
0: समय की बचत यानी कि हम कह सकते हैं रेडियो के माध्यम से,
1: जी।
0: है
1: जी
0: ना
1: बिल्कुल
0: जी।
1: मैडम जी, एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे कि आवाज बहुत कम हो रही है ये 3-4 दिनों से, क्या दिक्कत आ रही है जी?
0: जरूर हम आगे तक आपकी बात पहुंचाएंगे और लगातार लगे भी
1: हाँ
0: रहते हैं ठीक करने में इस तरह की चीजें, जो भी
1: जी
0: कमियां हैं।
1: मैडम जी,
0: जी
1: बिल्कुल आवाज कम हो रही है फिर
0: जी
1: ना, जो जैसे कि पास में आके सुनना पड़ता है मैम
0: जी
1: जी।
0: कोशिश करेंगे कि हम आगे
1: जी
0: तक आपकी बात पहुंचाएं।

0: और वो जल्दी ही ठीक हो जो भी दिक्कत है आपको, और औरों को भी रेडियो सुनने के लिए प्रेरित करते रहें जो भी आपकी दुकान पर आए उनको।
1: जी मैम, मैं कहता रहता हूँ जैसे कि कोई एंड्रॉइड फोन ले रहा हो ना मैम,
0: हाँ जी,
1: तो उनको बोलता हूँ इसमें FM चला लो, इससे बढ़िया तो
0: हाँ ये बिल्कुल ऐप के माध्यम से सुने।
1: हाँ जी, जी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप इनमें माथा मारते रहते हैं मैम।
0: जी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल।
1: हाँ जी, एक बात और बोलना चाहूंगा मैम।
0: हाँ जी,
1: जैसे कि रोहतक PGI में गया था मैम, वहाँ पे वेटिंग रूम में जितने भी बैठे सबके हाथ में फोन था मैम, सबके हाथों में फोन।
0: ऐसा ही है आजकल प्रचलन, हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है फोन
1: स्क्रीन टाइम। हाँ जी, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है सभी का मैम।
0: तो आप प्रेरित करिए औरों को, धन्यवाद आपका फोन कॉल के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
3: हेलो उषा जी और अर्चना जी, बहन जी, आप दोनों को नमस्कार।
0: जी, गीता जी भी हैं साथ और अर्चना जी कंसोल पर हैं आपकी फोन कॉल हम तक भेजने के लिए, और सभी तक आपकी नमस्कार पहुंची, स्वागत है आपका।
3: जी, आपका पुराना श्रोता जगदीश गांव आदमपुर डाड़ी से।
0: जी जगदीश जी,
2: जगदीश जी बताइए कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
3: ओहो, बहुत कार्यक्रमों की तो जी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम
2: जी,
3: क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है।
0: जी बिल्कुल, और स्वस्थ मनोरंजन आपको मिलता है।
3: हाँ, मैं भी सभी श्रोताओं से यही गुजारिश करता हूँ, रेडियो ज्यादा से ज्यादा सुने ताकि हमें ज्ञान भी मिलता रहे।
0: जी
3: हाँ, और बहुत बढ़िया जी, मैं तो काफी मतलब बहुत पुराना श्रोता हूँ आपका, और फोन कॉल तो बहुत कम आज लगी है जी, काफी दिन के बाद।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और कभी कभी फोन भी करते रहिए, बताते रहिए हमें।
3: ट्राई तो करता रहता हूँ लेकिन मिलता नहीं।
2: हाँ, जी लाइन्स तो बिजी रहती है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है।
3: लाइन लाइन बहुत बिजी रहती है।
0: आपका लगाव है स्नेह है जी, धन्यवाद करते हैं आपका।
3: धन्यवाद।
0: हेलो
4: उषा, बाकी श्रोताओं के साथ बातें करेंगे, एक गीत सुनवा देते हैं, बीच में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा श्रोताओं का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
5: उठे सबके कदम देखो रम पम पम,

0: श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है गीत के बाद, और देखते हैं अब हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार अर्चना जी, उषा मलिक जी और गीता जी को।
2: जी नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैं धर्मवीर प्रजापत गांव बड़ौदा जिला जी से बोल रहा हूँ। जी
2: जी धर्मवीर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप आकाशवाणी रोहतक के स्थापना दिवस के पर।
1: हाँ जी, आकाशवाणी रोहतक की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी श्रोताओं को, सारे आकाशवाणी रोहतक परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी
0: जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं, और क्या कहेंगे कार्यक्रमों के बारे में।
1: और जी कार्यक्रम तो जी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है जी, प्रस्तुति बहुत बढ़िया होती है, कोई कमी नहीं है।
0: कोई विशेष कार्यक्रम जो आप चाहते हो कि शुरू किया जाए?
1: नहीं अर्चना जी, ऐसी तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है जी। जो भी प्रोग्राम आप पेश करते हो, मतलब बहुत प्रस्तुत करते हो, बहुत ही बढ़िया होते हैं, सभी
2: जी। यानी कि उषा जी, हमारे जो श्रोता हैं वो सहमत है हमारे कार्यक्रम से,
0: बिल्कुल,
2: है ना?
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल जी, जी। और 50 वर्षों में जो आकाशवाणी जब तक ने जनता को, जनता की सेवा की है जी, बहुत ही बढ़िया और प्रशंसनीय है जी, बहुत ही अच्छी है।
0: और आप सभी का साथ भी हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय है, और आप हमें बताते हैं ये भी हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई।
1: अर्चना जी 50 वर्षों से आपके साथ में ही हूँ।
0: जी अर्चना जी हंस रही हैं, वो कंसोल पर हैं, मैं उषा आपसे बात कर रही हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ, उषा मलिक जी आप भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हैं, सभी की प्रस्तुति अच्छी होती है।
0: बिल्कुल, सभी मेहनत करते हैं आपके लिए, और ताकि आपको अच्छा महसूस हो सुनकर।
1: हाँ जी, जब भी आप सुबह प्रोग्राम पेश करती है उषा मलिक जी, तो बहुत ही मतलब बढ़िया लगता है, वैसे सभी की प्रस्तुति अच्छी है जी।
0: बिल्कुल, सभी मेहनत करते हैं और अपना अपना अंदाज लेकर सभी आते हैं, है ना? जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका, इसी तरह सुनते रहिए। हेलो
3: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी,
2: नाम बता दीजिए अपना।
3: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। आज रोहतक का तारीख 8 नवंबर का,
2: 8 मई है जी आज। सतीश जी 8 मई है आज,
3: 8 मई का जन्मदिन है
0: जी
3: आकाशवाणी रोहतक का।
0: स्वर्ण जयंती वर्ष है, 50 वर्ष पूरे हो गए आकाशवाणी की स्थापना को।
3: 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैंने कल गूगल पे पूछा था, तो कल मैंने ये पूछा था आकाशवाणी रोहतक का जयंती कब है
0: जी।
3: 8 मई
2: जी। सतीश जी आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, भाग लेते हैं, फोन करते हैं कार्यक्रमों में लगातार, है ना?
3: हाँ हाँ, मैं लगातार आपके प्रोग्राम में तो आप भी सुनते रहते हैं, और मैं भी लगातार रहता हूँ, फोने प्रोग्राम में भाग लेता रहता हूँ, और ये पत्र वाला आता है उसमें भाग लेता हूँ
0: जी।
3: फोने कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते हैं, वो मेरे जो हिंदी प्रोग्राम आते हैं वो तो मैं सुनते रहता हूँ, लेकिन जो हरियाणा में आते हैं मेरे पल्ले नहीं पड़ते, इसलिए मैं उसको सुनता।
0: कोई बात नहीं, आप हिंदी भाषी कार्यक्रमों को सुनते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका। हेलो
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही, डिस्टरबेंस है।
4: हाँ जी, मैं मुन्ना बोल रहा था, गांव की वाला असर की दादरी से।
2: जी मुन्ना जी, आपने दोबारा कार्यक्रम में फोन किया है ना?
4: हाँ जी दोबारा किया है, एक बात कहनी थी आप उषा मलिक जी, वो मेरा फोन कट गया था।
2: अच्छा जी कहिए।
4: उषा जी आप कार्यक्रमों में आओ ना जी, हर बार आप पुराने गीत सुनाओ, हो इस बार नए गीत सुनाए।
0: चलिए कोशिश करेंगे कि अगली ड्यूटी में आपको नए गीत सुनवाएं, कभी कभी नए भी सुनवाते हैं
2: जी। देखिए मुन्ना, कोई प्रस्तुतकर्ता नए गीत सुनाता है, कोई पुराने, हर तरह के गीत हमारे कार्यक्रम से, जो हमारा कार्यक्रमों में प्रसारित होते हैं, ठीक है?
0: और विविधता बनी रहती है। अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो
5: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है।
5: बहन जी मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जी गर्ग साहब, कैसे हैं आप?
5: बहुत मजे हैं बहन जी।
0: जी
5: आपका वातावरण है
0: जी,
5: मौसम बहुत खुशगवार है पालमपुर का
0: जी। इसी तरह आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आकाशवाणी से जुड़े रहिए। क्या कहेंगे आज
5: बहन जी? बस गीत सुनना था आज।
0: जी तो हम सुनवा रहे हैं आपको बीच बीच में, और आज आकाशवाणी का जो स्थापना दिवस है उस पर आप विशेष कार्यक्रम में आपसे बात भी कर रहे हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, मैं भूल गया था, आज जो

0: स्थापना
1: जी
0: वर्ष है
1: हाँ जी
0: उसके जन्मदिन की हमने बहुत बहुत सभी आपको और श्रोताओं को मुबारकबाद देता हूँ।
1: जी मुबारक आपको भी बहुत मुबारकबाद।
0: धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद आपका और जुड़े रहिए आकाशवाणी से।
2: हेलो
3: नमस्कार मनीषा जी।
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार
2: जी, नाम
1: जी।
2: बता दीजिए।
3: विजय सिंह लखेरा बोल रहा हूँ जी, वीरभूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
2: जी विजय जी बताइए, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम और
3: कार्यक्रम
2: क्या।
3: तो जो मैम सभी अच्छे लगते हैं जी,
2: जी और
3: और सबसे पहले तो आपको 50वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी, पूरे तमाम रेडियो आकाशवाणी रोहतक के श्रोताओं समेत आप सभी को जी।
2: जी हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय जी।
3: जी और मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, अगर जो थोड़ी सी गौर फरमाए तो
2: जी
3: देखिए, आकाशवाणी रोहतक एक ऐसा चैनल है जी दो जो कि 3 प्रसारण सभाएं करता है, नहीं तो तकरीबन रेडियो मैंने सुने हैं वो 2 ही प्रसारण सभा करते हैं जी। और
2: जी
3: पहले थोड़े से कुछ सालों पहले हमारा आकाशवाणी रोहतक भी 2 प्रसारण सभाएं करता था जी।
2: जी बिल्कुल।
3: तो हम तो ये चाहते हैं जी, अगर 2 प्रसारण सभाओं में आ जाए तो दी बेस्ट रहेगा जी। तो उसमें जी
1: श्रोता भाई आपकी
3: क्या
1: बात
3: है जी?
1: कुछ समझ से हमारे परे है। हम आकाशवाणी से जब से जुड़े हैं हम 3 प्रसारण सभाओं में आपसे मुखातिब होते हैं, सुबह की होती है,
3: नहीं
1: दिन
3: नहीं
1: की
3: अर्चना
1: होती
3: जी,
1: है और
3: दो
1: शाम की
3: सभाएं
1: होती
3: होती
1: है।
3: थी जी, काफी
1: दो
3: दिन चला था
1: सभाएं
3: जी।
1: हमारी जानकारी में नहीं हैं।
3: देखो
1: और आकाशवाणी रोहतक हरियाणा का कैपिटल स्टेशन रहा है और अपने आरंभ से ही, लगभग आरंभ का तो देखिए इतना शुरू का याद नहीं है, और जब से हम आकाशवाणी से जुड़े हैं हम 3 सभाओं में प्रसारण कर रहे हैं और
3: नहीं
1: बाकी जो केंद्र 2 सभाओं में आप तक पहुंचते हैं वो ज़्यादातर FM स्टेशंस हैं। और हमारा जो विविध भारती का केंद्र है वो सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक उनके प्रसारण जारी रहते हैं। तो 2 प्रसारणों तक आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रमों को सीमित करने का आपका सुझाव थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी सुझाव आपका
3: नहीं
1: है तो
3: अर्चना जी सुनिए,
1: सुन रहे
3: देखिए
1: हैं।
3: आपको तो ध्यान नहीं होगा जी, इसलिए तो श्रोताओं को पता है जी, 10:10 से 11 बजे तक तो रागिनियों का प्रोग्राम होता है। ये जी 18 के आसपास की बातें हो, नहीं है
2: जी विजय
3: 14-15 के आसपास जी।
2: सुनिए विजय सिंह जी सुनिए कि कुछ
3: हाँ जी
2: समय के लिए जो हमारी सुबह की सभा थी उसी को हमने कंटिन्यू करके जो दूसरी सभा थी उसके साथ कुछ समय के लिए हमने लिया था, ठीक
3: हाँ
2: है।
3: जी वो
2: ले
3: हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी, लेकिन देखिए अगर हमारी 3 प्रसारण सभाएं हैं तो अच्छा ही तो है, आपको ज्यादा कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं, ज्यादा मनोरंजन होता है श्रोताओं का, है ना।
3: नहीं मैम 3 में ये तो आप 10:10 पर मान लो रेडियो स्टेशन बंद हो जाता है, वो 3:10 पर बंद होता है पहली सभा जी,
1: जी ये बदलाव
3: कंटिन्यू
1: देखिए
3: प्रोग्राम से।
1: होते रहते हैं, कोई ना कोई इनके पीछे कारण होता है, चलता रहता है। आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए, बदलाव देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी रोहतक आज अपने 51वां स्थापना दिवस में है और वर्षगांठ हमने पूरी की है 50, तो आज 50वां जन्मदिन हम अपने आकाशवाणी रोहतक का मना रहे हैं। एक बिल्कुल अभी एक श्रोता ने बात की कि हमने दो सभाएं कर दी थी, तो लंबे समय से हम लोग भी यहाँ पे कार्यरत हैं। कुछ सभाओं को एक्सटेंड किया गया था, जैसे सुबह वाली सभा एक्सटेंड हुई थी, शाम के प्रसारण 5 बजे से शुरू हो जाते थे, जैसे कि हमारे नॉर्मल 5:30 से शुरू होते हैं। और कोई ऐसा वक्त रहा होगा जैसे कोरोना का समय रहा या जो रहा, हमने उसमें भी अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप था यथावत बनाए रखा, या कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए हमने रिले भी अपने कार्यक्रम किए थे। लेकिन हमारी 3 सभाएं शुरू हैं, शुरू जब से हम आकाशवाणी से जुड़े हैं, तीनों सभाओं में हम अपने श्रोताओं के साथ मुखातिब होते हैं और तीनों सभाओं में ही हमें आपसे मिलना अच्छा लगता है। आप दो सभाओं में आने की बात जो कर रहे थे श्रोता भाई, तो थोड़ा सा चलिए अपनी अपनी राय होती है, अगली कॉल देखते हैं।
1: जी हेलो, हेलो, राम राम जी, राम राम। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी उषा जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: अर्चना जी को भी, गीता जी को भी नमस्कार। जी
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मेघराज शर्मा, भाणा ब्राह्म नाम से। जी
0: शर्मा जी स्वागत है आपका, बताइए आज के दिन आप हमारे लिए क्या कहेंगे कि हमारा हौसला इतना बुलंद हो कि आगे भी हम आपके लिए बेहतर प्रसारण लेकर आए।
1: बिल्कुल,
2: सबसे बड़ी तो बात यही है कि शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी परिवार को।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी, लेकिन आज शिकायत का टाइम नहीं है जी, क्योंकि शुभ शुभ दिन है जी, लेकिन थोड़ा बोलना तो पड़ेगा जी।
1: अच्छा बोल दो,
0: बोलिए।
2: हाँ जी, जैसे ये प्रोग्राम फोन ही ना आता है ना जो भी जी, इसमें बहुत कार्यक्रम संबंधी बात आनी चाहिए जी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कोई आके।
0: मतलब
2: जैसे कल प्रोग्राम था उषा जी ने पेश कराया 9 से 10 जी, इतनी जैसे मौसम कैसा है जी वहाँ का, ये कैसे पता नहीं। अब फरमाइशी प्रोग्राम है तो जी फरमाइश का होना चाहिए जी, श्रोता बहुत लाइन पे, कल 1 घंटा लग रही थी, हमारा फोन ही नहीं मिला जी।
0: हाँ ठीक है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।
2: प्रोग्राम में जैसे कृषि जगत में आता है जी, तो अगर वहाँ पे अगर कोई रागनी की फरमाइश करे तो मना कर देते हैं कि नहीं भाई कृषि जगत कार्यक्रम है, तो वो अच्छा है जी, वो सही है जी। खेती बाड़ी का है तो पशु संबंधित नहीं होगी जी, और पशुओं का तो खेती का नहीं होगा, वो ठीक है, लेकिन इन प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता जी, ये बड़ी दिक्कत है जी, पता नहीं क्या
0: ऐसा क्या होता है। कई बार श्रोताओं के पास कोई लाइन नहीं होती हमसे जुड़ने के लिए, तो वो मौसम पूछ लेते हैं, जैसे हम सामने देख रहे होते हैं व्यक्ति बिल्कुल भला चंगा खड़ा है, पूछते हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप, तो थोड़ा सा बातों के लिए कनेक्ट होने की, लेकिन इस बात को ज्यादा तूल देना लाइव प्रोग्राम में समय की बर्बादी सी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमें फोन कर रहे होते हैं आपकी बात।
2: हाँ जी ये बड़ी दिक्कत आती है जी, तीनों लाइनें बिजी हो जाती हैं जी बहुत जी।
0: ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, आपकी बात हमने मान ली।
2: प्रोग्राम सुनते हैं जी पुराने श्रोता हम, तो आपको पता है,
0: बिल्कुल पता है,
2: बढ़िया है जी सारा, कोई दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: धन्यवाद जी।
1: हेलो हेलो हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी श्रोता बंधु स्वागत है, बताइए नाम बताइए अपना। हेलो, हाँ जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, कहिए।
3: हेलो
0: श्रोता भाई के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हम, देखते हैं दूसरी कॉल। हेलो,
3: और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, इतना गुंजूंगा कि चलिए तो।
0: बिल्कुल, आप आपकी आवाज अभी भी हमारे कई कार्यक्रमों के माध्यम से गूंजती रहती है। रोहिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बीते जमाने की बात हो गई
0: है? नहीं बीते जमाने की बात नहीं है, आवाज एक ऐसी चीज है, रेडियो में रेडियो वाले हमेशा रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए चले गए तो आवाज गूंजती रहती है, इस बात से हम आपकी सहमत है। बताइए रोहिला जी आज क्या कहेंगे स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर?
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले का दिन था, मैं स्कूल में पढ़ता

0: था तो हमें कहा गया कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई आकाशवाणी का उद्घाटन करना है।
1: अच्छा,
0: तो आपको वहाँ स्कूल में स्कूल से वहाँ ले जाया जाएगा उद्घाटन समारोह में, कुछ बच्चे इकट्ठे करने थे, तो हम भी भीड़ को इच्छा बन गए।
1: हाँ जी,
0: तो लगा जैसे पता नहीं रेडियो में बोलने वाले कैसे होते होंगे। और देखिए मुझे
1: लंबे समय तक आप रेडियो का हिस्सा रहे, आज भी आप रेडियो का हिस्सा हैं रोहिला जी।
0: और एक वो जो कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमारे यहाँ से जो गुमशुदा की जो सूचना जाती है पढ़ देते थे, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारा परिवार मैंने आया था पड़ोस में, उनका मकान बन रहा था, उनके बुजुर्ग को ले जाता था, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं गुम हो गए। और वो मैं जब ड्यूटी पर आया तो उनके गड़बड़ी की सूचना मिली, मैंने फोन किया, वही नहीं तो लगा कि वाकई इसकी सार्थकता है। तो रेडियो के ही मायनों में हमारे साथ जुड़ा हुआ और जुड़ा रहेगा
1: बिल्कुल, और सेवा के लिए जुड़ा है। हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के अपने ध्येय वाक्य के साथ अपने श्रोताओं तक पहुंचते हैं रोहिला जी, और आपने तो इस चीज को बखूबी समझा है। और आपका फोन आना और ये छोटा सा संस्मरण आपने साझा किया कि आप अपने स्कूल के साथ आए थे और हमारा आकाशवाणी रोहतक उस दिन शुरू हो रहा था, तो ये जानना अपने आप में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिला जी,
2: जुड़े रहे आप, यूं ही मार्गदर्शन करते रहे हमारा
0: परिवार को। उषा जी आपको भी, अर्चना जी साथ में, गीता बेटी बेटी उसको भी
2: जी, धन्यवाद आपका जी,
0: शुभकामनाएं, धन्यवाद
2: धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी,
3: मैं वीरेंद्र ब्याण बोल रहा हूँ जी, देवराज साहब जी।
2: हाँ वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए आज विशेष अवसर पर क्या कहना चाहेंगे
3: जी। सबसे पहले तो आपको ये वर्षगांठ की जी शुभकामनाएं
2: जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सभी सुनने वालों को।
1: ब्याण जी को आज स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये भी कह देते हैं, थोड़ा सा फोन सेट अपना दूर कर लें अपने से, आवाज हमारी गूंज रही है।
3: हाँ जी, ये कहना चाहता हूँ जी, तीनों दो सभाएं रोहतक दे रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को।
1: अच्छा जी,
3: हाँ जी, और जैसे कि कुछ रेडियो स्टेशन है जी, ये खोल तो लिए जी उन्होंने, लेकिन क्या करते हैं जी, चलो बोलिया विद्वार्थी से प्रोग्राम सुनते हैं, उनके कुछ प्रोग्राम है नहीं जी।
2: जी
3: हाँ जी, तो मतलब ये तीनों सभाएं जो आप दे रहे हैं ये ठीक है जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे।
2: चलिए, अच्छा लग रहा है, इसी तरह आपको अच्छा लगता रहे और हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते रहे, कोशिश यही रहेगी। जी चलिए, आकाशवाणी जो है रोहतक की परिधि अवधि सबसे ज्यादा है, हरियाणा में तीन स्टेशन है, हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक, और आप इसी तरह जुड़े रहे आकाशवाणी के साथ, धन्यवाद आपका।
1: हेलो हेलो
3: हेलो
1: जी, जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार मैम, नमस्कार जी।
1: जी नाम बताइए।
4: मैडम मैं रम्मी बोल रहा हूँ, हरिद्वार से जी।
1: हरिद्वार से रम्मी?
4: नहीं, रम्मी हरिद्वार जिला लुधियाना से जी।
1: अच्छा जी, रमन अग्रवाल।
4: मैडम रम्मी मेरा नाम है, हरिद्वार हमारे गांव का नाम है, पिंड का नाम है।
1: चलो जी, श्रोता भाई आपका कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, हमारे आज स्थापना दिवस के बारे में क्या कहेंगे?
4: मैडम बहुत बहुत मुबारक जी आपको।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
4: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक जी,
1: बड़ा बड़ा शुक्रिया थोड़ा। रम्मी जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है साडे कार्यक्रम।
4: मैडम मैं हरिद्वार तो बोल रहा, जिला लुधियाना तो।
1: हाँ समझ आ गई हूं,
2: सानू बहुत बढ़िया लगा
1: जी, आया नु
2: अगला फोन लेने जी। हेलो।

0: तो मुझे एक बड़ी खुशी मिली, आकाशवाणी रोहतक ने पत्थर जो पढ़े 50 साल में सबसे ज्यादा पत्थर बहुत पढ़े।
1: जी, आज भी हम आपके बहुत सारे पत्रों को शामिल करते हैं, आप लोग लिखते हैं, एक एक श्रोता के उषा
2: जी
1: 100 से ज्यादा,
2: बिल्कुल
1: 500 से ज्यादा खत हमें आज भी मिलते हैं,
2: छटनी करनी मुश्किल हो जाती है,
1: मुश्किल हो जाता है एक ही श्रोता के,
2: और हम सोचते हैं कि सभी को शामिल करें, सभी को शामिल करें,
1: बहुत कोशिश रहती है हमारी।
0: और बहन जी, खेती बाड़ी का प्रोग्राम हो चाहे लोक संगीत का, आकाशवाणी रोहतक से हमें बड़ा मिलता, बहुत जानकारी खेती बाड़ी में बहुत फायदा हुआ बहन
1: जी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पत्रों की बात की ना, तो पत्र आपके कम आते हैं पप्पू राम जी, आप भी लिखो, आपके पुराने पत्र ही हमारे पास हैं, कुछ नए लिख दो।
2: जी, और औरों को भी प्रेरित करो रेडियो सुनने के लिए, रेडियो से जोड़ो सभी को,
0: रेडियो तो सही बात है बहन जी, आकाशवाणी को सबसे बहुत अच्छा लगता है
2: जी। धन्यवाद आपका, आप इसी तरह सुनते रहे।
1: हेलो हेलो, कोई कॉल नहीं है
2: जी, तब तक कॉल आती है
1: हम लोग बात कर लेते हैं,
2: और विशेष कार्यक्रम चल रहा है जी।
1: हेलो,
3: राम राम बहन जी।
1: जी नमस्कार,
3: मैं रमेश बोल रहा हूँ जी, गांव कलोई से।
1: कलोई से रमेश, आपका स्वागत है रमेश, बताइए।
3: हाँ जी, जो 50 साल पूरे हो गए जी आकाशवाणी को जी, सब पूरे परिवार को जी हाथ जोड़ कर प्रणाम करो
2: जी। आपको भी बहुत प्रणाम कि आप आकाशवाणी से जुड़े हैं और रेडियो को सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है जी।
3: हाँ जी, मेरा मरीना जी, उसका 4 साल पहले आगा सुनो जी रेडवा
1: जी, आप हमारे काफी पुराने श्रोता हैं, जानकर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो
4: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूँ जी, डाणा लाडनपुर भिवानी से जी।
1: जी स्वागत है आपका जी।
4: गीता जी को, उषा जी को और अर्चना जी को हमारा नमस्कार
2: जी, पहुंची सभी तक आपकी नमस्कार पहुंची, स्वागत है।
4: अब रोहतक रेडियो की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पे सभी आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
2: जी। जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
4: मैडम जी, एक बात कहना चाहता हूँ मैं
2: जी,
4: जो एक हरियाणवी गानों का प्रोग्राम आ करता जो सवेरे,
2: हाँ जी,
4: अभी कई दिन से बंद है
2: सुबह हरियाणा,
1: हाँ, सुबह की सभा में हम 9 बजे एक हरियाणवी गीत सुनवाते थे, बाद में हमने दिन की सभा में किया, वैसे आजकल हम सुनवा रहे हैं आपको हरियाणवी गाने,
2: हाँ,
1: पसंद अपने अपने ग्रामीण में, हर शनिवार को दिन में 12:30 बजे या तो अंत में एक गाना होता है, एक शुरू में एक गाना होता है, आप सुनते रहिए, शनिवार को दिन में 12:30 बजे पसंद अपने अपने कार्यक्रम आता है, तो उसमें हम हरियाणवी फिल्मों के गीत आप तक लेकर आ रहे हैं आज तक आजकल। शुक्रिया आपका।
2: हेलो हेलो
5: हेलो,
2: हाँ जी स्वागत है कार्यक्रम में।
5: अर्चना जी, रीटा जी, उषा जी, आप सभी को नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। रीटा नहीं है जी, अर्चना, उषा और गीता आप तक हैं।
5: गीता जी हो गई
1: जी। जी जी जी,
5: बहुत बहुत शुभकामनाएं
2: जी। राजू अग्रवाल जी,
5: गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
2: हाँ जी राजू जी, स्वागत है, बताइए।
5: स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आकाशवाणी रोहतक का सौभाग्य रहा है कि 1976 से लेकर आज तक जितने भी केंद्र निदेशक या आप जैसे कोई भी आकाशवाणी में काम करने वाले सदस्य हो, सभी एक से बढ़कर एक है जी।
2: जी बहुत धन्यवाद, आपको ऐसा लगता है और हम भी कोशिश करते हैं।
5: प्रार्थना जी, कभी घमंड मत करना, प्रोग्राम को ऐसे ही बनाए रखना। और एक सच्चाई आप सभी लोग जानते भी है जी, मैं 2012 का समय कभी नहीं भूल सकता, आकाशवाणी कारण आज आप लोगों के बीच में हूँ जी।
2: जी बिल्कुल, आपने बताया था, और बहुत से गीत, बहुत सी बातें प्रेरित करते हैं हमारे सुनने वालों को और उनके जीवन में बदलाव लाते हैं जी।
5: 2012 में सोचिए जरा, हटके प्रोग्राम आया था, उसमें आप लोगों के 2 मिठे बोलने ने मेरी जिंदगी देती नहीं, आत्महत्या की नौबत थी जी।
2: बिल्कुल आपने बताया था,
5: मानसिक रोग से बताया, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है जी।
1: अग्रवाल जी, आपकी उम्र लंबी हो
2: और यूं ही जुड़े रहे जी, जी सुनते रहे और हम हमेशा आपके साथ यूं ही आते रहेंगे।
1: हेलो
6: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
6: अर्चना मिश्र जी, उषा मलिक जी और गीता जी, टिकड़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार, स्वागत है।
6: हाँ जी, सबसे पहले तो जी 50वीं वर्षगांठ पर आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं
2: जी। बहुत शुभकामनाएं आप सभी सुनने वालों को, और ये बताइए कोई विशेष कार्यक्रम जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
6: विशेष कार्यक्रम तो आकाशवाणी रोहतक पर तो सभी हैं जी, सबसे पहले आता है सुबह सवेरे
2: जी, बहुत खूब।

0: एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, मतलब सुनते हुए कई साल हो गए, गीता जी को पहली बार अब कुछ दिनों से अपना नाम अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लगता है
1: जी। उन्हें कहा गया है अर्चना जी की तरफ से, हमें निर्देश मिले हैं कि प्रस्तुतकर्ता अपना नाम जरूर ले।
0: हाँ जी, और जो ये पिछले दिनों शनिवार को ड्यूटी आती थी जी गीता जी की, और ये आता है सब रस कार्यक्रम, इसमें पूरी जान फूंक देती है जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें और उन बातों से संबंधित गीत
1: जी
0: बड़ा अच्छा लगता है।
2: आप जब श्रोता इस तरह की बातें करते हैं तो प्रस्तुतकर्ता का हौसला साथ में आसमान पर होता है, उसकी कोशिश रहती है वैसे तो कि हर बार आप तक अच्छी प्रस्तुतियां लेकर आएं, लेकिन इस तरह के जो दो बोल होते हैं हौसले के, वो बहुत मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीता की तरफ से।
1: और जब इतने ध्यान से सुनते हैं अर्चना जी कार्यक्रमों को, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम थोड़ी और मेहनत कर लें।
2: बिल्कुल
0: जी। और एक पिछले महीने की 10 तारीख को शुक्रवार का दिन था जी, और एक रंग प्रोग्राम होता है, एक रंग, उसमें उषा जी ने दर्द भरे गीत चलाए थे जी।
2: उस दिन का रंग था दर्द।
0: हाँ जी, वैसे तो दर्द भरे गीत कभी कभी सुने जाते हैं, उस दिन पता नहीं बड़े अच्छे लगे
1: जी, कभी कभी वो गीत भी अच्छे लगते हैं जी।
0: हाँ जी, और आज स्थापना दिवस पर मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ आकाशवाणी रोहतक पर पहुँचने की, चाहते हुए भी नहीं आ सका, इसके लिए जी बड़ा फील हो रहा जी मेरे को भी।
1: नहीं कोई बात नहीं, आप विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, दिन में भी कार्यक्रम सुनिएगा तो ये भी स्थापना दिवस पर विशेष बात है।
0: हाँ जी, दिन में तो बड़े आराम से सुनते हैं,
2: आप फोन के माध्यम से आ ही गए हैं आकाशवाणी पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल हम नहीं ले पाएंगे, अपने सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उषा, जिन्होंने हमें कॉल की और जो कॉल करते रहे
1: और जो रेडियो को सुनते हैं हमेशा और हमें बताते भी हैं
2: और आगे भी हमें सुनते रहें। ये था आज का विशेष कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रोहतक के स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके ठीक बाद 10:05 पर अंग्रेजी में। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The first BJP government in West Bengal will take oath tomorrow, the 25th of Boishak, at the Brigade Parade Ground. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central leaders may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number of 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party. President of Vietnam, Tho Lam, has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30:10 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रस्तुत ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
3: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
3: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
3: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
3: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
3: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
3: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी।
3: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
2: जी।
3: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
3: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
3: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
3: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
3: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
3: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
3: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
3: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
3: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ

आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी

0: कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ হুয়া, जिसमें রবীন্দ্রনাথ ने शिक्षा की

0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है।

0: कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से NCERT द्वारा प्रस्तुत ये प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, उसके बाद प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त शामिल है। मुख्यमंत्री ने 9,76,000 बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
3: अलग अलग स्कीम के प्रदेश में जो बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब तक 7 किस्तें जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किए। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव था।
2: मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 35,62,000 लाभार्थियों को 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने किसान मुआवजा राशि भी जारी की।
4: जो फसल खराब हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की।
2: इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता राशि और 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी की 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि जारी की गई। साथ ही 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कृषि कल्याण संगठन ने पराली प्रबंधन को लेकर संयुक्त प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार पराली प्रबंधन को लेकर प्रति एकड़ 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। भिवानी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि जिले में किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकार से मिलने वाले अनुदान बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखी जा रही है। अभी तक भिवानी जिले में इंटरनेट के माध्यम से 74 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 मामलों में FIR दर्ज की

0: गई है और एक मामले में 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार पलवल जिला न्यायालय द्वारा कल 9 मई को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए 7 बेंचों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:10 और 12 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज स्वर्णिम अवसर है। आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और 51वें वर्ष में आकाशवाणी रोहतक आज प्रवेश कर गया है। आज ही के दिन यानी 8 मई के दिन 1976 में इसकी स्थापना हुई। आप सभी जो भी आकाशवाणी का हिस्सा हैं और रहे हैं, सभी वार्ताकारों, प्रस्तुतकर्ताओं, कर्मचारियों, चाहे वो सेवानिवृत्त हों या फिर सेवा में हों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है आज, और श्रोता भी आमंत्रित हैं और हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी आमंत्रित हैं। आकाशवाणी का स्टाफ भी वहां पहुंचा हुआ है और वो जगह है जहां आज के दिन कार्यक्रम चल रहा है, राधा कृष्णन ऑडिटोरियम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। वहाँ लोक संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और श्रोता इसका आनंद ले रहे हैं, और हम यहाँ आपके साथ विशेष कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के साथ आपको फिल्म संगीत भी सुनवा रहे हैं। और कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। श्रोताओं, दिल के सबसे करीब और प्रिय और भरोसेमंद जो साथी है वो रेडियो नहीं तो और कौन है। रेडियो की मधुर दुनिया आवाज़ों और भावनाओं को जोड़ती है, और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि और आप और हम हमेशा यूं ही साथ साथ बने रहें, कार्यक्रमों के साथ, आवाज़ों के साथ। आप हमेशा जुड़े रहें आकाशवाणी से। 90% क्षेत्र को कवर करता है रेडियो और 94% आबादी तक पहुंच है हमारे इस रेडियो की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक, जिनमें रोहतक सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है, जिसकी अवधि यानी कि कार्यक्रमों का जो प्रसारण होता है वो जो समय अवधि है वो सबसे अधिक है हरियाणा के तीनों केंद्रों की को देखते हुए, और इसकी परिधि यानी इसकी रेंज भी सबसे अधिक है। और आप हमेशा जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं।

0: धड़कनों की बात धड़कने समझ गई।
1: न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा।

श्रुतो, आकाशवाणी रोहतक ने आज 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 50 वर्षों का ये सफर केवल समय की यात्रा नहीं है बल्कि अनगिनत सपनों, मेहनत, समर्पण और विश्वास की एक कहानी है। इस संस्थान ने न जाने कितनी प्रतिभाओं को दिशा दी, कितने जीवनों को संवार कर उज्ज्वल भविष्य प्रदान किया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है रेडियो। स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करता है। अलग अलग कार्यक्रम जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार सूचनाएं युवाओं के लिए, युवाओं को कैरियर संबंधी कार्यक्रम जानकारियां देता है। आप सभी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है आकाशवाणी रोहतक और स्वस्थ मनोरंजन आपका करता है। और हम भी चले आते हैं आपसे मिलने, चाहे मौसम कैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, बरसात हो, हम किसी चीज़ को नहीं मानते। हर रोक टोक को बिसरा कर चले आते हैं, बस चले आते हैं आपसे मिलने।

बिल्कुल भाई, दिल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता जब भी कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे बात होती है। ऐसा ही लगता है जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि आप कहीं दूर हैं। और हर वर्ग को अवसर देता है आकाशवाणी। हेलो जीनियस जैसे फोन इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी बढ़ती है कार्यक्रमों में, और आकाशवाणी के कार्यक्रम न जाने कितनी अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं इन कार्यक्रमों में, और दिन विशेष पर लगभग प्रतिदिन चर्चा करते हैं। और जो लोकप्रिय कार्यक्रम है आप सब

सभी का पसंदीदा सुबह सवेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर दिन दिन विशेष पर बात करते हैं और युवा संसार कार्यक्रम में भी इन सभी विषयों को समाहित किया जाता है। और श्रोताओं, अलग अलग जो श्रोता हैं सबकी पसंद भी अलग अलग होती है और हम हर तरह के गीतों को विविधता के साथ जो है वो कार्यक्रमों में शामिल करते हैं। कुछ नए गीतों को पसंद करते हैं तो कुछ पुरानों को, लेकिन हम हर रंग को शामिल करते हैं आपकी पसंद को मद्देनजर करते हुए।

श्रोताओं, संगीत की अलग अलग विधाओं को आकाशवाणी जीवित रखता है। शास्त्रीय संगीत यहाँ से प्रसारित होता है, सुगम संगीत का आप आनंद लेते हैं, लोक संगीत का आनंद लेते हैं और फिल्म संगीत के अंतर्गत भी अलग अलग विधाओं का आप आनंद लेते हैं। सबरस जैसे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में जो शनिवार को सुबह 9 बजे प्रसारित होता है। हरियाणवी लोक संगीत की भी अलग अलग विधाएं हैं, कोई पुरानी गायकी को पसंद करता है, कोई नई तरह की रागनियों को पसंद करता है और हमारे श्रोताओं की अक्सर ये डिमांड रहती है कि हम हरियाणवी फिल्मी गीतों को ज़रूर अपने कार्यक्रमों में शामिल करें।

तो वो भी किया जाता है। आपकी पसंद के कार्यक्रम जो रागनियों पर आधारित होते हैं वो जब भी प्रसारित होते हैं। इन सभी विधाओं को आप सभी तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोक संगीत, फिल्म संगीत और फिल्म संगीत की अलग अलग विधाएं, शास्त्रीय संगीत पर आधारित बहुत सारे गीत हमारे फिल्मों में भी लिए गए हैं और जिन्हें हमारे श्रोता भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं।

बच्चों तो आकाशवाणी रोहतक से बच्चों से संबंधित जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं रविवार को 8:30 से प्रातः 9 तक और ग्रामीण संसार कार्यक्रम में बुधवार को शाम 7 से 7:30 तक। इनमें बच्चे जो है वो बहुत ही रुचि के साथ प्रतिभागिता अपनी करते हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में कई तरह के गुणों का विकास होता है, जैसे कि नेतृत्व भावना का विकास, हिंदी भाषा के प्रति जानकारी और रुचि उनमें पैदा होती है। इसी तरह खेतीबाड़ी संबंधी कार्यक्रमों को भी हमारे सुनने वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम है, कृषि जगत है, ग्रामीण संसार है, कृषि की बातें हैं, इन सभी को वो सुनते हैं और जो विशेषज्ञ आते हैं वो जानकारी देते हैं, उनसे फ़ोन कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके अलावा जो जानकारियाँ मिलती हैं उनसे वो लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और साथ साथ लोक संगीत का आनंद भी श्रोता लेते हैं। और लोक संगीत की जहाँ तक बात है, हरियाणवी संगीत को तो अब हिंदी फिल्मी गीतों में भी खूब शामिल किया जा रहा है और हरियाणवी शब्दों का इस्तेमाल जो है वो हिंदी फिल्मों में किया जा रहा है और इसी तरह का एक गीत अब आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, जीवन में बेहतर यही है कि थक हार कर बैठे नहीं अपितु जीवन में उत्साह बनाए रखें, क्योंकि मनुष्य जब तक थकता नहीं है जब तक उसके जीवन में मधुरता और उत्साह बना रहता है, हृदय में महत्वाकांक्षा बनी रहती है और मन में कार्यशक्ति का प्रवाह बना रहता है, और इसके लिए सबसे अच्छा साधन रेडियो ही तो है। कार्यक्रमों को सुनकर, गीतों को सुनकर श्रोता प्रेरित होता है और जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में श्रोता इन संदेश देते हुए गीतों से प्रेरणा लेता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है।

बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप सदा मुस्कुराते रहें और यूं ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। श्रोताओ, रेडियो कितना प्यारा साथी है जो सुनकर हमारी सोच विस्तृत होती है, हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, हमारा हृदय विशाल बनता है और जाने अनजाने कितनी ही विशेषताएं हमारे चरित्र में शामिल हो जाती हैं इस प्यारे से रेडियो के ही कारण। हमारी सोच सकारात्मक बनती है, हम तकलीफों परेशानियों को ठोकर मारकर जीवन में कुछ ना कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं और आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। रेडियो तो है ऐसा साथी जो कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। चाहे हम कितने ही अकेले हों, रेडियो का अगर साथ है तो कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। ये साथ यूं ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यूं ही बना रहे।

श्रोताओं, रेडियो भरोसेमंद और सुलभ सस्ता माध्यम है जो बिना इंटरनेट के भी काम करता है। यह आपदा के समय जीवन बचाने वाली जानकारी, स्थानीय खबरें और संगीत के माध्यम से समाज को जोड़ता है। स्थानीय भाषा में प्रसारण के कारण यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से पसंद किया जाता है, लोकप्रिय है। आज युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी रेडियो को पसंद करते हैं और रेडियो अलग अलग तरह से आपके समक्ष आ रहा है। आज आप रेडियो को अपने फ़ोन के माध्यम से यानी कि ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमेशा रेडियो साथ नहीं रह सकता, लेकिन फ़ोन तो हमेशा आपके पास होता है, तो आप इसके माध्यम से भी रेडियो को सुन सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए सूचना और मनोरंजन का एक भरोसेमंद साधन है और इस जो हमारा आकाशवाणी केंद्र है, इसकी जो रेंज है लगभग 47,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और रेडियो के कारण लोगों के जीवन में क्रांतिकारी जो परिवर्तन हैं वो भी आते हैं और बदलाव रेडियो जो है वो लेकर आता है। लगातार जब हम रेडियो को सुनते हैं तो हमारे जो चरित्र में ही नहीं, हमारे आसपास ही नहीं, अलग अलग तरह के बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। जानकारियों के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर क्षेत्र में हमें कामयाबी भी मिलती है। जो रेडियो का एक बार हिस्सा बन जाता है, चाहे श्रोता के रूप में चाहे प्रस्तुतकर्ता के रूप में, वो फिर रेडियो को छोड़ना नहीं चाहता। ये दूसरी बात है, कोई मजबूरी है या फिर उम्र की सीमा है तो रेडियो से हमें दूर ज़रूर होना पड़ता है, लेकिन रेडियो से वो ताउम्र जुड़ा रहता है किसी न किसी रूप में।

श्रोताओ, आज आकाशवाणी रोहतक की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ है और इस शुभ अवसर पर आप सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका आप और हम हिस्सा बन रहे हैं। और एक विशेष कार्यक्रम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राधा कृष्णन सभागार में भी किया जा रहा है, जहां लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और श्रोता भी वहां ज़रूर पहुंचे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और बड़े ही गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हम किसी न किसी रूप में, चाहे श्रोता के रूप में, चाहे एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में आकाशवाणी का हिस्सा हैं।

श्रोताओं, 50 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर केवल समय की यात्रा नहीं बल्कि अनगिनत सपनों, मेहनत, समर्पण और विश्वास की एक अबूझ कहानी है। स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे संस्थान परिवार को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और आकाशवाणी परिवार की तरफ से सभी श्रोताओं तक हमारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये सफलता, सम्मान और प्रेरणा का दीपक सदैव यूं ही प्रज्वलित रहे। रेडियो की मधुर दुनिया आवाजों और भावनाओं को जोड़ती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रोहतक की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे समाचार हिंदी अंग्रेजी में बारी बारी से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले के लिए प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
5: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार

0: पर न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला

0: मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 2:30 और 12 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है खेती बाड़ी संबंधी हमारा दोपहर कालीन प्रसारण खेत खलिहान।

0: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई देखो, जो अपने खेती बाड़ी के काम हैं, जो मुख्य काम था अपना, भाई गेहूं की कटाई है, कढ़ाई है, मंडी में बेचना है, या और अपना जो दूसरा सरसों है, चना है, वो सारे काम निपट लिए। लेकिन इसके अलावा काम अपने दो रहे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम अभी भी बाकी बच रहा है, क्योंकि अपने खेत खाली हो गए, और भाई जो थोड़ी पहले खाली हो गए थे उनमें चारा फसने भाइयों ने ले ली, बिजाई कर ली, भाई जो अपना चारा पशुओं के लिए हमने चाहिए उसके लिए मक्का है, ज्वार है, लोबिया है, ग्वार है, और भाई अपनी जो लेनी थी उनने फसल है। बाकी जो अपना बाद में जो हमने रखने हैं खेत, भाई उसमें आगे चाल का हमने धान की फसल लेनी है, या भाई कपास की लेनी है, कपास की भी बिजाई चल रही है, किसान भाई अपना कपास की बिजाई लाग रहे हैं करने। तो बाकी जो इनमें हमने ये देखना है कि भाई अपना धान की ही फसल लेनी है, तो इब हमारे द्वारा मौका है अपने खेत की गहरी जुताई करने का और मिट्टी परीक्षण कराने का, अपना जो खेत में ट्यूबवेल है उसके पानी का परीक्षण कराने का, क्योंकि ये जो खाली समय है इसमें हमने सारी जांचा का पता लग जाएगा, क्योंकि हम अंधाधुंध धोखन हैं और रासायनिक खादा ये पाछे पड़े रहे हैं। तो ये मौका है हमारे द्वारा, इतना काम नहीं है, कम काम है, तो इसमें हम अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करा सके हैं, ताकि हमने ये पता लग जाए कि भाई हमारे खेत की मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्वों के लिए हमने अपना खाद की पूर्ति करनी है। क्योंकि हम आँख मीच कर अगर खाद देंगे तो हम कह रहे हैं कि भाई DAP दे दिया, यूरिया दे दिया, बस ये काम कर लें हमें, तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट भी है, म्यूरेट ऑफ पोटास भी है, जिंक की भी कमी पा जाए, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत तो है ज़मीन को उपजाऊपन लेने में। तो इसके लिए अगर मिट्टी परीक्षण हम करा लेंगे तो इसमें पता लग जाएगा कि भाई किस तत्व की कमी है और किस तत्व के डालने से कमी पूरी होगी, तो अनावश्यक खाद का जो खर्चा हम करें जाएँ उससे हमारा बचाव हो जाएगा। दूसरा जो है भाई गहरी जुताई करने का भी सही मौका है, क्योंकि जिसमें जो सूत्रकर्मी वहाँ अपनी ज़मीन के अंदर है वो लार्वे दे दें नीचे, तो वह बड़ी दिक्कत आओ, फिर वह प्योपा बन जाए हैं और फिर जो है प्रौढ़ होकर है वह फसलों नुकसान पहुँचावे हैं। गहरी जुताई करने में मिट्टी पलट जाए है, ऊपर आ जाए है, नीचे तक अच्छा घाम बाढ़ लाग जाए है, क्योंकि जेठ का घाम पड़े हैं तो वो या तो वैसे नष्ट हो जाए या फिर कुछ अपने मित्र कीट से पक्षी हैं जो वो उन्हें चुगले हैं, तो बड़ा अच्छा वो हो जाए है और साफ सुथरी ज़मीन हमने मिल रहा है सही तरीके से। बाकी धान की नर्सरी का जो है वो समय चल रहा है, भाई जिन भाइयों ने धान की जो रुपाई करनी है गचाल का अपना खेत के लिए तैयारी, और उसमें नर्सरी में पहले आम बिजाई वो आम कर सके हैं, तो भाई अपना किस्म थोड़ी ठीक ले लें, जो जिन भैया ने अपना जिस हिसाब से उसकी आगे चाल का अपना जो फसल लेनी है, तो बिजाई का और बीज का प्रबंध इब्बत है अपना कर लें, उसकी सारी जो सिफारिशुदा जो मात्राएं हैं उनका पूरी तरीके से प्रबंध कर लें। बाकी कपास की जो चाल रही है तो कपास में कुछ भैया थोड़ी ही किस्में ज़रूर बता दें, क्योंकि भाई इब बिजाई इसकी चाल रही है कपास की, तो नरमा की जो मुख्य किस्में हैं H1226 है, H1098 है या संशोधित किस्म है, संकर किस्मा में HH223, HH287, देसी कपास की HD123, HD324 और HD432, संकर देसी की AAH1 और BT संकर किस्मा का जो हम देख चल रहे हैं तो वो अपना देख लें कि हमने कौन सी लेनी है। बाकी बीज उपचार जो जो सिफारिशशुदा खाद की मात्रा बताई जा है, बीज उपचार जिस तरीके का बताया जा है, वो सारा हम ठीक तरीके से करके चालेंगे तो फिर आगे चाल कर फसल में कोई दिक्कत नहीं आओगी। इसी प्रकार अपना धान की जुड़ से हमने किस्म लेनी है उसका प्रबंध कर लें, भाई कपास के यहाँ का भी और इसका भी, कोई भी हम फसल लें तो किस्मा का चुनाव शुरू में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि किस्म अगर बढ़िया लेंगे भाई जिसमें कीड़े बीमारी भी कम नुकसान पहुँचाते हों, हरी बीमारी कम आंदी हो, पैदावार भी बढ़िया मिलती हो, पानी पात के भी कम जो उसमें ज़रूरत पड़े कि भाई कम पानी में विवाह हो जाए, तो इस डाल की फसलों का अगर हम चुनाव करके चाल लेंगे तो आगे चाल कर फिर कोई दिक्कत इसी नहीं आ पाओगी। बाकी आज जो चर्चा का अपना विषय रहेगा वो अनाज का सुरक्षित भंडारण क्यों करें यू रहेगा, लेकिन उससे पहले जो है भाइयों का मनोरंजन कराऊंगे और भाइयों को रागनी सुनवाऊंगे, गायक कलाकार होंगे मास्टर सतबीर सिंह भैंसवालिया और उनके साथी।
1: हे रे बेटी बहू

कैसे नर भागा के फूल गई हो जासे शकुंतला ने देखू।

गंधर्व बन के आया था, वे गंधर्व बन के आया था, यु देश पसंद बिना था, बाग सवाया ले रहा था वो माटी मंदिर बिना था, सब बता

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: भाई फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और आज का जो दिन है ना, वो हमारे आकाशवाणी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज आकाशवाणी रोहतक ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 मई 1976 को AIR रोहतक यानी कि ऑल इंडिया रेडियो रोहतक की स्थापना हुई थी, और उस दिन से लेकर आज तक निर्बाध रूप से जो है कार्यक्रम जाते रहे। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और हर तरीके के युवा के कार्यक्रम हैं, बच्चों वाले कार्यक्रम हैं, हिंदी के हैं, अपने हरियाणवी के हैं, जितनी भी जो अपनी संस्कृति है उसको बढ़ाने में, क्योंकि ये एक सस्ता, सुलभ और अच्छा साधन है, और आम आदमी की पहुंच का भी जरिया रेडियो ही है, क्योंकि चाहे पहाड़ी इलाका हो,

चाहे दूर दराज का इलाका हो, रेडियो हमेशा मनुष्य का साथी रहा है। और उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जनसंचार के साधन बहुत कम होया करते, तो रेडियो ही एकमात्र ऐसा सहारा था जो लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनया। और सही तरीके से पूरे करियर वो भी आप लोगों के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि आप सभी श्रोता भाई बहन हैं, इतने चाव से सुनते हैं, आज भी फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं कि हमें ले भी नहीं पाते और क्षमा प्रार्थी रहते हैं हमेशा कि भाई सभी का फ़ोन हम नहीं ले पाए। आज भी शुक्रवार है और आज का भी एक फ़ोन इन कार्यक्रम है अपना, जिसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं 3 से 4 बजे तक। आज का जो हमारा विषय है वो है खेती बाड़ी से संबंधित। डॉक्टर स्टूडियो में बैठे रहेंगे और भाई आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि भाई आप जो भी आपकी खेती बाड़ी की समस्याएँ हैं वो पूछें, डॉक्टर साहब से उनका समाधान पाएं। लेकिन खेती बाड़ी से संबंधित कई बार क्या होता है कि कार्यक्रम खेती बाड़ी से संबंधित है, पशुधन के बारे में ज़्यादा भाई पूछने लग गए हैं, तो भाई पशुधन का पहले शुक्रवार का था या फिर आज से अगले शुक्रवार का होगा। आज का जो अपना खेती बाड़ी से संबंधित है, तो भाइयों की जो भी समस्या है वो आप पूछ सके हैं। बाकी जो अपना आज का विषय है भाई चर्चा का, जो अनाज का सुरक्षित भंडारण, तो भाई देखो भंडारण से पहले की भी तैयारी बहुत ज़रूरी हो है। एक तो अपने अनाज ने अच्छी तरीके से सुखाएं, जब उसमें 10-1% नमी रह जाए तब भी हमें उसने भंडारण के लिए लेकर जाएं, यानी कि चाहे हम टंकी में डालें, चाहे हम बुखारी में डालें या गोदाम में रखें, तो 10-1% नमी हो जब हम अपने अनाज में रखें। साफ सफाई करने पहले अनाज से धूल कचरा टूटे उड़ दाने हैं और भाई ये इस तरीके का जो है सारा का सारा डंग दंग उसमें साफ कर लें, गोदाम भी तैयार कर लें। भंडारण से 15 दिन पहले गोदाम की सफाई करके उसमें 2-1% मेलाथियन का छिड़काव कर दें, दीवारा में जो भी छोटी मोटी कोई दरार है उसने बंद करवा दें और बंद करके ने या फिर धूड़ा हम छिड़क सके हैं, और फिर हवा वाले गोदाम में ताकि हवादार भी हो, हवा आनी जानी भी चाहिए, ईशा ना हो कभी कति बंद कर दें उसने, छत पर कोई लोहे की चादर हो तो फिर नीचे जो है बांस की छत भी हम डलवा सके हैं गर्मी कम हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी फिर अनाज खराब होने का अंदेशा बन जाए। और ज़मीन तक कम है, अगर हम बोरिया में या इस तरह के जो है अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो ज़मीन से कम तक कम 6 इंच ऊंचे बांस के फट्टे हैं या लकड़ी के फट्टे हैं उनके ऊपर हमने बोरी रखनी है, उनके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए, और दीवार के सटा के बोरी नहीं लगानी है, कम तक कम दीवार के और बोरियाँ के बीच में 1 फुट का अंतर रहना चाहिए। बाकी नीम के पत्ते हम डाल सके हैं बोरियाँ के बीच में, या हम अगर टंकी में डाले हैं लोहे की टंकी में भंडारण करें उड़े भी हम नीम के पत्ते डाल सके हैं, तो कोई जो प्राकृतिक कीटनाशक है वो काम करेगा इसका, और भाई आगे जो है सुरसी डोरा इससे बचाव रखेगा। प्लास्टिक के ड्राम या जो मेटल बिन है इसमें हमने रखना है, ढक्कन टाइट बंद कर दें और अंदर ऑक्सीजन खत्म होने से भी कीड़े मर जा करें, यानी कि ईशा ना हो कि भी ऊपर तम खुला छोड़ दें तो फिर नमी भी जाएगी और कीड़े भी उसमें पनपेंगे। फास्फिन गैस से बड़े पैमाने पर एल्यूमिनियम फास्फाइड की जो टेबलेट्स हैं भी रखी जाएँ, लेकिन ये सिर्फ ट्रेनिंग वाले लोग जो है प्रशिक्षण लिए उड़े वो ही रखें, घर में इस तरह का काम ना करें। मिट्टी का अगर कोठा है तो वे गोबर मिट्टी का लेप करके उसने अच्छी तरीके से सुखा लें, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, तब हम उसमें डालें। नमक का इस्तेमाल भी कर सके हैं, 100 किलो अनाज में 500 ग्राम नमक हम मिला कर ताकि वो नमी सोख ले और तब भंडारण कर सके हैं। हल्दी पाउडर का भी कर सके हैं भाई, 5 किलो अनाज में 50 ग्राम हल्दी मिला कर, इसमें भी कीड़े लागण से थोड़ा बचाव रह जाएगा। बाकी तो भाई सारी अनाज ने भंडारित करें हैं, बीच बीच में थोड़ा हा अच्छी धूप का दिन हो तो उसने निकाल कर धूप लगा दें तब भी बढ़िया रहेगा। तो इस तरह के जो है सही तरीके का पहला तो यह है कि भाई अनाज में नमी ना रहने दें, बोरी हैं वो सीधे फर्श पर ना रखें, बोरी भी साफ सुथरी छिड़काव तो उपचारित हो, और टंकी में रख रहे हैं तो टंकी में अपना कोई जैसे नीम के पत्ते बता दिया या फास्फिन का जो पाउडर है वो धूड़ा है वो हम उसमें मिला सके हैं। तो इस तरह के देसी तरीके अपना कभी हम अपने अनाज में सही तरीके से भंडारित कर सके हैं। बाकी समय रह गया तो भाई जिक्र और भी कर लेंगे, भैया ने एक रागनी और सुनवा दें, गायक कलाकार एक बार फिर होंगे मास्टर सतबीर सिंह भैंसवाड़िया और उनके साथी।

मन सत्य बचाया करे वो मानस अनुरागियों से, जान बूझ बुरे कर्म करे वो दोष का भागियों से। ओए पतिव्रता औरत ने तगनू कुल का दाय

जानने पे तेरे कुछ भी याद नहीं से मेरी ओर का अब बिटर बिल्कुल।

मैं रागनीशुनी भैया ने गायक कलाकार थे मास्टर सतवीर सिंह भैंसवाली और उनके साथी। और देखो जो जिक्र चल रहा था अपना, तो वह अनाज की नमी सही तरीके से जो है कम कर लें, बीच बीच में सौर ताप लगा दे रहे हैं जब भी अच्छी धूप का दिन निकले है, और अगर बीज का जो हमने रख रखा है अनाज अगर भंडारित करना है तो उसको तो बीच में ज़रूर सौर ताप हमने देना है, और जो टूटे फूटे कोई भी दाना है उसके अंदर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा झाड़ पिछोड़ कर जब हमने वो इकट्ठा करना है। बाकी भाई फिर भैया ने बता दें कि आज शुक्रवार है और भाई खेती बाड़ी से संबंधित कार्यक्रम है, भाई जिन भाइयों की जो भी शिकायत हैं या सुझाव भाई लेना चाहें हैं तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में रहेंगे 3 बजे से लेकर हैं और 4:15 बजे तक रिकॉर्डिंग करी जाएगी। इससे कार्यक्रम ने फिर आप 6:20 पर दोबारा सुन सको हो, 6:20 से लेकर और 7:30 बजे तक। तो जो भी बाजिया की बात रह जाए वह सुन लें, किसी और भाई ने बूझ रखी और वही बात आप पूछना चाह रहे हो तो उसका फिर जवाब आपने मिल जाएगा। टेलीफोन नंबर भाइयों को एक बार फिर बता दें हम, भाई रोहतक का कोड 01262 रहेगा और हमारी टेलीफोन जो लाइनें हैं 255-446, 255-447, 255-448, इन टेलीफोन लाइन आप फ़ोन करें और खेती बाड़ी से संबंधित पूछें। भाई बार बार ये बताया जाए कि आज खेती बाड़ी से संबंधित है, डॉक्टर साहब स्टूडियो मौजूद रहेंगे, आप फ़ोन करें और अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर पाएं। और भाई आकाशवाणी को आपने इतना सहयोग दिया क्योंकि आज हमारा फिर वही बात कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के बिना आकाशवाणी कुछ भी नहीं है, जब तक श्रोता भाई बहन हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलते रहेंगे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। कार्यक्रम हमारे किस इलाके हैं ये आप ज़रूर बताया करो, पत्र के द्वारा या जो अपना फ़ोन इन कार्यक्रम हो है उसके माध्यम से भी। तो भाई इससे के साथ ये देख लिया घड़ी का ना, कार्यक्रम का समय हुआ समाप्त। बलजीत भाई ने दें इजाज़त, सारे बाण भैया ने राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:05 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रमों का रिले जारी है। मीडियम वेव 262.47 मीटर पर शाम 5:30 पर तीसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30:10 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपके साथी दीपांशु का नमस्कार। साथियों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज है 8 मई का दिन, और 8 मई का दिन हम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 8 मई के दिन वर्ष 1976 में आकाशवाणी के रोहतक केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसी प्रकार साथियों, आज आकाशवाणी रोहतक केंद्र की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। साथियों, आकाशवाणी रोहतक ने हरियाणा की मिट्टी की खुशबू, लोक संस्कृति, भाषा के साथ परंपराओं को भी देशभर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ विद्यार्थियों को भी नई दिशा देने का कार्य किया है। और साथियों, रेडियो की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मीयता है। जब हमारे श्रोता, हमारे साथी रेडियो सुनते हैं तो उन्हें केवल आवाज़ नहीं बल्कि अपनापन महसूस होता है, और यही अपनापन आकाशवाणी रोहतक की भी पहचान है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए साथियों कि आकाशवाणी की यह आवाज़ आगे भी इसी तरह लोगों के दिलों तक पहुँचती रहे। आज आप सभी को आकाशवाणी रोहतक केंद्र के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ। और आइए साथियों, इस विशेष मौके पर हम आपको एक गीत सुनवाना चाहेंगे जो लिया गया है रखवाला फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने। आइए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना रखवाला फिल्म से गीत गाया था लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और साथियों, 8 मई का दिन है आज, और आज के दिन एक और भी दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। जी हाँ साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई के दिन मनाया जाता है। यह दिन मानवता, करुणा और सेवा भावना को समर्पित है। इस दिवस का उद्देश्य साथियों, लोगों को एक दूसरे की सहायता करने और ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देना है। और साथियों, इस दिन को मनाने की शुरुआत हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिवस के अवसर पर की गई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह सीख देता है साथियों कि कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद करना कितना आवश्यक है, और यह हमारा कर्तव्य भी है साथियों कि अगर हमें कोई दिखता है कि हमें उनको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार का संकट हो, ऐसे समय में मानवता और सहयोग की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार यह दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रेम व सेवा का संदेश है। ये हमने बात की साथियों विश्व रेड क्रॉस दिवस की, और आज है साथियों शुक्रवार का दिन, और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम युवा पसंद, जिसमें हम आपके कुछ फरमाइशी नाम लेकर आते हैं जिन्होंने अलग अलग गीत सुनना चाहा होता है, और हम आपको सुनवाते हैं आपके कुछ फरमाइशी गीत। तो पहला गीत लिया गया है साथियों दहक फिल्म से, गाया है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने, गीतकार हैं श्यामराज और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। इस गीत को सुनना चाहा है साथियों डबोवाली से हमारे साथी हैं जेके बकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू। चोहल्दा से हमारे साथी हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। बिसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू और प्राची वर्मा। दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ, गौरव, मिठी, कुहू। आइए साथियों सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

साथियों, अभी आपने सुना द हेक फिल्म से गीत गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार थे श्याम राज और संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की तरफ। ये गीत सुनना चाहा है कबूलपुर रोहतक से हमारे साथी हैं रण सिंह दिल्लोड़, सतपाल, मंजू, रोशनी दुग्गल, पूजा, ओम मोर, अंकित बोस और नौरंगी अटकान, जलगांव जालना महाराष्ट्र से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक और अश्वनी, औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले और हर्षुल सावंगी, सादुल शहर से हमारे साथी हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, बदनापुर से मेघराज, युवराज कोलते, रिघोरा देवी और रुद्र, मोरीगेट दिल्ली से हमारे साथी हैं कन्हैया लाल, रीता, शिल्पा और आकाश। हमारे इन साथियों ने सुनना चाहा है धड़कन फिल्म से गीत, गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आइए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना धड़कन फिल्म से गीत गाया था विजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने, गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की तरफ। जो सुनना चाहा है फतेहाबाद से हमारे साथी हैं बिट्टू, गगन, अमरपुरी, युवराज और भुविक। हिसार से राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी। बेमेतरा से सुरेश व पूर्णिमा सारथी। गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली कटनकर। करनाल से हमारे साथी हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सोनिया कालका, बिपाशा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता। मटोर कैथल से हमारे साथी हैं रामदिया, नीलम, अजय विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर। हमारे इन साथियों ने सुनना चाहा है राजा हिंदुस्तानी फिल्म से गीत, जो गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आइए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से गीत गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की तरफ। जो सुनना चाहा है बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, आरती तुषार, डोली पूजा व प्रभा देवी तामोरिया, और इनके साथ हमारे साथी हैं जाखोद राजस्थान से शंभूलाल खटक, बिमला अमरजीत सुंदरलाल योगेश खटक और दीपक व पूजा, और रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु सिंह और ऋषभ सिंह। इन साथियों ने सुनना चाहा है राज फिल्म से गीत गाया है अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: साथियों, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। दीजिएगा इजाज़त अपने साथी दीपांशु को। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टोर की घड़ी में शिव को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिली किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज की शेष कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर रेडियो रिपोर्ट सुनेगा रात 9:15 पर। कवि गोष्ठी हम आपको सुनाएंगे शाम 7:30 बजे, जिसमें प्रतिभागी होंगे शमशेर सिंह, मिक्की पासी और अजय कुमार। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा कृषि संबंधित समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमेश कुमार यादव। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25 का। ये थे हमारे आज के शीर्ष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। साहित्य भारती सुनेगा रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी भिंडी फसल की देखभाल विषय पर। सुबह सवेरे इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल सुबह 7:30 बजे का। युवा संसार कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 बजे का। शाम 6:20 पर कृषिगत कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा। डॉक्टर दीपांशु गहलावत जो है इस पर बात करेंगे फसलों का आग से बचाओ। इसके अलावा शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे आपकी पसंद। कल दोपहर 2:30 पर खेत कल्याण कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बागों में सिंचाई व्यवस्था। कल सुबह 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे श्यामलाल सिंह। पसंद अपनी अपनी हरियाणवी लोकगीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 बजे। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सब रस का कार्यक्रम समय रहेगा कल सुबह 9:00 बजे का। चित्रपट संगीत सुनेगा कल दोपहर 1:10 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे शाम 7:30 बजे। सुगम संगीत सुनेगा रात 8 बजकर 25 मिनट पर और एक फिल्म सी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9 बजकर 15 मिनट पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है, लीजिए सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। रूबी जो कि सोनीपत से लापता है और इनका हुलिया इस प्रकार है, उम्र 17 साल, कद 4 फुट और इनका जो रंग है सांवला है, हिंदी जानती हैं, बाएं हाथ पर BR खुदा हुआ है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो थाना सोनीपत को आप जानकारी दे सकते हैं। खेड़ी सासी अनुरुद्ध लापता है जो कि 4/5/2026 से लापता है, इनका होलिया जो है इस प्रकार है, रंगीवा गोल चेहरा हाशपुर शरीर, कद 5 फुट 5 इंच, उम्र 15 साल है। इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो थाना PGIMS रोहतक को दे सकते हैं। अभय सिंह पुत्र उपेंद्र सिंह जो कि मोहल्ला बरखेड़ा लखीमपुर से लापता है, इनका होलिया इस प्रकार है, उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, पतला फुर्तीला शरीर है, रंगे हुआ लंबा चौड़ा शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप मोहल्ला बरखेवा थाना में इनकी जानकारी दे सकते हैं। लीजिए सुनिए करने सूचना। रूप जो कि लापता हैं, गरनाटी सरकारी स्कूल से हैं और इनका हुलिया जो है वो इस प्रकार है, रंग गेहुआ है और दुबला पतला शरीर है, कद 6 फुट है। इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो थाना कलानोर को आप इनकी जानकारी दे सकते हैं। लीजिए सुनिए अंतिम सूचना। मकड़ोली लाइन पर नहर में एक नाम पता ना मालूम लड़की का लाश मिली है जो कि 15-16 वर्ष की है, रंगी हुआ है, रंगूतरा चेहरा है, कद 5 फुट 3 इंच है, नीले रंग की पजामी है और करीम कलर का कमीज पहने हैं। कोई भी जानकारी हो तो थाना सदर रोहतक को आप इनकी जानकारी दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। मिडिल वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टोरी की घाड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री नायब सिंह ने पंजाब सरकार पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने कहा, देश भर में घरेलू LPG की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हरियाणा में आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त शामिल है। मुख्यमंत्री ने 9,76,000 बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
3: अलग अलग स्कीम के प्रदेश में जो बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब तक 7 किस्तें जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव था।
2: मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 35,62,000 लाभार्थियों को 1,146,73,00,000 रुपए जारी किए गए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने किसान मुआवजा राशि भी जारी की।
4: जो फसल खराब हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370,52,00,000 रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की।
2: इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215,29,00,000 रुपए की सहायता राशि और 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी की 38,54,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। साथ ही 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा व पंजाब सरकार से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करते हुए पंजाब सरकार को असफल बताया। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में लाभ राशि के सीधे हस्तांतरण उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब में हुए बम विस्फोट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि वहां के पुलिस महानिदेशक के अनुसार इसके तार ISI से जुड़े हो सकते हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार नशे व खनन को नियंत्रित करने का झूठा दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। उनके पंजाब दौरों पर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आपत्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग उन्हें प्यार से अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, तो इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा काफी पहले की गई घोषणा के बावजूद आज तक वहां महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं दिया गया। हरियाणा के वर्तमान बजट में महिलाओं के लिए 6500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने के बाद पंजाब सरकार ने लोक दिखावा करते हुए आनन फानन में विधानसभा में महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, जबकि अभी तक एक महिला को भी लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, PNG कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
2: सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पलवल जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में श्री गुर्जर ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बरतने की शिकायत बैठक में सामने आई है। ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना को लेकर उन्होंने बताया,
6: अभी बात हुई है, उसका DPR चल रहा है, RRTA का भी सर्वे चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है, दिल्ली में फिर से बैठक करके उसे आगे किया जाए।
2: बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा,
6: विपक्ष जब भी हारता है तो वो कहता है कि चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, गड़बड़ हो गई, जबरदस्ती जीत गए, बंगाल में चोरी होगी, तो फिर चोरी केरल में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 240 सीटें NDA की आई थी, तब तो उन्होंने कहा वोट चोरी हो गई। ये हार को पचा नहीं पाते।
2: हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने वार्ड 12 से निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया के घर पहुंचकर उनकी भाजपा में घर वापसी कराई। पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी राकेश जगोता को समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए मेहनत करेंगी। अम्बाला नगर निगम चुनाव को लेकर आज विभिन्न राजनीतिक दलों तथा आजाद उम्मीदवारों द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो निकाले गए। इन रोड शो में उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। उम्मीदवार खुले वाहनों में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री

0: एम भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक पत्रकार वार्ता में दिए उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें हुड्डा ने सांपला नगर पालिका चुनाव में सांपल वासियों से भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि सांपला नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई, जबकि यह क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में करीब खत्म होने के कगार पर है। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस पर हरियाणा में रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जींद जिले में रेड क्रॉस भवन में आयोजित मुख्य समारोह में मानवता की सेवा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना संदेश दिया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कौशिक ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर के आयोजन के अलावा लगभग 5.25 लाख रुपए की लागत के सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
1: रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए मोटिवेट हो, और जो व्यांग है उनको कुछ अप्लायंसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लगभग 5.25 लाख रुपए के अप्लायंसेस जो है, जिसमें कानों की सुनने की मशीन है, व्हील चेयर है और बैंक है, कई सेफ्टी बेल्ट है।
0: फरीदाबाद में भी विश्व रेड क्रॉस दिवस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सेवा, जागरूकता और मानवता को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सरोता ने बताया,
2: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और एक यूथ रेड क्रॉस के साथ सेमिनार किया गया। उसके बाद हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सभी रोगियों को फल और मिठाई वितरित की गई, विशेष पोषाहार वितरित किया गया।
0: आज विश्व थैलेसीमिया दिवस व विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर हिसार रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर और एक रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में लोगों को नशे के दुष्परिणाम बारे जागरूक किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: मेडनवेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 और 12 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाई ने बलजीत भाई की राम राम। और भाई सबसे पहले देखो दो पैर को भी बात चल रही थी और अब भी भाइयों को देखो जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं हम तो उन्हीं को बधाई का पात्र मानते हैं क्योंकि आज आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और वो पूरे तब हुए हैं जब हमारे श्रोता भाई बहनों का प्यार हमारे साथ था, उनका साथ हमारे साथ था। हालांकि देखो जो भी काम हैं चाहे कोई से भी कार्यक्रम हैं सबके अंदर रोचकता लाने की बड़ी कोशिश की जाती है और वही कोशिश हमने भी करी है तो इस कोशिश को साकार रूप हमारी का जब होता है जब हमारे श्रोता भाई बहन हैं वो हमारे कार्यक्रमों की सराहना करें हैं या कोई कमी है तो उस कमी को बतावे हैं ताकि हम उस कमी के अंदर सुधार करें। यही बातें होती हैं और इन्हीं बातों को साथ में लेकर जब हम चल रहे हैं तो हमारे जो

0: कार्यक्रम हैं उनमें निखार आंदा चला जा है। हम ये नहीं कहे बे जो हमारे श्रोता भाई बहन हैं भाई कहें कि आपके कार्यक्रम देखो जिस कार्यक्रम में जो कमी है वो ज़रूर बतानी चाहिए ताकि आगे के लिए कोई सुधार हो। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आगे चल कर न और जो पीछे वाला जो समय था जब अपने पास मनोरंजन के इतने साधन नहीं होया करते तब भी तब से लेकर न अब तक एक सरल सस्ता और टिकाऊ साधन इसको माना जाता है। पहले संचार के साधन इतने नहीं होया करते, आजकल बहुत सी तकनीकें आ गई हैं लेकिन उन तकनीकों के आने के बावजूद भी रेडियो की एक अपनी ही अलग पहचान है, अपनी ही एक अलग जगह है क्योंकि रेडियो के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए और जो ज़्यादा साधन संपन्न नहीं हैं हमारे जो इलाके वहाँ भी इसकी पहुँच खूब बनी रही है, लोगों का मनोरंजन करती रही है। तो इसी के संदर्भ में जो कार्यक्रम चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो आजकल टीवी है या मोबाइल है उसके कार्यक्रमों में देख कर रेडियो का कार्यक्रम इतना आसान लगता है कि हम कहीं भी बैठे हों या कहीं चलते हुए इसको सुन सकते हैं, काम करते करते भी इसके कार्यक्रमों का हम आनंद ले सकते हैं। इसी के उसमें जो है रेडियो की उपयोगिता सही सार्थक सिद्ध होती है। बाकी यूँ है कि भाई आज शुक्रवार है और कार्यक्रम रहा अगर अपना जो भी खेती बाड़ी से संबंधित है उसके हिसाब में भी तो उस पर भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम जिक्र यूँ करेंगे कि भाई इस टाइम पर कपास की बिजाई का जो समय चल रहा है वो चल रहा है। तो कपास की बिजाई कुछ भाई तक कर चुके, वो जो कर ली है तो अप्रैल की शुरुआत में क्योंकि जो रेतीले इलाके हैं अपने उस हिसाब ने देख कर रेतीले इलाके में हमें कपास की बिजाई कराया कर रहे हैं, बखत न कर लें ताकि आगे चाल कर जब गर्मी बन जाए है तो जो कपास का जो फुटा होगा वो जड़े नहीं। और उस हिसाब ने देख कर कुछ भाई इबी भी लाग रहे हैं करण, तो जो सही समय है ख़ास तौर पर 15 से 20 मई तक इसके हम सही तरीके से बिजाई कर सके हैं और बिजाई करण में यू महीना हम पूरा ले भी सकें लेकिन इससे लेट ना करें क्योंकि इससे फिर पछेत जान में बड़ी दिक्कत आवे है। और दिक्कत ये आ जाए कि बाग चार के फिर कीड़े हैं बीमारी हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें घर कर जाएं कपास की फसल के अंदर। तो इन चीज़ों का थोड़ा हाथ ध्यान रखें कि समय पर जो बिजाई हो जाए और सिफारिशुदा खाद की मात्रा सिफारिशुदा जो अपनी उसकी जो सिफारिशें बताई जाती हैं वो सारी जब कर ले हैं तो उनका काम करके ने और जब हम चालेंगे तो आगे चाल कर फिर हमारी जो फसल की जो पैदावार है वह सही तरीके से होनी शुरू हो जाए। कोई भी फसल लें चाहे वो कपास कपास की बात नहीं है भाई, चाहे धान की ले लें या और दो दूसरे हमारे काम हैं उनकी कर लें तो सारी की सारी बातें ये हो जाया कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी हम देखें तो कोई भी काम ठावे हैं या कोई फसल ले हैं तो एक तो किस्म का चुनाव उसके ऊपर ते जो सिफारिश शुदा जो मात्राएं बताई जाती हैं वो सारे के सारे जो तरीके हैं वो हमने लेकर साथ में चलने पड़ेंगे जब जाकर हमारे काम चलेंगे। और धान की बात करें कि भाई कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। आज शुक्रवार है और बारी है फोन इन कार्यक्रम की और आज का जो हमारा विषय है वो है खेती बाड़ी से संबंधित समस्याएं उनका समाधान। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो मौजूद हैं आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार, आप निदेशक हैं मानव संसाधन प्रबंधन विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बलजीत भाई।
0: और डॉक्टर साहब भाइयों को बता दें जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं कि भाई आज हमारा जो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो रोहतक इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और बड़ी सफलतापूर्वक ये काम हुआ है, निर्बाध सेवाएं देते हुए हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देते हुए और बड़े अच्छे तरीके से सारे कार्यक्रमों का संचालन अच्छे तरीके से होता रहा। 8 मई 1976 को ऑल इंडिया रेडियो रोहतक की स्थापना हुई और आज जो है इसके बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रमों का सुचारू रूप से चलते हुए निर्बाध रूप से 50 वर्ष पूरे किए, और इसके बधाई के पात्र हम अपने श्रोता भाई बहनों को मानेंगे, क्योंकि श्रोता भाई बहन हैं जो कार्यक्रमों को इतना शिद्दत के साथ सुनते हैं, जो भी थोड़ी बहुत हमारी कमियां होती हैं उनके बारे में भी हमें बताते हैं ताकि हम उनमें सुधार कर सकें, और उनके फ़ोन करने से उनके कार्यक्रमों की जो बड़ाइयां करते हैं वो हमारी, उनके बड़ाइयों से हमारा हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता है और कार्यक्रम में और भी ज़्यादा रोचक बनाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। हर तरीके के कार्यक्रम, चाहे वो सांस्कृतिक के कार्यक्रम हों, हिंदी के कार्यक्रम हैं, हरियाणवी के हैं या किसी भी प्रकार के हैं, और जो अपने ग्रामीण अंचल के जो कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे इस पर चलते हुए 50 वर्ष पूरे किए, और इसी आशा के साथ के हमारे जो श्रोता भाई बहन हैं इसी प्रकार हमारा साथ देते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ भाइयों को एक बार फिर बधाई देते हैं कि रेडियो को जो है इतना उन्होंने रुझान दिया और इतनी जो है शिद्दत के साथ वो सुनते रहते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब देखते हैं, क्योंकि फ़ोन भी आने शुरू हो जाएंगे और तब तक हम थोड़ी ही अपनी बातचीतें जारी
1: बिल्कुल
0: रखें, भाई
1: बिल्कुल
0: जो अपना काम दाम चल रहा है नहीं भाई, खास तौर पे कपास की बिजाई का कुछ भाई तक कर भी चुके, अप्रैल से शुरुआत हो जाए है
1: हाँ
0: रेती
1: हाँ
0: इलाके में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जो भाई रह रहे हैं तो कब तक बिजाई कर सके हैं?
1: अभी देखो कपास की बिजाई का ना ज़्यादातर हरियाणा के में इलाकों में अब सही समय है और ज़्यादा देर नहीं करें, 15 से 20 मई तक बिजाई कर लें किसान भाई, उसके बाद नहीं करें क्योंकि
0: जी
1: बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं,
0: हाँ
1: कीड़ा है उसके ज़्यादा प्रकोप होता है, तो कोशिश करें किसान भाई पानी का प्रबंध करके पड़ेवा करके 15 मई तक कर लें
0: जी
1: और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मई तक,
0: 20 मई
1: उससे
0: तक।
1: ज़्यादा देर नहीं करें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जिन्होंने अप्रैल में बिजाई कर दी
1: हाँ जी हाँ
0: वो
1: जी,
0: ही की सावधानी बरतें।
1: अप्रैल में बिजाई का खाद डाले होंगे किसान भाइयों ने और
0: हाँ
1: सही समय पे बिजाई करके, अब भी कुछ नहीं करना, केवल
0: हाँ
1: किसानों ने ये करना है कि पहला पानी है वो जितना देर से हो उतनी देर से लगाना है,
0: जी
1: और उसके बाद जब फसल 45-50 दिन की हो जाए, जब बो के आने की अवस्था हो जाती है, उस समय पानी भी लगाएं और यूरिया जो नाइट्रोजन की खाद भी फसल में दें।
0: जी
1: अब और निराई गुड़ाई करें, अब जो जिन्होंने
0: हाँ
1: अप्रैल में अप्रैल की लगाई हुई फसल की 15-20 दिन बाद निराई गुड़ाई का समय आ जाएगा,
0: जी
1: निराई गुड़ाई करें और पहला पानी से पहले कर दें निराई गुड़ाई,
0: अच्छा
1: और जितना हो सके पहला पानी देर से लगाएं, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब सुबह शाम अगर पौधे मुरझा रहे हैं तो पानी की ज़रूरत होती है, पानी लगाएं,
0: जी
1: ये ध्यान रखें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखें कि दोपहर में किसान भाई खेत में चले जाएं
1: तो
0: और जब पत्ते
1: पौधे
0: मुरझाए देखें।
1: वो तेज़ धूप से मुरझाते हैं,
0: हाँ
1: उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है,
0: जी
1: लेकिन अगर सुबह और शाम के समय
0: हाँ
1: पौधे मुरझा रहे हैं तो खेत में पानी की कमी है, नमी कम है,
0: जी
1: तो तब ज़रूर लगा दें,
0: बिल्कुल
1: लेकिन इतना अगर सुबह शाम पौधे सही स्वस्थ हैं
0: हाँ
1: सही हैं तो जितना देर से करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, इसका एक ही है कि जितना देर से करने से जड़ें गहरी जाती हैं, जितना
0: जी
1: जड़ें गहरी होंगी उतना ही पौधा मजबूत होगा,
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: डॉक्टर
1: ध्यान
0: साहब,
1: रखें बलजीत
0: इसमें
1: भाई।
0: कुछ जो भाई रह रहे हैं तो एक आदि कोई किस्म वगैरह?
1: किस्म में ज़्यादातर किसान भाई बलजीत भाई हरियाणा में ना बीटी कपास के लगाते हैं, बीटी
0: हाँ
1: कपास की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके हाइब्रिड हैं,
0: जी
1: रासी की है RCH 951 अच्छी
0: अच्छा
1: है, RCH 960 है, टाटा की दिग्गज है ये लगाते हैं, और बहुत सारी अमर बायोटेक के हैं, अजीत सीड्स के हैं,
0: हाँ
1: सीड वर्क्स के हैं, बहुत
0: हाँ
1: सारी अपने श्री राम के हैं जो
0: हाँ
1: बायो सीड्स के नाम से, बहुत सारी हैं, पर मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अपने नज़दीक जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं के
0: हाँ
1: में विशेषज्ञ हैं या कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे ज़रूर जानकारी ले लें
0: जी
1: इसके बारे में, लगाने कौन सी किस्म बोएं
0: हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: सही से बता पाएंगे, लेकिन ये जो रासी की 951 है, 960 है, टाटा दिग्गज है, ये लगा सकते हैं, अच्छी हाइब्रिड है बीटी की।
0: जी डॉक्टर साहब, थोड़ी जानकारी ये चाहूँगे कि कई बार जो है किसान भाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, सीधे शहर में चले गए तो

0: बीज हमने कहाँ से लेना चाहिए अगर हम वैसे जाके जाओ?
1: देखो ये बीटी के जितने भी हाइब्रिड हैं प्राइवेट कंपनियों के, जो भी
0: हाँ
1: हमारे जो भी दुकानें हैं बीज खाद की, उन्हीं पे
0: हाँ
1: ही है ये उपलब्ध।
0: जी
1: तो उनके पास जब जाते हैं, शहर में ये दुकानें कस्बे में हैं,
0: हाँ
1: तो वहीं पे ये हमारे कृषि विभाग के तो ब्लॉक लेवल पे हैं हर जगह,
0: जी
1: और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ समय निकाल के जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। और
0: जी
1: बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन नंबर भी हैं जैसे आप बता रहे थे,
0: हाँ हाँ जी
1: फ़ोन से भी जानकारी ले सकते हैं
0: जी
1: कि, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अच्छा
0: हाँ
1: रहेगा उन्हीं के लिए। ये फ़ायदा है कि 1-5-10 मिनट की जानकारी है ना, और 6 महीने के लिए उनको फ़ायदा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, अगर लेना भी पड़ जाए कहीं, तो
1: प्रमाणित
0: कौन सी दुकान से लें जो प्रमाणित हो, या फिर के सावधानी
1: देखो
0: बरतें?
1: मैंने बताया बलजीत भाई, ये जो कपास की बात है ना, खासकर बीटी की,
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: जो प्राइवेट डीलर है ना, उन्हीं के पास ही होता है। हमारे जैसे विश्वविद्यालय में या सरकारी दुकानें ना, ये मतलब उपलब्ध नहीं करवाते हैं इनको।
0: जी
1: तो जो अच्छी जो दुकानें हैं, और
0: हाँ
1: जो
0: प्रमाणित हो तकरीबन
1: हाँ जो
0: जी
1: अच्छी दुकानें हैं और जो अच्छा बीज रखते हैं,
0: हाँ
1: उन्हीं से लें। मतलब विश्वास हो किसान को कि भाई ये जो है दुकानदार, ये अच्छा बीज रखता है, उसी से ही लें। मतलब
0: डॉक्टर साहब, इसकी कोई
1: लेकिन इसमें
0: पक्की
1: ये है कि
0: रसीद
1: अपना
0: या
1: रसीद
0: बिल?
1: लें, मतलब ये
0: जी
1: जो
0: जी
1: आपने जिक्र कर दिया
0: जी
1: कि
0: जी
1: रसीद ज़रूर ले लें, उससे जो बीज लिया है ना, तो उसका वो किस्म का नाम भी लिखवाएं,
0: हाँ
1: ताकि आगे दिक्कत नहीं आए,
0: जी
1: तो ये
0: जी
1: ज़रूर ध्यान रखें।
0: और डॉक्टर साहब, हमारे जो अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो अपने अनुसंधान केंद्र हैं, उनके नंबर भी हैं,
1: उनके सभी
0: तो
1: के हाँ
0: उनसे अपना किसान भाई
1: संपर्क
0: संपर्क
1: कर
0: जरूर कर ले।
1: संपर्क
0: हाँ
1: कर लें, और बातचीत करेंगे तो मतलब वो जानकारी देंगे कि भैया आप ये बीटी हाइब्रिड लगाएं,
0: हाँ
1: और भी चीज़ें जो भी काम है वो बताएंगे, कौन सा खाद डालना है,
0: जी
1: कितनी मात्रा में डालना है,
0: हाँ
1: और सारी जानकारी देते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में।
0: बिल्कुल है। और डॉक्टर साहब, 15-20 मई के बाद बिजाई ना करें, इससे पहले पहले अपना
1: हाँ
0: काम निपटा
1: नहीं,
0: लें।
1: अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो मई मई के महीने में कर लें,
0: जी मई
1: मतलब
0: मई का
1: हाँ,
0: मतलब
1: तो
0: जी
1: लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं करें।
0: जी
1: हाँ जी
0: डॉक्टर साहब, बात करें धान फसल की,
1: हाँ जी हाँ जी
0: एक तो सीधी बिजाई का समय बता दो,
1: हाँ,
0: कहाँ तक है, कितना
1: सीधी
0: टाइम
1: हाँ,
0: बच
1: तो
0: रहे?
1: 10-15 जून से पहले पहले कर लें
0: सीधी बिजाई,
1: हाँ, सीधी बिजाई का।
0: सीधी
1: और
0: बिजाई
1: सीधी
0: में
1: बिजाई
0: फायदा कौन सा रहेगा
1: फ़ायदा
0: डॉक्टर साहब?
1: ये है कि देखो, सीधी बिजाई का हम हरियाणा की स्थिति देखें ना, तो पानी का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है।
0: हाँ
1: एक दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लेबर है नहीं,
0: जी
1: रोपाई करते थे तो
0: जी
1: लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तो ये है, दोनों ही दिक्कतें थी। और ख़ासकर हमारा जो चिंता है वो पानी की है,
0: जी
1: कि हम जैसे पानी खड़ा करके ना खेत
0: हाँ
1: तैयार करते हैं, जिसको पाड़ा काटना बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए,
0: जी
1: रोपाई के लिए,
0: जी
1: तो पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। हमारे ज़्यादा चिंता तो पानी की है,
0: पानी
1: क्योंकि
0: की
1: जहाँ बहुतायत में पानी था ना, वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा कम है अब,
0: जी
1: तो ये ज़रूरत है। दूसरा, लेबर भी मतलब रोपाई के लिए उपलब्ध नहीं होती, समय पर रोपाई
0: हाँ
1: नहीं होती थी, पैदावार कम होती, तो लेबर की भी इसमें ज़रूरत नहीं, मशीन से सीधी बिजाई कर देते हैं, दोनों ही
0: सीधी
1: फायदे हैं।
0: जी
1: तो हम तो यही कहेंगे किसान भाइयों को, जब सीधी बिजाई से उतनी पैदावार मिल जाती है,
0: हाँ
1: तो क्यों खेतों को। और तीसरा,
0: हाँ
1: जो हमारी रोपाई वाला है ना, जो हम ट्रांसप्लांटेड राइस बोलते हैं, जो मतलब रोपाई वाला धान, उसमें खेतों की स्थिति भी ना, जैसे
0: हाँ
1: पडलिंग करते हैं पाड़े
0: जी
1: का, तो आप जिक्र कर रहे थे कि सख्त परत बनती है खेतों की,
0: जी जी
1: ठीक है ना, वो भी सीधी बिजाई से नहीं बनेगी। तो 3-4 ऐसी दिक्कतें आई हैं कि आज मतलब हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया,
0: जी
1: पानी की भी कमी है, खेत
0: जी
1: भी सख्त हो गए, और लेबर भी नहीं है,
0: जी
1: तो इन सभी चीज़ों का समाधान सीधी बिजाई में है बलजीत भाई।
0: बिल्कुल सही बात
1: हाँ
0: है। और डॉक्टर साहब, अगर सीधी बिजाई ना करें, क्योंकि पहली बात तो हम ये कहेंगे किसान भाइयों के, धान उसी जगह लगाएं जहाँ हमारे द्वारा पानीपात के साधन
1: पानी के
0: ज़्यादा
1: उपलब्धता,
0: मात्रा में उपलब्ध
1: बिल्कुल
0: हों, या
1: बिल्कुल
0: फिर अपना कई बार समस्या हो जाती है कि चोहे की समस्या आ जाती है,
1: हाँ
0: चोहा थोड़ा ऊपर हो,
1: हाँ ऊपर है वहाँ पे
0: तो
1: लगा,
0: उस जगह पे भी हम धान
1: हाँ
0: का थोड़ा कर
1: बिल्कुल
0: लें।
1: बिल्कुल
0: और अगर सीधी बिजाई के अलावा अगर हम रोपाई के हिसाब
1: रुपए
0: में चालें,
1: बिल्कुल
0: तो उसके लिए हमने जो नर्सरी में प्योत तैयार करनी है, उसका समय और बता दो
1: हाँ।
0: डॉक्टर
1: अब
0: साहब।
1: 15 मई से लेके और 30 जून तक नर्सरी तैयार कर सकते हैं,
0: जी
1: और 15 मई को, जो मान लो 15 मई को जिसने नर्सरी डाल दी, वो 1 महीने में
0: हाँ
1: तैयार हो जाएगी, 15 जून तक
0: बिल्कुल
1: हो, 15 जून के बाद आप रोपाई शुरू कर दें, तो उसी हिसाब से पौध तैयार हो जाती है, 35-40 दिन में,
0: जी
1: तो रोपाई कर दें अभी, मतलब 15 मई से तैयार करना शुरू कर दें किसान अपनी नर्सरी का।
0: जी डॉक्टर
1: तो
0: साहब, नर्सरी में बीज जब बिजाई करें हम, तो उससे पहले हमने के के कुछ से कार्रवाई करनी
1: है कि बीज का उपचार कर लें बलजीत।
0: अच्छा
1: ठीक है ना, और नर्सरी में जैसे खाद और उनका कीड़ों का बीमारियों का ध्यान रखें, पौध अच्छी होगी तो सही मतलब सही समय पर तैयार हो जाएगी और अच्छी तरह पकड़ करेगी
0: जी।
1: तो नर्सरी अगर अच्छी तैयार हो जाती है तो काफ़ी हद तक काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती है। एक आधी बीमारी तो ऐसी है धान में जो नर्सरी में ही हो जाती है
0: जी
1: तो उसका भी समाधान हो जाएगा। तो सावधानी यही रखें किसान भाई कि बीज का उपचार करें और नर्सरी की जो जगह है उसमें खाद और बीज के जमुआर के बाद भी जैसे पीली हो जाती है नर्सरी तो उसमें खासकर लौह तत्व की कमी है या जिंक की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति के लिए खाद जरूर डाल दें,
0: जी
1: ये ध्यान रखें।
0: डॉक्टर साहब शुरू में जो कराया करें ना कि किसान भैया के कुछ से सवाल भी आए जहाँ हैं कि भाई वो हम नमक के पानी में उसमें भिगो
1: हाँ
0: फिर
1: वो
0: क्यों
1: बीज उपचार के लिए ना,
0: बीज
1: जैसे
0: उपचार।
1: नमक के पहले घोल से निकाल लें
0: हाँ
1: और निकालने के बाद फिर बेविस्टिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दो फफूंद नाशक दवाई है
0: जी
1: वो बाल्टी में पानी डाल के 24 घंटे के लिए उसमें घोल दें। पहले मतलब नमक वाले घोल में पहले 10 लीटर पानी लेके 1 किलो नमक डाल लें
0: जी
1: और 3-4 मिनट तक 4-5 मिनट तक डबो के नार उसको निकाल लें। जो हल्का बीज ऊपर आए उसको निकाल दें और नीचे बैठता है उस बीज को ले लें, फिर उसको साफ पानी से निकाल लें
0: जी
1: और उसके बाद 24 घंटे इन दो दवाइयों से बीज का उपचार कर लें और फिर 24 घंटे के लिए गिल्ली बोरी में ढक के रख दें,
0: जी
1: फिर नर्सरी की जो जगह है उसमें डाल लें तैयार करके
0: बिजाई कर।
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: बिजाई कर।
0: सही बात है। डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा रुकेंगे और विराम लेंगे मनोरंजन के लिए, भाइयों का मनोरंजन करवाऊंगे, भाइयों को रागनी सुनाऊंगे, गायक कलाकार होंगे श्री भगवान शर्मा और उनके साथी।

0: डॉक्टर साहब कुछ समय है जैसे कि अपना खाली खेत हो रही है और हमने आगे धान की ही बिजाई करनी है, तो इन बीच में खाली खेत का हम कैसे सदुपयोग कर सकें?
1: देखो अभी ना हरी खाद धान के खेतों में भी हरी खाद लगा सकते हैं
0: जी,
1: और अभी डचा की बिजाई कर दें
0: हाँ
1: और फिर 40-45 दिन बाद खेत में जुताई कर दें, उसके बाद 17-10 दिन बाद धान की रोपाई हो जाएगी।
0: जी
1: ठीक है ना, तो खाली खेत नहीं रखे, चाहे और दूसरे भी इलाके हैं जहाँ जहाँ मतलब कपास, तो चलो अब कपास की बिजाई हो रही है, या जहाँ पे बाजरा आएगा वहाँ भी मतलब डेचा की बिजाई कर लें हरी खाद, तो खाली की बजाय ज़्यादा फायदा होगा, खेत का सुधार होगा
0: जी
1: और नाइट्रोजन की पूर्ति होगी अगली फसल के लिए।
0: जी
1: तो खाली पर इसमें यह तो जरूर है कि पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी,
0: जी
1: तो पानी का अगर प्रबंध है तो
0: हाँ
1: किसान भाइयों को हरी खाद
0: हाँ
1: की बिजाई करनी चाहिए।
0: यानी कि मूंग है अपना, डेचा है, या कुछ भी हम इसमें ले सकते
1: मूंग
0: हैं।
1: का ये है कि देखो अब तो मूंग का समय नहीं है,
0: हाँ
1: हम जो बैसाखी मूंग कहते हैं ना, समर मूंग कहते हैं,
0: जी
1: वो मार्च के और 15 अप्रैल तक बिजाई कर लेते हैं
0: कर
1: ना,
0: लेते हैं जी।
1: तो अगर हमें मान लो पैदावार भी कम मिलती है या नहीं भी मिलती, तो खाली खेत की बजाय उसमें मूंग के जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन देते हैं
0: जी
1: और वो जो भी जितनी भी बढ़वार होगी उसको खेत में जुताई कर दें,
0: जी
1: और अगर हमें मान लो पैदावार भी मिल जाती है 2-2.5 क्विंटल 3 क्विंटल, तो वो
0: हाँ
1: भी एक फ़ायदा है हमें, और बाद में फलियां तोड़ने के बाद भी उसको खेत में जुताई कर दें और पौधे की बढ़वार के दौरान भी वो ज़मीन में नाइट्रोजन देते हैं।
0: जी
1: तो मूंग जहाँ जिस इलाके में, खासकर धान वाले इलाके में
0: हाँ
1: जहाँ खेत सही नहीं है, वहाँ तो डेंचा तो लगा लें, लेकिन मूंग जरूर लगाना चाहिए
0: जी
1: बीच में। जैसे गेहूं की कटाई हुई तो गेहूं की कटाई के तुरंत बाद, अब तो हम ये कहते हैं कि 15 अप्रैल तक भी मूंग की बिजाई कर सकते हैं,
0: कर सकते
1: कटाई
0: हैं।
1: करते ही मूंग की बिजाई कर दें
0: हाँ
1: और फिर बाद में धान आ जाएगा उस पर।
0: जी डॉक्टर
1: तो
0: साहब, ढेंचे की हमने बिजाई कर दी, तो कब तक वह बाढ़ने के लायक हो जाए
1: पैंतालीस
0: है?
1: से डेढ़ महीने के
0: डेढ़
1: बाद
0: महीने
1: उसकी
0: के बाद।
1: मतलब जुताई कर दें, खेत में बा दें
0: अच्छा
1: और वो पानी लगाएंगे ना उसमें, तो वो बहुत जल्दी गल सड़ जाता है,
0: हाँ
1: मतलब हाँ
0: जी
1: डेंचा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता
0: डॉक्टर साहब,
1: साफ।
0: इसमें रासायनिक खादों का कितना बचाव हो जाएगा अगर हम हरी खाद देते हैं अपने खेत के
1: इसमें
0: अंदर?
1: मतलब हम ये है कि हरी खाद डालते हैं तो 1/3
0: 1/3।
1: 1/3 खाद हम मतलब बचत हो जाती है,
0: जी
1: खासकर नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। और खेत का इसमें तो बलजीत भाई खास बात यह है कि खेत का सुधार बहुत अच्छा होता है, पीएच
0: जी
1: जो हम कहते हैं ना,
0: हाँ
1: जो तासीर होती है खेत की, वो बहुत अच्छी हो जाती है,
0: जी जी
1: पीएच मान को स्थिर करता है, नीचे लाता है। हरियाणा की ज़मीनों का पीएच है ना वो ज़्यादा 8.5 से ऊपर ऊपर है,
0: जी
1: तो वो नीचे अगर 8 से नीचे आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, वो ढेंचा कर सकता है हरी खाद से हो जाए,
0: जी तो हरी खाद के
1: बिल्कुल
0: बहुत ज़्यादा फायदे हैं डॉक्टर साहब,
1: फायदे हैं,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये समय भी है अपने पास है।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, एक बार फिर भाइयों का मनोरंजन करवा दें, गायक कलाकार होंगे, भाइयों को रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार होंगे मास्टर रामफल शर्मा और उनके साथी।
2: पति वरताने पति की जरूरत।

0: डॉक्टर साहब, बात करें खाली खेत में, एक तो हरी खाद का आपने बताया, दूसरा एक और भी काम रह जाए कि हम मिट्टी की
1: मिट्टी
0: जांच
1: पानी की
0: कराएं।
1: जांच, अभी मिट्टी की जांच भी किसान भाई खेत खाली है ना तो
0: हाँ
1: नमूने लेके कर सकते हैं, उससे
0: जी
1: बहुत ज़्यादा फायदा है। एक तो ये पता लग जाएगा खेत में कौन सी मात्रा में कितने तत्व हैं, तो उसके आधार पे हम अपनी फसल के खादों की सिफारिश मतलब जानकारी कर सकते हैं।
0: जी
1: तो इसमें एक तो पहला तो कदम यही है, स्टेप यही है कि किसान को नमूने सही से तरीके से लेने हैं। यूँ नहीं है कि खेत में जाएं कसी ली ऊपर से मिट्टी को
0: हाँ
1: इकट्ठी कर ली डाल ली थैली में, नहीं ऐसा नहीं है।
0: जी
1: फसलों के लिए हम खादों की सिफारिश करने के लिए 6 इंच की गहराई के बताते हैं, आधा फुट तक कस्सी से 6 इंच
0: जी
1: का गड्ढा बना लो या वी आकार का आकृति बना लो, एक
0: हाँ
1: बार तिरछी कस्सी मार लो दूसरी तरफ से दूसरी,
0: जी
1: ऊपर से मिट्टी खुर्च के लेनी है नीचे तक तली तक,
0: जी
1: ये नहीं है कि तली से भी खुरपी से या ऊपर से ले ली, ऊपर से नीचे तक 6 इंच की जो भी परत बनती है उससे मिट्टी लेनी है।
0: जी
1: एक खेत में 3-4 जगह ले लो उसको मिला लो, ऐसी जगह मत लो जहाँ पानी का नाला है या पेड़ है कोई उससे नीचे या कोई खाद के ढेर हैं या यूं लगता है कि यहाँ कोई काम किया है रूढ़ी कोई गोबर की खाद डाल रखी थी या इस तरह से, 4-5 जगह लेके उनको इकट्ठा मिला लो अच्छी तरह, उसमें आधा किलो मिट्टी ले लो
0: जी
1: वो अपना जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दो, फिर
0: जी
1: रिपोर्ट आ जाएगी कितनी मात्रा में नाइट्रोजन है आपके खेत में, कितनी मात्रा में फास्फोरस है, कितनी में पोटाश,
0: जी
1: उसके आधार पर फिर जो भी एक्सपर्ट है वो रिपोर्ट किसान एक्सपर्ट को दिखाएगा, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र का साथी है चाहे कृषि, वो बता देंगे, किसान बताएगा फसल कौन सी लेनी है तो
0: जी
1: उसके आधार पर बता देंगे कि भाई आपने इतनी इतनी मात्रा में खाद डालना है। तो इसमें बलजीत भाई दोनों ही बातें हैं, कई बार किसान भाई कम खाद डालता है
0: जी
1: जितनी फसल को ज़रूरत है तो पैदावार कम मिलेगी,
0: जी जी
1: कई बार किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा डालता है तो वो पैसा ज़्यादा लगता है,
0: पैसा ज्यादा।
1: पैदावार में कोई ज़्यादा विशेष फायदा
0: नहीं
1: बढ़ोतरी नहीं होती,
0: जी
1: तो ज़रूर करवा लेनी चाहिए मिट्टी की जांच।
0: हाँ
1: इसी प्रकार पानी की जांच भी करवा लेनी चाहिए, 6 महीने में एक बार पानी की जांच से पता लग जाएगा पानी की गुणवत्ता क्वालिटी कैसी है,
0: जी
1: उसके आधार पर हम अपने फसलों का सिलेक्शन कर सकते हैं, किस्म का सिलेक्शन। कई बार किसान भाई मतलब नुकसान जहाँ पानी खराब है उसका सही से जानकारी नहीं होने के कारण पैदावार किसान को कम मिलती है,
0: जी
1: गेहूं की बात कर ले हम,
0: हाँ
1: कई बार ज़्यादा खराब पानी है तो किसान को 25-30 मणी मिलता है किले का,
0: जी
1: अगर सही तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करे जानकारी के आधार पे तो किसान भाई 40-45 मन गेहूं की पैदावार ले सकता है।
0: ले सकते हैं।
1: तो ये पानी की भी जांच ज़रूरी है, हर 6 महीने में एक ट्यूबवेल का पानी की जांच करवा लें और हर 2-3 साल में मिट्टी
0: मिट्टी की
1: की
0: जांच।
1: जांच करवा लें।
0: डॉक्टर साहब, थोड़ा हाँ फिर रुकेंगे और फिर भाइयों का मनोरंजन करवाएंगे, क्योंकि आज देखो बड़ी खुशी भी है, 50 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं आकाशवाणी को और हो गए हैं, तो इससे खुशी में आज भाइयों का साथ साथ में मनोरंजन भी और साथ साथ में अपना कार्यक्रम भी। तो एक बार फिर भाइयों को एक रागनी सुनाऊंगे, गायक कलाकार होंगे रणबीर बड़वाशनिया और उनके साथी।

खटका

一逼。

0: डॉक्टर साहब मिट्टी पानी की भी जांच होगी और जो अपना हरी खाद था उसका भी जिक्र हो लिया, और देखते हैं कि भाई आगे चल कर ने इब सीजन आवे है अपना बाजरे की बिजाई का।
1: बाजरा का है देखो बलजीत भाई, बाजरा ज़्यादातर ना जो दक्षिण पश्चिम हरियाणा के ज़िले हैं, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, अपना भिवानी है,
0: जी
1: दादरी है, इनमें ज़्यादा, हिसार है, सिरसा, इनमें ज़्यादा खेती होती है। तो जैसे मानसून की बारिश जब भी आए, जब बिजाई कर दे, लेकिन पहले मानसून से पहले भी बारिश आ जाती है कई बार, जून
0: जी
1: जून के महीने में जब भी 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए,
0: हाँ
1: 10 अंगुल से ज़्यादा, तो बिजाई कर सकते 10 जून के बाद।
0: जी
1: लेकिन अगेती बिजाई नहीं करें, कई बार मई के महीने में बहुत अच्छी बारिश आ जाती है,
0: हाँ
1: तो उस समय हम तो किसानों से यही कहेंगे कि उस समय बिजाई नहीं करें, क्योंकि पकाई के समय जब जो अगर बारिश चलती रहती है तो फिर फसल में नुकसान होता है।
0: जी
1: तो कोशिश करें कि बिजाई है वो जून के महीने में, जब भी या उसके बाद जब भी बारिश होती है। तो उसके लिए जैसे मान लो जून के महीने में बिजाई करनी है, तो वो जो हाइब्रिड हैं बाजरा के जो 80 से 90 दिन में पकते हैं, वो उनकी
0: जी
1: बिजाई करनी चाहिए। और अगर 15 जुलाई के बाद किसान भाई बिजाई करते हैं, तो 60 से 65 दिन में, हमारा HHB 67 के नाम से आती है वो हाइब्रिड, बहुत अच्छा है, वो 60-65 दिन में पक जाता है।
0: जी
1: तो इस तरह के हाइब्रिड वो हैं जो कम समय में पकते हैं।
0: हाँ
1: और अगर जून में या 10 जुलाई 15 जुलाई तक बिजाई करनी है, तो 80-90 दिन में पकते हैं वो हाइब्रिड, HHB 299 है जैसे,
0: जी
1: वो बहुत अच्छा है, लो तत्व तो भी उसमें ज़्यादा है, मतलब पौष्टिक है वो, मतलब
0: जी
1: और गिरता भी कम है, बढ़वार
0: हाँ
1: कम है, तना मजबूत उसकी जो है मजबूत है,
0: मजबूत है
1: गिरता कम है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं है।
0: हाँ
1: तो किसान भाई बाजरा की बिजाई भी बारिश के आधार से जून के महीने से शुरू कर सकते हैं।
0: जी। और डॉक्टर साहब बात करें हमें पशुओं के चारे की।
1: पशुओं के चारे के लिए भी बलजीत भाई, अब जैसे ये मौसम ऐसा है कि
0: हाँ
1: जैसे मार्च से हम बिजाई शुरू कर देते हैं और जून जुलाई तक मतलब, तो चारे में ज़्यादातर तो इस मौसम के लिए ना हम सिफारिश ज्वार की करते हैं, या
0: जी
1: मक्का की बिजाई कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन ज्वार सबसे अच्छा चारा है
0: हाँ
1: और जल्दी बढ़वार होती है ज़्यादा मात्रा में। तो अब भी कर सकते हैं किसान भाई, जिनके पास पानी का प्रबंध है
0: जी
1: तो वो बिजाई कर लें अपना, पहले कईयों ने कर भी रखी है लेकिन
0: हाँ
1: अब भी करें, और पानी का जरूर पड़ेवा करके ना, फिर जब भी जरूरत होती है पानी लगा दें। तो
0: जी
1: ज्वार की किस्म SHG 69-3
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: SHG 69-3 मीठी सूडान घास के नाम से आती है,
0: जी
1: तो ये बिजाई कर दें, इससे 3-4 कटाई मिल जाती है। बस यही है कि 15-20 किलोग्राम यूरिया डाल दें, और अगर हाड़ की ज़मीन है तो 15 किलो DAP भी डाल दें बिजाई से पहले,
0: जी
1: और हर कटाई के बाद जब भी 45 दिन के बाद कटाई लेनी है, 35-40 दिन के बाद, उसके बाद 15-20 किलोग्राम यूरिया 1 किले के हिसाब से किसान
0: जी
1: को डालना है,
0: जी
1: और ज्वार की पूरी पैदावार मिलेगी।
0: डॉक्टर साहब बात करें गन्ना फसल की,
1: हाँ,
0: तो गन्ना फसल में इन दिनों हम कौन कौन से
1: अब
0: काम कर सके हैं।
1: गन्ना की फसल में अब जैसे मानसून की बारिश से पहले पानी समय पे लगाते रहें, और जो नाइट्रोजन की खाद देनी है हमने यूरिया, वो पहले ही दे लें अपना, अब एक बार दे सकते हैं उसके 1 महीने बाद, मानसून की बारिश से पहले
0: जी
1: फसल में। और एक दो कीड़े हैं, जड़ बेधक की कीड़ा आ जाता है, रूट बोरर कहते हैं, सूट कंसुआ भी आ जाता है,
0: हाँ
1: उनके साथ पानी जब भी लगाते हैं, पानी के साथ दवाई लगा दें, क्लोरपाइरिफॉस दवाई वो डाल दें, तो इन कीड़ों की रोकथाम हो जाती है।
0: जी
1: तो ये गन्ना की फसल में बस दो ही ध्यान, ज़्यादा तो इतनी ऐसी कोई, और एक खरपतवारों का,
0: खरपतवारों का
1: खरपतवारों की भी रोकथाम किसान भाई निराई गुड़ाई करते रहें,
0: जी
1: पानी लगाएं और नाइट्रोजन की खाद दें।
0: नाइट्रोजन खाद।
1: हाँ
0: और डॉक्टर साहब थोड़ा सा भाइयों का फिर मनोरंजन कराऊंगे, भाइयों को एक रागिनी और सुनवाऊंगे, गायक कलाकार होंगे और भाइयों को रागिनी सुनवाऊंगे, गायक कलाकार होंगे राजकिशन अगवानपुरिया और उनके साथी।
2: ये बड़ी मुश्किल है,

0: साहब, बात करें थोड़ा साग सब्जी वाली फसलों में, जैसे भिंडी है, बताऊ है, टमाटर है, मिर्च है, इनमें कुछ कीड़े वगैरह कुछ नुकसान पहुंचा दें?
1: हाँ देखो, जो रस चूसने, एक दो तरह के कीड़े आते हैं। एक तो
0: हाँ
1: जैसे फल में नुकसान करते हैं, सुंडी होती है,
0: जी
1: और एक पत्तों पे जैसे रस चूसने वाले होते हैं। तो रस चूसने वाले कीड़े इन दिनों में ज़्यादा नहीं होते हैं। जो तिल्ला आता है, सफ़ेद मक्खी, वो बारिश आएगी जब ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन एक दो कीड़े जैसे बेल वाले में लाल रीढ़ी होती है,
0: जी
1: वो नुकसान करती है। तो उसके लिए साइपरमेथ्रिन दवाई है, वो छिड़काव कर दें किसान भाई, और सामान्य सी दवाई मेलाथियोन से भी हो जाती है।
0: जी
1: दूसरा, जो ये सुंडियाँ हैं, ये टमाटर में भी नुकसान करती है, बैंगन में भी और भिंडी में भी। इनके लिए मेलाथियोन का भी छिड़काव कर सकते हैं, एक दूसरी दवाई है। ज़्यादा पहले तो यही कोशिश करें कि गोभ में या कोई थोड़ी बहुत अगर कीड़े का प्रकोप है तो हाथ से ही,
0: हाँ
1: हाथ से तोड़ दें, या वैसे मान लो कोई निराई गुड़ाई से भी ख़त्म कर सकते हैं इस तरह का।
0: जी
1: ज़्यादा अगर नुकसान करता है कीड़ा तो दवाई का छिड़काव करें।
0: जी
1: दवाइयाँ हैं, मेलाथियोन कर सकते हैं,
0: हाँ
1: स्पाइनोसेड हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं।
0: कर सकते
1: पानी
0: हैं।
1: लगाएं, पानी जब भी लगाएं, जब गर्म नहीं हो, जैसे गर्मी नहीं हो, तेज़ धूप नहीं हो, सुबह के समय ही पानी लगाएं। कई बार किसान को ये होता है कि नहीं, लाइट नहीं आई भैया,
0: हाँ
1: बिजली नहीं है, तो देर मतलब जब रेत ठंडा हो जाए, धूप में नहीं लगाएं
0: यानी कि
1: पानी।
0: शाम के समय भी लगा सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ शाम को भी लगा लें, लेकिन
0: जी
1: सबसे अच्छा है अगर जैसे ट्यूबवेल सुबह लाइट रहती है तो
0: हाँ
1: सुबह के समय सबसे बढ़िया रहेगा। रेत ठंडा रहेगा ना,
0: जी
1: पानी लगाएंगे तो फसल को ज़्यादा फायदा होगा।
0: बिल्कुल
1: गर्म गर्मी में धूप में लगाएंगे, रेत गर्म होगा तो नुकसान होगा
0: जी
1: जड़ों को।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए।
1: नहीं, मैं तो यही कहूँगा, आपका धन्यवाद करता हूँ बलजीत भाई, कि किसान भाइयों से मौका मिला है बातचीत करने का। आपका
0: जी
1: भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी डॉक्टर रमेश कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और तकरीबन सारी फसलों में कांट गए
1: नहीं
0: हैं,
1: नहीं कोई
0: सारे का
1: नहीं
0: भी मौका था फसलों का, और सारी जानकारी मिल
1: नहीं
0: गई।
1: कोई नहीं
0: तो इसके लिए
1: बहुत
0: आपका
1: नहीं,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: बलजीत।
0: तो भाई, भाइयों ने कार्यक्रम सुना, भाई डॉक्टर साहब स्टूडियो में आ रहे थे और भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, साथ साथ में भाइयों का मनोरंजन भी होता रहा। और भाई ईद देख लिया, हाँ घड़ी का ना, कि कार्यक्रम का समय समाप्त तो है। बलजीत भाई ने दें इजाज़त, सारे बण भैया ने राम राम।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मिणद्वीप 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। लीजिए सुनिए ये कवि गोष्ठी।
1: आकाशवाणी केंद्र रोहतक में मौजूद है इस वक्त और यहाँ पधारे तमाम कवियों का चार पंक्तियों के माध्यम से स्वागत करता हूँ। मस्तक पर जिनके भारत माटी का चंदन है, हाथों में जिनके पर हित का पावन कंगन है, ऐसे कवियों का आकाशवाणी रोहतक में आने पे हार्दिक अभिनंदन है। ये इसकी आकाशवाणी केंद्र की 50वीं स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करने जा रहा हूँ राजपाल गुणपाल बल्गिया। राज गुणपाल

0: बालक या कैथल से, इनके लिए चार पंक्तियां हैं मेरे पास। मकल की कहानी लेकर आया हूँ, सच्ची सुंदर सुहानी लेकर आया हूँ, आप दिलो जान व ध्यान लगा के सुनना, मैं गीतों में रवानी लेकर आया हूँ। राज गुणपाल बल के।
1: धन्यवाद सुरेश जी, मेरी आज की रचना श्रोताओं के समक्ष पेश है, प्रस्तुत है कि झूठा ही सही खुल कर खिलखिलाया करो, खुशियों से जल जलते हैं उन्हें जलाया करो। झूठा ही सही पर खुल कर खिलखिलाया करो, खुशियों से जो जलते हैं उन्हें जलाया करो। पल भर का मेला है जिंदगी, हंसो व हंसाया करो, बातों की कोई बात नहीं, हर बात पे मुस्कुराया करो, हर
0: वाह
1: बात पे मुस्कुराया करो।
0: वाह जी, शाबाश,
1: बहुत
0: शानदार।
1: बढ़िया। दिल की हर बात तुम अपनों को बताया करो, दिल की हर बात तुम अपनों को बताया करो, बीत गई तो छुपी रह जाएगी, ज़्यादा न छुपाया करो।
0: शाबाश, वाह
1: झूठा ही सही पर खुलकर खिलखिलाया करो, खुशियों से जलते हैं जो उन्हें जलाया करो।
0: क्या बात, वाह जी क्या बात है।
1: सबसे बड़ी कमाई तो नेकी करना बताया है, सबसे बड़ी कमाई तो नेकी करना बताया है, एक यही तो साथ जाएगी, बस यही कमाया करो।
0: वाह जी, बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: बाबा
0: वाह क्या
1: झूठा ही
0: सच्चाई।
1: सही पर
0: वाह
1: खुलकर खिलखिलाया करो, खुशियों से जो जलते हैं उन्हें जलाया करो।
0: बहुत
1: राज
0: सुंदर,
1: गुणपाल नादान ज़्यादा नादानियाँ न किया कर, राज गुणपाल नादान ज़्यादा नादानियाँ न किया कर,
0: वाह जी वाह
1: जालिम जमाना जर ले बस ऐसी बात बताया कर,
0: वाह,
1: बताया करो।
0: बहुत अच्छे,
1: झूठा
0: बहुत
1: ही
0: अच्छे,
1: सही पर खुलकर खिलखिलाया करो,
0: वाह
1: खुशियों से जो जलते हैं उन्हें जलाया करो,
0: वाह जी
1: उन्हें
0: वाह,
1: जलाया
0: क्या
1: करो।
0: बात है,
1: धन्यवाद।
0: वाह वाह, धन्यवाद जी। राज गुणपाल बालकिया जी का बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, मिकी पासी पंचकुला। कहानी मेरी जब सुना वो रहे थे, इनके प्रति चार पंक्तियां हैं। कहानी मेरी जब सुना वो रहे थे, नजरें क्यों हमी से चुरा वो रहे थे, जमीन पे गिरे आंसुओं को उठाकर मेरा नाम लिख कर गिरा वो रहे थे। बहुत
1: मिकी पासी पंचकुला।
0: शुक्रिया सर, आदाब। दो मिसरे देखिए, सीधे मकसद पर आता हूँ। साकी से मैं ना ली है हमने, साकी से मैं ना ली है हमने, जाम आंखों से पी है हमने।
1: वाह
0: बहुत
1: क्या
0: बहुत
1: बात,
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साकी से मैं ना ली है हमने, जाम आंखों से पी है हमने। अब चार मिसरे ये देखिए। नामी गिरामी राखी है उस लड़की की आंखें,
1: वाह जी वाह क्या बात है,
0: नामी गिरामी राखी है उस लड़की की आंखें, खूबसूरती का वाकी है उस
1: वाह
0: लड़की की आंखें। बहुत
1: वाह भाई
0: सुंदर,
1: बहुत अच्छे।
0: नामी गिरामी राखी है उस लड़की की आंखें, खूबसूरती का वाकी है उस लड़की की आंखें,
1: वाह जी
0: तुम बचकर रहना
1: वाह जी वाह वाह
0: दिल को मैखाना कर देगी, तुम बचकर रहना दिल को मैखाना कर देगी, मासूम नहीं है साकी है उस लड़की की आंखें।
1: वाह जी
0: क्या बात
1: बहुत
0: है, बहुत
1: बढ़िया बहुत
0: शुक्रिया।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: तुम बचकर रहना दिल को मैखाना कर देगी, मासूम नहीं है साकी है उस लड़की की आंखें।
1: बहुत बढ़िया बहुत
0: अब
1: अच्छा,
0: चार मिसरे कुछ ये देखिए।
1: स्वागत है।
0: जो मुझ में रहते हो आप, बात उनको बता दी जाएगी, मुझ में रहते हो आप, ये बात उनको बता
1: दी
0: दी
1: जाएगी
0: जाएगी, बता रहा हूँ खुद को आप, इसकी मुझे सजा दी जाएगी।
1: वाह जी
0: वाह
1: वाह
0: क्या बात
1: बहुत
0: है,
1: अच्छे
0: जो
1: बहुत
0: मुझ
1: बढ़िया।
0: में रहते हो आप, ये बात उनको बता दी जाएगी, बता रहा हूँ खुद को आप, इसकी
1: खुद
0: मुझे
1: को
0: सजा
1: सजा
0: दी
1: दी जाएगी।
0: जाएगी,
1: वाह जी
0: चुप करा दिया जाऊंगा मैं, नहीं है इसका कोई दुख मुझे,
1: वाह जी
0: चुप करा दिया जाऊंगा मैं, नहीं है इसका कोई दुख मुझे, दुख मुझे इस बात का है, आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी।
1: वाह
0: बहुत
1: जी
0: बढ़िया,
1: वाह
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: बढ़िया।
0: दुख मुझे इस बात का है, आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। अब चार मिसरे ये भी देखिए।
1: स्वागत
0: मजदूरों के बच्चे अक्सर मुझसे कुछ यूं सवाल करते हैं, मजदूरों
1: मजदूरों
0: के
1: के
0: बच्चे
1: बच्चे
0: अक्सर मुझसे कुछ यूं सवाल करते हैं,
1: शाबाश बहुत बढ़िया।
0: क्या तुम जानते हो हम कैसे जीते और कैसे मरते हैं।
1: बहुत खूब।
2: मजदूरों के बच्चे अक्सर मुझसे कुछ यूं सवाल करते हैं, क्या तुम जानते हो हम कैसे जीते और कैसे मरते हैं? होता है जब भी इस खाली पेट को भूख का एहसास, होता है जब भी इस खाली पेट को भूख का एहसास। मिक्की तुम क्या जानो, हम रूखी रोटी से पेट भरते हैं। बहुत शुक्रिया। मिक्की तुम क्या जानो, हम रूखी रोटी से पेट भरते हैं। और जब कभी रूखी रोटी भी नसीब ना हो तब क्या होगा कि इस कदर दुखों की मार देखी नहीं कहीं, इस कदर दुखों की मार देखी नहीं कहीं। भीख लेकर लाखों दुआ देते हैं लोग यहाँ, इस कदर दुखों की मार देखी नहीं कहीं। भीख लेकर लाखों दुआ देते हैं लोग यहाँ। रोटी मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, रोटी मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। बिस्कुट से ही भूख मिटा लेते हैं लोग यहाँ। बहुत शुक्रिया। बिस्कुट से ही भूख मिटा लेते हैं लोग यहाँ। अब अंत में एक कविता देखिए जिसका शीर्षक है भाषा।
0: हाँ, स्वागत है जी।
2: कविता भाषा। बांट दिया इन नस्लों को, बांट दिया इन नस्लों को क्यों भाषा को तुम बांट रहे, बांट दिया इन नस्लों को क्यों भाषा को तुम बांट रहे। हिंदी भाषा हिंदू की है, मुस्लिम की उर्दू जांच रहे। बांट दिया इन नस्लों को क्यों भाषा को तुम बांट रहे। हिंदी भाषा हिंदू की है, मुस्लिम की उर्दू जांच रहे। क्या लेखकों ने अपने लेखन में हिंदी और उर्दू को अलग जाना था, क्या कबीर ने अपनी वाणी में भाषाओं की सीमाओं को माना था। जरा पूछो अपने बचपन से तुम, तोल के सीखते क्या हिंदी और उर्दू को थे। उपन्यास सम्राट है कहा जिसे, वो लिखते हिंदी और उर्दू में थे। चलो इतना जरा बता दो तुम, चलो इतना जरा बता दो तुम, क्या फर्क स्वप्न और ख्वाब में है। चलो इतना जरा बता दो तुम, क्या फर्क स्वप्न और ख्वाब में है। भाषाओं को तो बांट रहे, क्या फर्क नमस्कार अदाब में है।
0: बहुत सुंदर,
2: बहुत शुक्रिया। जरा देखो इन भाषाओं को, अब एक चित्र बना रहा हूँ देखिएगा। जरा देखो इन भाषाओं को, शब्द कोश के पहने गहने लगती हैं। जरा देखो इन भाषाओं को, शब्द कोश के पहने गहने लगती हैं। जिन भाषाओं को तुम बांट रहे आपस में बहने लगती हैं। तिलक और टोपी से तुम व्यक्ति की कर पहचान रहे, धर्मों के तुम नाम पर भाषा का कर अपमान रहे। हिंदी जो मीठी भाषा है तो उर्दू प्यार की भाषा कहलाती है। दोनों भाषाएं मिलकर संसार में प्रेम मिठास फैलाती हैं। एक ही परिवार की सब भाषाएं मैं इतना सा जानता हूँ, हिंदी जो माँ है मेरी उर्दू को मौसी मानता हूँ। भगवा रंग हिंदू का और मुस्लिम का हरा जांच रहे, भगवा रंग हिंदू का और मुस्लिम का हरा जांच रहे। बांट दिया इन रंगों को क्यों भाषा को तुम बांट रहे, क्यों भाषा को तुम बांट रहे। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: धन्यवाद जी। भाषा पर सुंदर विस्तृत पेंटिंग आपने हमें दिखाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, अजय नवोदित जी चरखी दादरी से। इनके लिए भी चार पंक्तियाँ हैं मेरे पास। मैं संघर्ष पथ की ओर मुड़ना चाहता हूँ, मैं भी अब कवियों से जुड़ना चाहता हूँ। इस हिंदी साहित्य के उन्मुक्त गगन में मैं स्वच्छंद पंछी सा उड़ना चाहता हूँ। स्वागत है।
3: बहुत बहुत इस बेहतरीन संचालन के लिए आपका और मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। हमारे देश के दो कर्णधार हैं, जवान और किसान, और आकाशवाणी हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाती है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इनके लिए चार पंक्तियां रखता हूं। सबसे पहले,
0: स्वागत।
3: अंतर

0: बातें ऐसे अल्फाज पढ़ता हूँ,
1: जी शाबाश।
0: महकता रहे खुशियों से जीवन, आजीवन तुम्हारा, दिल से ऐसी दुआएं प्रभु के धाम रखता
1: वाह
0: हूँ,
1: जी शाबाश, बहुत
0: दिल
1: अच्छे।
0: से ऐसी दुआएं। और आज़ादी के दीवाने थे जो, आज़ादी के दीवाने थे जो,
1: जी
0: जो बलि वेदी पर चढ़ गए,
1: जी
0: आज़ादी के दीवाने थे जो, जो बलि वेदी पर चढ़ गए, आगे क्या है पीछे क्या है भूल सब वो आगे बढ़ गए। ऐसे क्रांतिकारियों के मन के भाव मैं कुछ मुक्तकों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश
1: जी
0: करता
1: जी
0: हूं।
1: स्वागत है
0: नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस समय ये नारा दिया होगा, तुम
1: जी।
0: मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा वो पहुंचाता हूँ। तोड़ने को दासता की जंजीरें, तोड़ने को दासता की जंजीरें मैं जुनून मांगता हूँ, तोड़ने को दासता की जंजीरें मैं जुनून मांगता हूँ, करो त्याग तुम्हारा आज तुमसे सुकून मांगता हूँ।
1: वाह जी
0: भागेंगे
1: शाबाश।
0: भारत भूमि छोड़कर, भागेंगे भारत भूमि छोड़कर, जल्द ही सब फिरंगी, देश की आज़ादी खातिर सबसे खून मांगता
1: वाह
0: हूँ।
1: जी
0: अच्छा है,
1: शाबाश,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: बढ़िया।
0: भगत सिंह जब फांसी के लिए फंदे पर झूलने झूलने के लिए जा रहे थे, तो उनके मन में क्या भाव थे, वो क्या संदेश लेकर चले थे, वो इन इस मुक्तक में रखता हूँ।
1: जी
0: मातृभूमि पर अपना,
1: जी
0: मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने निकला हूँ, मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने निकला हूँ, भारत तेरी मुक्ति का मार्ग बनाने निकला हूँ। हिल उठेंगी चूले अब ब्रिटानिया हुकूमत की, एक फांसी से कई भगत सिंह बनाने निकला हूँ।
1: वाह
0: हाय
1: जी बहुत
0: हाय,
1: अच्छे,
0: वाह वाह
1: शाबाश,
0: वाह वाह।
1: बहुत बढ़िया,
2: बहुत खूब।
0: मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया था,
1: जी
0: वो उन्हें क्यों करना पड़ा, उनके मन में क्या थी वो रखने की कोशिश है।
1: बिल्कुल
0: धीरे
1: स्वागत है।
0: धीरे धीरे धीरे सहला रही हवा भारत तेरे मस्तक को, धीरे धीरे सहला रही हवा भारत तेरे मस्तक को, तैयार खड़ी है दुल्हन दरवाजे पर देने दस्तक को,
1: जी
0: लुट रही अस्मिता भारत की इंतजार नहीं होता है, लुट रही अस्मिता भारत की इंतजार नहीं होता है, कौन कब टकराएगा अब तो खुद से रुखसत हो,
1: वाह जी शाबाश,
0: अब तो खुद से रुखसत हो। और हमने जलियांवाला बाग देखा, उसके क्या परिणाम हुए। एक व्यक्ति था उधम सिंह,
1: जी
0: उनके मन में क्या भावनाएं जागी थी वो रखता हूँ। रोक रहा फिरंगी ने जब,
1: जी
0: रोक रहा जब फिरंगी ने जब गोलियां खूब बरसाई थी, हजारों जिंदगियां बेबसी में मौत के कुएं में समाई थी,
1: जी
0: मैं तो जाने नहीं दूंगा तुझे कातिल जिंदा यहां से,
1: शाबाश, बहुत
0: मैं
1: बढ़िया।
0: तो तुझे, मैं तो जाने नहीं दूंगा तुझे कातिल जिंदा यहां से, घूमकर बात भारत के ही भविष्य पर फिर आई थी।
1: जी
0: और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे,
1: जी स्वागत
0: कौन नहीं जानता उन्हें, उनके मन में क्या था। रह न सकोगे सुकून से, रह न सकोगे सुकून से, करेंगे असहयोग हम, सामान अपना खरीदेंगे अपने ही पहनेंगे वस्त्र हम, अंतर तक भी रूह जब लगेगी कांपने फिरंगियों, छो जाओगे सब छोड़, चल भी न सकोगे दो कदम,
1: अच्छा,
0: चल भी
1: बहुत
0: न
1: अच्छा,
0: सकोगे
1: दो
0: दो
1: कदम।
0: कदम।
1: अच्छा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद जी अजय का, नवोदित का, इन्होंने वीर रस का आभास कराया।
2: अब आपके सामने प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं सुरेश कलाकार जी भिवानी से, तो स्वागत है आपका अपनी रचना के लिए। आपके लिए चार लाइनें कि हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं, कचरे में भी लाख समंदर देखे हैं, हम क्या जाने वेद पुराणों के मानी, हमने तो बाबा कंप्यूटर देखे हैं, हमने तो बाबा कंप्यूटर देखे हैं।
1: जी
2: सुरेश कलाकार जी,
1: जी बहुत धन्यवाद आपका। माइक पर सुरेश कलाकार, मैं भी प्रस्तुति दे रहा हूँ अपनी एक कविता के माध्यम से। जी कविता प्रस्तुत है। आओ ऐसा कदम उठाएं हम भारत की माटी में, सुंदर सुंदर कला दिखाएं हम भारत की माटी में, गजलें दोहे गीत रुबाई चौपाई छंदों के रंगों को आओ मिलके रोज सुनाएं हम भारत की माटी में। नृत्य कला चित्र कला मूर्ति कला स्थापत्य कला आओ सारी कला बनाएं हम भारत की माटी में, आओ सारी कला बनाएं हम भारत की माटी में। जूहा चंपा चमेली कमल गेंदे गुलाब सभी तरह के, जूहा चंपा चमेली कमल गेंदे गुलाब सभी तरह के आओ सुंदर पुष्प खिलाएं हम भारत की माटी में, आओ सुंदर पुष्प खिलाएं हम भारत की माटी में। धरती माता अगर बचाकर रखनी चाहो तो मित्रों आओ ज़्यादा पेड़ लगाएं हम भारत की माटी में। तुम ये मरते घटते जन जीव बचाना चाहो यदि बिन विष फल अन्न उगाएं हम भारत की माटी में। कीमत पानी की यदि समझो, कीमत पानी की यदि समझो तो ऐसा करना तुम, व्यर्था न कभी नीर बहाएं हम भारत की माटी में, व्यर्था न कभी नीर बहाएं हम भारत की माटी में। इस आज़ादी की कीमत को भी यदि समझो तुम तो गलत न फायदा उठाएं हम भारत की माटी में, तो गलत न फायदा उठाएं हम भारत की माटी में। हम खेलों विज्ञान चिकित्सा में दुनिया में आगे हैं, हम खेलों विज्ञान चिकित्सा में दुनिया में आगे हैं, आओ तेजी और दिखाएं हम भारत की माटी में, आओ तेजी और दिखाएं हम भारत की माटी में। सारी नफरत झूठ जड़ों से मार भगाएं दूर कहीं, सारी नफरत झूठ जड़ों से मार भगाएं दूर कहीं, आओ सच्चा प्यार जगाएं हम भारत की माटी में, आओ सच्चा प्यार जगाएं हम भारत की माटी में। अपना भारत मात्र ही नहीं दुनिया भी सीखे हमसे, अपना भारत मात्र ही नहीं दुनिया भी सीखे हमसे, आओ ऐसी लहर चलाएं हम भारत की माटी में, आओ ऐसी लहर चलाएं हम भारत की माटी में। ये छोटा मोटा ऊंच नीच जात पात सभी छोड़ो, ये छोटा मोटा ऊंच नीच जात पात सभी छोड़ो, आओ एक मानव जात बनाएं हम भारत की माटी में, आओ मानव जात बनाएं हम भारत की माटी में। धन्यवाद जी।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं अजय नवोदत जी को दोबारा
1: दूसरी
2: बुलाना पाऊंगा, तो अजय नवोदत जी स्वागत है आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से याद किया। इस मौके पर मैं एक दो मुक्तक पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आजकल जिस प्रकार का संगीत समाज में चल रहा है और जो परिणाम महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, तो उसके लिए एक मुक्तक पेश करता हूँ कि संगीत में फुहड़ता का ऐसा जहर मिला दिया, संगीत में फुहड़ता का ऐसा जहर मिला दिया, युवा बहला और समाज पर कहर ढा दिया, खो रही निर्मलता और करुणा समाज से अब, खो रही निर्मलता और करुणा समाज से अब, नौ दिन की देवी को क्यों खिलौना बना दिया, नौ दिन की देवी को क्यों खिलौना बना दिया। अब तो देशभक्ति के गीत दो दिन ही सुनाई देते हैं, अब तो देशभक्ति के गीत दो दिन ही सुनाई देते हैं, फिर देशभक्ति का मन से नामो निशान मिटा दिया, जिस देश में पत्थरों में भी, जिस देश में पत्थरों में भी भगवान पूजा जाता है, शांति दातार भजनों को भी शोर शराबा बना दिया, शोर शराबा बना दिया।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक मुक्तक और पढ़ना चाहूंगा।
2: स्वागत है
1: जी, स्वागत है।
0: देखता है खुद को, देखता है खुद को हर कोई हर रोज आईने में यूं तो, देखता है खुद को हर कोई हर रोज आईने में यूं तो, आईना भी जिद्दी हर रोज सिर्फ सच ही दिखाता है, आईना भी जिद्दी हर रोज सिर्फ सच ही दिखाता है। खो आदमियत आदम जात आदम खोर हो रहे अब, खो आदमियत आदम जात आदम खोर हो रहे अब, आलम हुआ कौन अब खुद से ही नजरे मिलाता है।
2: वाह,
1: शाबाश, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा जी। अगले कवि को हमें आमंत्रित दूसरे राउंड में। राजगुणपाल बालकिया जी,
2: धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए
1: जी।
2: श्रोताओं की खिदमत में पेश है एक कविता मेरी। सिखर दोपहर गर्मी का कहर, त्राही त्राही मची हर गांव शहर, जैसे ही निकला मैं बाहर, तपन ने किया मुझे दुश्वार, पसीने से होकर तर बतर, जल जाने में न रही कसर। तभी देखा एक दरख्त, मुस्कान उसकी बरकरार, मुझे देखकर हैरान परेशान, मैं समझ न सका ये बात, धूप में जलते हुए आखिर खड़ा हुआ निरंतर दिन रात। मैंने पूछा कुदरत के हिमायती, गर्मी के इस कहर में तुम कैसे इतरा रहे हो?
1: जी, बहुत अच्छे।
2: उसने कहा तुम भी मेरी तरह भरी जेठ की दोपहर में, इस बेदर्द गर्मी के कहर में, घर से बाहर जो घूम रहे हो, कूलर पंखे छोड़कर आखिर कहाँ क्या ढूंढ रहे हो?
1: वाह जी,
0: क्या बात है।
2: मैंने कहा मैं एक बाप हूँ, मेरे भरोसे मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी मेरा करार, मैं उनके लिए बरगद का पेड़, मेरी छांव मांगते वो सुकून करार, मैं धूप में जलूं या ठंड में ठिठरूं,
1: वाह जी वाह जी,
2: मैं टूट जाऊं या एकदम बिखरूं, परिवार पर आंच न आए इसलिए हर हाल में बिचरूं। पेड़ ने हंसकर कहा मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा भी परिवार है, पंछी जानवर और तेरे जैसे राही, जब गर्मी सर्दी में करते त्राही त्राही, मेरे पास आकर पाते सुकून शाही, पेड़ और एक पिता होते एक समान, दोनों ही याद आते छाँव के लिए, और छाँव न दे तो छोड़ देते हैं लोग, शहर या गांव में हो आशियाना बनाकर आखिर नाता तोड़ देते हैं लोग, आखिर नाता तोड़ देते हैं लोग।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह।
2: अब मैं इसी कड़ी में सुरेश कलाकार जी को दोबारा आमंत्रित करता हूँ।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब दूसरे राउंड में मुझे आमंत्रित किया गया, तो मैं एक आपको दोहा छंद में गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2: स्वागत है।
1: जीवन है, जीवन है दिन चार का, करना मत बेकार, खेती छोड़ो द्वेष की, सींचो प्रेम बहार।
2: वाह जी, वाह।
1: जीवन

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुरेश कलाकार जी। आकाशवाणी रोहतक केंद्र के सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रोहतक की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की ये आखिरी प्रस्तुति थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी कवि गोष्ठी, प्रतिभागी थे मिकी पासी, सुरेश, अजय कुमार, बनारसी दास। मिडिल वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूड की घर में 7:59 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अखियों की झरोखों से फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है हेमलता ने।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म खिलौना से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में आइए सुनते हैं मेरी हमसफर फिल्म का गीत, जिसका बोल लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी रंजी का।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ही संपन्न होता है। मिडल रेट 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और इसमें हमारे आज के कलाकार हैं सुरेंद्र शर्मा। तो ये सुनते हैं सुरेंद्र शर्मा की गाई गजल।

0: उसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में

भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुँच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के

कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसी के आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शर्मा जी, डॉक्टर रामफल चहल जी, और इसी कड़ी में वो अनगिनत श्रृंखलाओं में वो नाम है जो आकाशवाणी से कभी लेखक के रूप में, कभी प्रस्तोता के रूप में, कभी तकनीकी सहायक के रूप में, किसी न किसी रूप में जुड़े रहे।
1: और जुड़ाव का जो नाम है भूमि, वो आज हमारे बीच एक गर्व बनकर के हमारे बीच में है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से सारे उद्वारों के साथ स्वागत करूंगा मैम सुमन मंजरी जी का, जो कि बिल्कुल सामने हमारे हैं। भूमि पेडणेकर की माता श्री कहते हैं कि हमारी पहचान जब हमारे बच्चों से बनती है तो और भी गर्व होता है। और सुमित्रा हुड्डा जी आज हमारे बीच में है, वो आवाज़ जिनको सुनकर के हम भी बड़े हुए हैं, जिनको हम सुनते रहे, एक फिल्मी कलाकार, बहुत शुरू में हरियाणी फिल्म को जिन्होंने पहचान दी, चाहे हम बहुरानी का जिक्र करें, सांझी फिल्म का जिक्र करें, और अनेक अनेक। तो हमारे बीच में सुमित्रा हुड्डा जी यहाँ विराजमान है। हृदय के सारे उद्गार आपके लिए, हमारे उन श्रोताओं के लिए, उन दर्शकों के लिए, उन हमारे अधिकारियों के लिए जो पर्दे के पीछे रहकर भी हमारा साथ देते हैं। महावीर दोहन जी यहाँ विराजमान है हमारे निदेशक के तौर पे, गंभीर साहब यहाँ है, हुड्डा साहब बैठे हैं, हमारे हुड्डा जी बैठे हुए हैं, और इसके अलावा और भी ऐसी आवाज़ें, क्योंकि जो आवाज़ आप तक पहुंचती है केवल वही नहीं होती, उसके पीछे बहुत परिश्रम होता है, बहुत मेहनत होती है जो आप तक पहुंचाने में जो परिश्रम करते हैं। डीपी मलिक जी जैसे जिन्होंने हरियाणवी को एक पहचान दी थी, रेडियो को भाषा हरियाणवी थी, आकाशवाणी रोहतक की बोली हरियाणवी और भाषा हिंदी थी, उस बोली को उन्होंने बहुत दूर दूर तक पहुँचाया, और आपने जो पहचान हरियाणवी के कार्यक्रमों को दी है वो अपने आप के अंदर आज भी एक मिसाल है। सत्यवान मलिक जी हमारे बीच में बैठे हुए, हमारे बहुत सुधीर श्रोता, राजकिशन नैन यहाँ पर हैं, प्रेम देहाती जी हमारे लोक संगीत के, रामफल चहल जी का नाम भूमि ने लिया है, और भी ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे चेहरे जो हमारे बीच में हैं, आज उन सब का तारुफ भी आपसे कराएंगे, और एक जो छोटा सा रंग बिरंगा कार्यक्रम आपके बीच में हम लेकर के आए हैं वो भी, उसका आनंद भी आप लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार माँ सरस्वती के समक्ष दीप जलाएं, वैसे हम पुनिया साहब का प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे कुलगुरु महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के, तो वो आ जाते तो हम कर लेते। तब तक जैसे कहते हैं ना कि सांग में गूंगा दमोड़ा होता है, तो उसका अपना ही एक आनंद होता है, तो मैं अपने कलाकारों से अनुरोध करूंगा कृपया एक बार जरूर अपने एक बार स्वर लहरियां शुरू कर दें, और जो साजिंदे हैं, संगत करता है, मैं उनका नाम आपके सामने, उनका तारुफ, उनका परिचय जरूर करना चाहूंगा। और सबसे पहले हमारे बीच में है सारंगी पर भाई राजेश कुमार। राजेश जी हमारा अभिनंदन स्वीकार कर लें, करतल ध्वनि में सदन से चाहूंगा कि उनके सम्मान में, वो ढोलक पर प्रेम सिंह जी हैं, और नगाड़ा पर सुभाष जी जो कि नगाड़ा के एक पर्याय बन चुके हैं, बहुत अच्छा। हारमोनियम पर दिनेश कुमार जी हैं, और क्लार्नेट पर ओम प्रकाश जी, कृपया आप एक बार शुरू करें।

0: सभी साजिंदों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी रोहतक के स्वर्णिम उत्सव पर आज का ये दिन हम सभी के लिए उन सभी यादों को सामने लेकर आ रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन, आभार। आज का ये दिन महज एक पल नहीं है, एक मंच नहीं है, बल्कि हरियाणा जो गांवों में बसता है वहाँ की प्रतिभा को निखारने के लिए, प्रतिभाओं को मंच देने के लिए आकाशवाणी रोहतक ने जो अहम भूमिका 50 वर्षों में निभाई है वो अनुकरणीय है, अतुलनीय है। जब कर्तव्य पथ पर हम हरियाणा के सांस्कृतिक पुरोधाओं को देखते हैं, उसमें यदि अग्रिम शब्दों में कोई नाम लिया जाता है तो वो आकाशवाणी रोहतक का लिया जाता है कि ये कलाकारों की जो टीम है वो आकाशवाणी रोहतक के जरिए यहाँ तक पहुँची है। एक बार मैं आकाशवाणी रोहतक के लिए, शीर्ष नेतृत्व के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ कि उन्होंने कला और संस्कृति को, इस विरासत को संजोने के लिए इतने प्रयास किए हैं। भले ही हरियाणवी बोली आज संवैधानिक भाषा नहीं है, 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस बोली को वो कद दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ तक इंसान रहते हैं वहाँ वहाँ तक हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोली अपना नाम चमका रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहचान दर्ज करवा रही है।
1: जी भूमि, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये भी सही है कि इसको भाषा बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉक्टर रामपाल चहल जैसे लोग जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से उस बात को इस मुकाम तक पहुँचाया है कि बोली अब भाषा का रूप ले ली, उसकी लिपि हो, उसकी अपनी व्याकरण हो, और उसके प्रयास चल रहे हैं। चलिए अब मैं नोट करूँगा हमारे और इसी के साथ हमारे पूर्व अधिकारी मलिक जी, उनको मैं अनुरोध करूंगा।

0: बहुत ही सुंदर
1: धन्यवाद।
0: हरियाणवी संस्कृति में
1: ये हरियाणवी परंपरा का रूप है भूमि, जो कि जैसे अपनी सांग परंपरा है, सांग परंपरा तो पहले घुंगा दमोड़ा जैसे होता है, तो हमने भी सोचा है कि हमारे जितने भी दर्शक आए हैं, हमारे श्रोता आए हैं, हमारे परिवार के लोग आए हैं, और कुछ तो हमारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने परिवार को साथ लेकर के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम उनका परिवार सहित स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक और विशाल व्यक्तित्व का यहाँ प्रवेश हुआ है इस सदन में, महावीर गुड्डू जी, हमारे पहले पद्मश्री ऐसे लोक कला में जिन्होंने हासिल किया है, तो आज वो आए हमारे अनुरोध पर, करतल ध्वनि से उनका स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे क्लस्टर हेड सुमित गोयल जी से, प्लीज आप मंच पर आए। संजय बाली जी, और मैंने आग्रह किया था डीपी मलिक जी से, और रामफल चहल जी से, सुमन मंजरी जी से, सुमित्रा हुड्डा जी से, कृपया आप आए और अपने कर्कमों से माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। और महावीर गुड्डू जी की शंख ध्वनि इस बीच में अगर होती है तो वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। आइए दीप प्रज्वलन के, आए आप जैसे, लेकिन आप भी आमंत्रण है, आपका साधन आमंत्रण है मंच पर मान्यवर। ये नई पुरानी परंपरा के वो संवाहक हैं जो आकाशवाणी को ले, महावीर दोहन जी हमारे तकनीकी विभाग के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी आए। गंभीर साहब अगर कोई समस्या ना, प्लीज ना आए, आप आइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार दीपक की लौ सदैव ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव चित्र सदैव सकारात्मक।
1: मेरा सभी अतिथियों से आग्रह है कि एक बार मंच पर ही बने रहें। एक उद्घोषणा जो सबसे पहले हम सुनते हैं सुबह सुबह, तो भूमि से अनुरोध, प्लीज एक बार उद्घोषणा करके हम सबको एक बार उस स्मृति में दोबारा से लाए मंच से।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी रोहतक के स्वर्णिम उत्सव पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का शुभागाज दीप प्रज्वलन से, हरियाणवी लोक धुनों से, परम शक्ति के आशीर्वाद से और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति से।
1: अब इसके बाद हम इसका कार्यक्रम का आरंभ भी अपने हरियाणवी के एक बहन के साथ करना चाहेंगे। गुलाब सिंह जी, हमारे सोमवीर कथुरवाल, रणवीर बरवासनिया, मीनाक्षी जी, उन सबसे अनुरोध है कि एक बार आ जाएं मंच पर, अपना स्थान ले लें। और इसी बीच में मैं चाहूँगा कि हमारे स्टेशन हेड हैं जो हमारे संजय बाली जी, वो फूलों का गुलदस्ता भेंट करके हमारे अतिथियों का सम्मान भी करेंगे। और हमारा उपहार आप भी स्वीकार करें। निदेशक हरियाणवी बोली के, जिनको हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी में एक पहचान दिलाई कार्यक्रमों के माध्यम से जी, धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम का आरंभ हमारे उन सभी कलाकारों के सामूहिक भजन के साथ, तो मैं अनुरोध करूंगा गुलाब

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हरियाणवी लोक गीतों से आकाशवाणी रोहतक के स्वर्णिम सफर का शुभागास। और अब मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ विनम्रता से मैं आमंत्रित कर रही हूँ स्टेशन हेड श्री संजय बाली जी को, वो आएं और स्वागत संबोधन दें। जोरदार तालियों के बीच श्री संजय बाली जी मंच पर आ रहे हैं। जोरदार तालियां सर के लिए कि आकाशवाणी रोहतक लोक संस्कृति की अनूठी पहचान यूं ही बना रहे। आप सभी के बीच श्री संजय बाली जी।
1: सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और आप सबको यथा योग्य नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप इस स्वर्णिम दिन पर आप हमारे साथ हैं इस दिन को मनाने के लिए। आप कुछ तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे पास पहुंचे हैं, मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब की उपस्थिति से ये दिन और भी गरिमामय बन गया है और हम आप सबको अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम आप सबका बहुत आभार करते हैं कि आप यहाँ पर आप इस कार्यक्रम में पधारे। मैं थोड़ा सा आकाशवाणी के 50 वर्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक का शुभारंभ हुआ। प्रथम फाउंडर डायरेक्टर रहे श्रीमान बीएम लाल जी, प्रथम उद्घोषक रहे श्याम गुप्ता जी, जो कि शिमला से स्थानांतरण होकर आए थे। आरंभ में प्रसारण का समय कम था, ज़्यादातर कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित होते थे। जो जो स्टाफ की वृद्धि हुई, अलग अलग क्षेत्र के ज्ञाता विशेषज्ञ आते रहे और कार्यक्रमों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ती गई। कार्यक्रम अभियांत्रिकी और प्रशासनिक अनुभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से एक मजबूत केंद्र के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1995 की तारीख 3 और 4 सितंबर एक घटना घटी, वो थी बाढ़ की। इस बाढ़ की वजह से केंद्र में 8 से 9 फुट पानी भर गया, जिसके कारण हमारी प्रसारण सामग्री और मशीनें जलमग्न हो गई। लेकिन स्टाफ की तत्परता से प्रसारण में बाधा नहीं आने दी और मदीना स्थित ट्रांसमीटर से प्रसारण किया गया। उसमें संचार और सूचना का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, केवल एक बेतार संचार तकनीक उपलब्ध थी, रेडियो। नागरिक अपने घरों की छत पर रेडियो लेकर बैठे रहते थे ताकि नवीनतम जानकारी मिल सके। उस समय आकाशवाणी रोहतक ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। आकाशवाणी में कई अनुभाग होते हैं, जैसे विज्ञान, ड्रामा, संगीत, उच्चरित शब्द, युवा, कृषि एवं गृहकांश, महिला एवं बाल अनुभाग आदि। वर्ष 1997 से 2002 तक कृषि एवं गृहकांश ने एक विशेष कार्यक्रम आरंभ किया, जिसका नाम था रेडियो कृषि शिक्षा यानी फार्म स्कूल ऑन एयर। इस कार्यक्रम में किसानों का पंजीकरण किया जाता और फसल उत्पादन की वैज्ञानिक जानकारी विशेषज्ञों से दिलवाई जाती। उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते, जिनका जवाब किसान भाई चिट्ठी लिखकर भेजते थे, जिनको अंक प्रदान किए जाते थे। सत्र के अंत में परीक्षा ली जाती और विजेताओं को इनाम दिए जाते थे। इस प्रकार गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना आदि फसलों की खेती करनी सिखाई जाती थी। इस कार्यक्रम पर किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमने रेडियो के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी सीखी। लोक संगीत के कलाकारों की विशेष रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें ड्यूट बहुत ही सराहनीय रहा। इसके अतिरिक्त 3 घंटे की विशिष्ट व्यक्तियों की ऑटोबायोग्राफी रिकॉर्ड की गई और संगीत का मंचीय कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में श्रोताओं और कलाकारों को रूबरू होने का अवसर प्रदान करता था। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में उसके आरंभ होने से पहले कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए हम सिरसा जा रहे थे। उस समय हाँसी के नज़दीक हमें रोक दिया गया और कहा कि सभी रोड बंद हैं आंदोलन की वजह से। जब हम वापस आने लगे तो गांव सोरखी में हमारी गाड़ी को रोककर हवा निकाल दी गई, पलट दी गई, डंडे मारकर तोड़ दिया गया और अंत में आग लगा दी गई। 3 स्टाफ सदस्य किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आ पाए। इस बीच रोहतक में आगजनी तोड़फोड़ का भी मंजर देखा और उस समय आकाशवाणी ने धैर्य और शांति के साथ रहने का संदेश दिया। समय समय पर अच्छे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा। आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार हेतु संगीत, रूपक, नाटक, झलकी एवं कृषि एवं गृह एकांश के कार्यक्रमों ने पुरस्कार प्राप्त किए। हिंदी में बेहतर कार्य करने के लिए नराका से भी पुरस्कार प्राप्त हुए। 2020 में कोरोना काल में रेडियो की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान किया। इस दौरान विशेषज्ञों को बुलाकर, चिकित्सकों को और प्रशासन के अधिकारियों को सीधा फोन पर बात करके श्रोताओं ने सही जानकारी प्राप्त की, जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी सुरक्षित रह सकी। स्टाफ की कमी के बावजूद और कोरोनाग्रस्त होने के बाद भी प्रसारण निर्बाध जारी रहा। 2025 में एक तेज तूफान में हमारे ट्रांसमीटर के टावर को क्षति पहुंची थी, लेकिन मीडियम वेव के प्रसारण FM और DTH पर डालकर श्रोताओं तक पहुंचाए गए। इस समस्या का समाधान गत सितंबर माह में हो गया था और प्रसारण अब हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन सब कठिनाइयों, समस्याओं और अपनी हिम्मत, लगन, कठोर मेहनत को पार करते हुए आज 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब हम नवीन तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रसारण मीडियम वेव FM के अतिरिक्त न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध हैं, जिसके कारण हम लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। हमारे फोन इन कार्यक्रमों से श्रोताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान मिलता है। उनके पसंद की गीत सुन सकते हैं। हम YouTube, Facebook, Twitter आदि सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं। आने वाले समय में और मजबूती से हम राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। चंद लाइनों में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मंत्र जहाँ आधार है, रोहतक की इस पावन धरा से गूंज रहा सत्कार है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का पावन लक्ष्य बनाया है, आधी सदी से इस केंद्र ने जन जन का मान बढ़ाया है। भोर भय जब वंदना और मानस का गान गूंजता है, श्रद्धा और भक्ति का रस घर में घर घर के आंगन में मिलता है। विविधा की रंगत निराली सुगम शास्त्रीय संगीत यहाँ, सुरों की पावन सरिता में डूब रहा हर गीत यहाँ। खेत खलियान की खुशबू महके, कृषि जगत की बातों में ग्रामीण संसार बसता है यहाँ किसानों की रातों में। उन्नत खेती नई राहें, कृषि की बातें अनमोल यहाँ। मिट्टी की सौंधी खुशबू का मिलता कोई मोल कहाँ। बाल कुंज की किलकारी और बालक मंडली का शोर, युवा संसार की ऊर्जा से फैले प्रकाश चहूं और। घर आंगन की बातें प्यारी, पनघट की ये यादें पुरानी, संस्कृति और आधुनिकता की गढ़ता है ये नई कहानी। पसंद अपनी अपनी हो या थारी पसंद का ठाठ निराला, आपकी पसंद के गीतों ने हर दिल में रस घोल डाला। भूले बिसरे गीत कभी बीते लम्हों को सहलाते हैं, फरमाइश आपकी और फोन इन सीधे दिल तक जाते हैं। 50 वर्ष का सफर सुहाना, और भी ऊंची उड़ान रहे, हरियाणा की इस धड़कन का जग में ऊंचा नाम रहे। रेडियो से सदा बसती सुरीली तान रहे, कह वाली इसी तरह ऊंची तेरी शान रहे, ऊंची तेरी शान रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, शुक्रिया।
2: बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद संजय बाली जी। शब्दों से तो स्वागत किया ही, इसके बाद काव्यात्मक रूप में भी आकाशवाणी के पूरे कार्यक्रम को आपने जिस तरह से पिरोया है, जिस तरह से रखा है, उसके लिए बार फिर से आपका बहुत आभार। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में कुछ और ऐसी आवाज़ें हैं, कुछ और ऐसे कलाकार हैं जो विराजमान हैं। प्रेम देहाती जी हमारे आकाशवाणी की बहुत पुरातन आवाज़, बहुत ही सधी हुई आवाज़, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, वो हमारे बीच में हैं। और ऐसी आवाज़ें, मैंने कहा था आपको कि जो हमारे कैजुअल का एक पैनल होता है, वो आवाज़ें चुनकर के आप तक पहुँचाई जाती है, तो उसमें विष्णु मित्र जी हैं और हमारे ऐसे ही कलाकार जो हमारे फनकार, हमारे कैजुअल अनाउंसर्स, कंपेयर्स यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। धीरे धीरे आपसे परिचय कराते रहेंगे। फिलहाल भूमि, हम अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं और एक हमारी कलाकार हैं मीनाक्षी वर्मा जी हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आएँ और अपनी प्रस्तुति, एक सामन का गीत, हालांकि महीना जेठ का चल रहा है, लेकिन जेठ के महीने में सावन की बात अगर हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी जो वो कम हो जाए। तो यही था कि मीनाक्षी जी एक सावन की प्रस्तुति लेकर के आपके सामने है। इस कलाकार का तालियों से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा।

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मैम मीनाक्षी हरियाणवी रागनी आप सभी ने सुनी। बहुत से युवा साथी मैं सामने देख पा रही हूँ बिल्कुल पीछे बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप आगे आकर बैठ जाएं। और आप सभी की जानकारी के लिए, क्योंकि आप नई पीढ़ी हैं, आकाशवाणी रोहतक से जुड़ने के लिए आपको केवल और केवल आकाशवाणी रोहतक तक पहुँचना है, अपनी प्रतिभा के बारे में बताना है और वो किसी ना किसी रूप में आपको आकाशवाणी के पैनल में शामिल कर वहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए ज़रूर आमंत्रित करेंगे और आपकी प्रतिभा को एक अवसर अवश्य मिलेगा। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर और आकाशवाणी रोहतक की जो फ्रीक्वेंसी है 1143 किलोहर्ट्ज़ और 262.47 मीटर पर आप कभी भी सुन सकते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ परम आदरणीय DP मलिक जी को, वो आए और आकाशवाणी से जुड़े हुए अपने जीवन के कुछ अंश साझा करें। माननीय DP मलिक जी, जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। इसके बाद श्री गुलाब सिंह खांडवाल जी, हरियाणवी संस्कृति के नामचीन कलाकार, आप सभी के बीच अपनी प्रस्तुति के लिए आएंगे। अभी मंच पर आ रहे हैं श्री DP मलिक जी।
1: सभागार में उपस्थित इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज इस पावन अवसर पर, जबकि हम आकाशवाणी रोहतक के गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष पूरा होने पर एक सुंदर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि इस केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को की गई और इस 50 साल के अंतराल में, इस जीवन यात्रा में आकाशवाणी के सुखद लम्हे भी सामने आए और कुछ संकट के लम्हे भी पहले बताए गए। मैं सुंदर और सुखद क्षणों की ही याद दिलाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये एकमात्र हरियाणा का कैपिटल स्टेशन रहा है और इसकी जिम्मेदारी पूरे हरियाणा में हरियाणवी लोक संस्कृति को आगे करने में, इसके संरक्षण और वर्धन करने में आकाशवाणी की अहम भूमिका रही है। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ग्रामीण अंचल के लिए, जो ग्रामीण संसार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधाएं, चाहे वो चौपाल हो, चाहे भेंट वार्ताएं हो, वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी नवीनतम, उनके माध्यम से नवीनतम जानकारी हम किसानों को देते रहे हैं और इसीलिए हमारे प्रदेश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति और नील क्रांति में सबसे अग्रणी रहा है। हमारे किसानों की जो सहभागिता है कृषि के कार्यक्रमों में वो अद्वितीय रूप से रही है। एक कार्यक्रम का मैं और जिक्र करना चाहूँगा, कई साल तक यहाँ आंगनवाड़ी कार्यक्रम राज्य सरकार के सहयोग से चलाया गया, जिसमें माताओं और बहनों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने के लिए, गर्भवती महिलाओं को कैसा खाना खाया दिलाया जाए और बच्चों का स्वास्थ्य और टीकाकरण के बारे में कैसी जानकारी दी जाए, वो काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम रहा और उस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हमारे बीच सीमा दहिया जी बैठी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। इसके अलावा हमारे यहाँ जो हरियाणवी झलकी नाटक बहुत सुंदर ढंग से, और जो समाज की समस्याएं हैं वो रही, और इसी क्रम में मुझे यहाँ 2 बार एज डायरेक्टर काम करने का मौका मिला और 1 बार प्रोड्यूसर शैक्षणिक प्रसारण यानी जो शिक्षा के कार्यक्रम थे, चाहे स्कूल लेवल पे थे, यूनिवर्सिटी

बातें करते रहे। आकाशवाणी रोहतक मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव का स्थान रहा है। यहाँ मुझे हरियाणा की जो बारीकी से जानने वाली समस्याएं थी उनके बारे में पता चला और उनके समाधान के लिए बहुत सारी विभिन्न विधाओं के माध्यम से मैंने कार्यक्रम प्रस्तुत कराए। मैंने महानिदेशक आकाशवाणी नई दिल्ली की अनुमति लेकर के एक विशेष कार्यक्रम यहाँ किया जिसको कि रेडियो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और 3 घंटे की रिकॉर्डिंग उन महानुभावों की, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, कृषि वैज्ञानिक थे, सांगी थे और शिक्षाविद थे, यानी विभिन्न पहलवान लीलाराम जैसे और पतराम वर्मा जी स्वतंत्रता सेनानी, रामकृष्ण गुप्ता जी और ऐसे ऐसे डॉक्टर जे बी चौधरी, ऐसे बहुत महानुभावों की मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग करके हमारे आकाशवाणी दिल्ली की संग्रहालय में भी रखी हुई हैं और यहाँ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कशक ग्रामीण अंचल के समस्याओं को लेकर के रहती थी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो बहुत सारी अन्य सुविधाएं मनोरंजन की और अपने उद्गार प्रकट करने की प्राप्त होती हैं, लेकिन गाँव के जो मेरे किसान भाई, मजदूर भाई, जो गरीब गुरबे से गुजरने वाले, जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाले, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम मैं खुद भी करता था। हरियाणवी बोली में हास्य और व्यंग का विशेष स्थान है। मैंने खुद कई साल तक हंसी ठट्ठा के नाम से एक प्रोग्राम किया, चौपाल, जैसे हम लोग बैठ के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सामने रखते थे और उसका समाधान करते थे, वो प्रोग्राम भी काफ़ी पॉपुलर रहा। 1995 में जब बाढ़ आई तो मैं महानिदेशालय की विदेश प्रसारण सेवा में कार्यरत था नई दिल्ली में, तो डायरेक्टर जनरल साहब ने मेरे को विशेष रूप से भेजा। मैं रामफल चैल जी का बहुत विशेष रूप से या उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि हम सोनीपत स्टैंड से बोट के अंदर बैठ के हम आकाशवाणी में गए और 7-7 फुट पानी में, ऊपर इनके यहाँ चेकबुक रखी हुई थी और स्टाफ तो था ही नहीं, वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं था, तो यहाँ आकर के यहाँ के जो पूरे स्टाफ ने, शंकरलाल जी उस टाइम स्टेशन डायरेक्टर थे, तो बहुत अच्छा लगा। और उसी का अच्छा रिजल्ट देख करके जब सुनामी आई दक्षिण भारत में, तो महानिदेशक महोदय ने मुझे तमिलनाडु भेजा और तमिलनाडु में जा कर के जो समस्याएं थी उन्होंने कहा कि हरियाणा में जैसे बाढ़ की समस्या का कुछ सुझाव दिया आपने, ऐसे ही वहाँ जा कर के स्टडी करो और ये दिखाओ। ये इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी सेवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से की थी आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से, और जो सेवा का अंतिम पड़ाव आकाशवाणी जालंधर से मैं रिटायर हुआ, और देश के प्रत्येक लगभग प्रत्येक स्टेट में आकाशवाणी की विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन किए लोक संस्कृति के, उसको हरियाणा में लागू करने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे बजट यहाँ नहीं है, स्टाफ बिल्कुल ही नहीं है, प्रोग्राम जो कि एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी के अंदर पे, वो है ही नहीं। मैं बड़ा अजनबी तरीके से कह सकता हूँ या दावे के साथ कह सकता हूँ कि संजय बाली जैसा अकेला आदमी इस केंद्र को चला रहा है, हालांकि इंजीनियरिंग स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ का भी यही हाल है, केवल 2 सदस्य यहाँ पर हैं। और इस प्रकार से जो समस्याओं का समाधान करते हुए आप देखते हैं, सुनते हैं, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो पर और किसी माध्यम को उन्होंने सहारा नहीं लिया, क्योंकि ये लोक जन का एक, जैसे लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा हम देते हैं आकाशवाणी के, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी अपनी बातें आम जनता तक कहते हैं। मेरा ये बहुत अच्छा आग्रह उनसे है और मैं चाहूँगा कि वो आकाशवाणी से केवल मन की बात ना करें, धन की भी बात करें और स्टाफ की भी बात करें, और इसको एक उसी रूप में जैसे पहले आकाशवाणी का महत्व था वो बताएं, उनको लागू करें। मैं ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए पूरे अपने आकाशवाणी के पूर्व और वर्तमान सदस्यों को, चाहे किसी भी विंग के हों, बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ महेंद्र शाह जैसे हमारे जागरूक श्रोता हैं जो उन्होंने

0: सारा जो श्रोताओं के बगैर हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता, अच्छे कार्यक्रम नहीं कर सकते, वार्ताकार, कलाकार, गायक, किसी तरीके से भी जो आकाशवाणी रोहतक से जुड़े हुए हैं वो अपना योगदान ऐसे ही देते रहें। संकट आते रहते हैं, कठिनाई आती रहती हैं, लेकिन साहस और धैर्य का आप परिचय दें। आपके जोश और जुनून और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका। आप जी मलिक साहब का फिर से धन्यवाद करते हैं। और आपने तो कई भीतरली बात इसी बता दी जो हम भी कहने की मत नहीं कर पा रहे थे। स्टाफ की बात आ गई या और कई तरह की समस्याओं की बात आ गई, लेकिन जब आप जैसे बड़े हैं जिनसे हमने सीखा है तो वो जब साथ होते हैं तो आशीर्वाद उनका साथ होता है, तो संकट की घड़ी से भी आदमी बड़ी कुशलतापूर्वक निकल जाता है। संजय बाली जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि जो कम संसाधनों में भी उसी फ्लेवर को, उसी गर्व को, उसी गौरव को जो बना के रखे हुए हैं। इसी कड़ी में हम कुछ और हमारे आमंत्रित श्रोताओं को, हमारे अधिकारियों को बुलाते रहेंगे, लेकिन एक प्रस्तुति का समय हो गया है और गुलाब खांडवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी अगली प्रस्तुति के लिए वो आएं और एक किस्से की रागनी है शाही लकड़ारे की, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पंडित लक्ष्मीचंद जी की लेखनी से निकली हुई ये बात, और मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे फार्म एंड होम के हमारे कंपेयर्स भाई सुरेंद्र पूनिया जी यहाँ हैं, भाई बलजीत कौशिक हैं, अनिल शर्मा भाई यहाँ पर विराजमान हैं, आप लोग भी आए। ये एक ऐसी कड़ी है जो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को आपके सामने लेकर के आती है, पूरे मन से अंदर के उद्गारों के साथ आपके सामने बैठती है और ये फर्क आपको महसूस नहीं होता कि कौन भाई बैठा है, सिर्फ आकाशवाणी के कार्यक्रम याद रहते हैं।
2: आप सभी के बीच गुलाब सिंह जी,
1: गुलाब सिंह खांडवाल।
2: भारत से पहले यदि हरियाणवी संस्कृति को किसी मंच पर सबसे पहले हरियाणा के इतिहास में सजाया तो वो गुलाब सिंह जी हैं, जो रागणी की विधा को भारत के पड़ोसी देशों तक लेकर गए। पर जोरदार तालियां, आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हरियाणवी रागणियों को पहचान दिलाने वाले गुलाब सिंह खांडवाल जी हमारे।

0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत ही सुरीली आवाज। मात पिता हो जन्म देने के, ना कर्मा के साथी, और सतगुरु ज्ञान बिना विचार बिना कोई बनता नहीं माती। एक से एक बात पंडित जी ने कही है, पंडित मांगे राम ने कही है, मेर सिंह जी ने कही है, बाजे भगत जी ने कही है, और वही हमारी थाती है, हमारी धरोहर है, जो आज इन कलाकारों के माध्यम से आकाशवाणी में गूंजती है। तो अब अगली प्रस्तुति के लिए हमारे एक युवा साथी हैं, युवा कलाकार हैं, भाई सोमवीर कथुरवाल। लेकिन परंपरा बहुत पुरानी है, इनके पिताश्री भी आकाशवाणी के कलाकार रहे, और आज वही आवाज़ फिर से एक दूसरे रूप में हमारे गूंज रही है, और इतनी गूंज रही है कि आज ऑन डिमांड ये कलाकार है, और बहुत दूर दूर तक आपकी ख्याति है। जब तक वो अपनी तैयारी पकड़े यहाँ पर आए, मैं बड़े सम्मान के साथ मैम सुमन मंजरी जी को आमंत्रित करूँगा दो शब्दों के लिए कि आप आएँ और आकाशवाणी में आपकी जो यात्रा रही है, आपका जो अनुभव रहा है, आपके जो संस्मरण रहे हैं, कुछ शब्दों में, मैं समय की सीमा के मैं आग्रह करूंगा आपसे, लेकिन आप आए हैं, ये लोभ हम श्रवण नहीं कर पाए कि आपको बिना बुलाए हम यहाँ से जाने दें। आप आए और अपने अनुभव, अपनी बातें हम सबके साथ साझा करें। सुमन मंजरी जी,
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए, रोहतक आकाशवाणी के 50 वर्ष पूरे हुए, आज 50 वर्ष पीछे चली गई। वो दिन याद आ रहा है 8 मई को, जब हमारा पहला प्रोग्राम मेरा और सुमित्रा का, सत्तो बहन और धन्नो बहन के रूप में पहला प्रोग्राम एयर में गया था। शायद उस समय पता ही नहीं था कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसके भविष्य में हमें क्या लाभ होंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे वो स्वतंत्रता मिली, मानसिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता। हफ्ते में एक मंगलवार को ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम आता था और 50 रुपए का हमें चेक मिलता था, महीने में 200 रुपए। उस चेक ने मुझे यह समझाया कि फाइनेंस क्या होता है। यदि मुझे वो चेक नहीं मिलता तो शायद आज भी मैं अधूरी ही रहती कि अकाउंट कैसे खुलते हैं बैंक में जाके, और किस तरह चेक जमा कराए जाते हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं, हम उस दौर से, हम अपने आप को कलाकार कहते थे, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी में, इसी रोहतक की धरती पर हमें डूम पार्टी कहा जाता, और डूम पार्टी को कलाकार बनाने में रोहतक आकाशवाणी का हाथ है, सम्मान दिलाने में आकाशवाणी का हाथ है, क्योंकि हम उस पीढ़ी से आए हैं, लड़की की कमाई माँ बाप नहीं लेते थे, और वो 200 रुपए हमारे अकाउंट में डलते गए। लेकिन जिस महीने 5 मंगलवार आते थे तो 50 रुपए हमें, उसको हम कैश करा लेते थे। और इसी यूनिवर्सिटी में जो भाई और भाई के दोस्त, जब यूथ फेस्टिवल होता था और हम अपने आइटम देते थे, और हमें अपने पर इतना आत्मविश्वास था कि 3-4 तो रिकमेंड या कमेंट तो हमें होना ही होना है, और हमारा आइटम होते वो हमें कहते घर जाओ घर जाओ, बस हो लिया तुम्हारा आइटम, तुम्हारा इनाम हम ले आएंगे। और हम, मैं और सुमित्रा इधर उधर घूमते रहते कि नहीं, हम तो अपना प्राइज लेके जाएंगे। लेकिन जब वो 50 रुपए आए ना हाथ में, तो इसी यूनिवर्सिटी में उन भाइयों के लिए हम अंबानी और अड्डानी की तरह थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय पिक्चर में स्टूडेंट का आई कार्ड जाता था और 90 पैसे की टिकट मिलती थी, और वैसे 1 रुपए 80 पैसे की टिकट थी। तो वो ही भाई जब वो 50 रुपए हमारे पास हो जाते, उनके दोस्तों को और उनको हम 90 पैसे देते थे, 10 का नोट, और 10 पैसे का वहां पापड़ आता था कि 90 पैसे की टिकट और 10 पैसे का पापड़। और वही भाई हमें पूछते थे कब है तुम्हारा रेडियो स्टेशन पे मंगलवार, हम तुम्हें छोड़ भी आएंगे, हम तुम्हें ले भी आएंगे। तो ये मान सम्मान हमें आकाशवाणी रोहतक ने दिया। और आज यदि मैं पुलिस में हूं, जो मेरी भाषा की सुंदरता है वो आकाशवाणी की बदौलत है, और जो सुमन और सुमित्रा की दोस्ती की मिसाल है वो भी आकाशवाणी की बदौलत है। जो भी आते थे महिलाएं गांव से आती थी देखने के लिए, ग्रामीण अंचल से एक पूरा ग्रुप आता था जिनको रेडियो स्टेशन दिखाना है। तो जैसे शंकर जयकिशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का नाम है ना, कहते वहां चले जाओ सुमन सुमित्रा मिलेंगी। तो मुझे जो आत्मविश्वास दिया, और मुझे नहीं दिया, मेरे दादाजी बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा टेक गांव में खेती करने वाले, लेकिन रेडियो स्टेशन पे ये हो गया बुजुर्ग बूढ़ों को लाओ और वो कहानियां सुनाएंगे। और सुमित्रा ने कहा दादाजी को बुला लेते हैं। हमने उनको बहुत कहा लेकिन उनको साइन नहीं करना आता था। सुमित्रा ने और मैंने उनको अभिराम लिखना सिखाया, और अभिराम और उसी समय प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है ये भाव मेरे अंदर इस रेडियो स्टेशन ने दिया, जिसको मैं आज तक भी निभा रही हूँ। मेरे यहाँ कोई काम वाली है या किसी को साइन नहीं करने आते हैं तो मैं कहती हूँ हम तुम्हें लिखना सिखा देंगे। तो ये आत्मविश्वास दिया। और इसके अलावा उस समय चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और परिवार नियोजन चल रहा था, उसका इंटरव्यू हमने किया। और उस समय सोच नहीं सकती, जब मैं पुलिस में आ गई मुझे पता लगा मुख्यमंत्री क्या चीज होता है, उनके तो हम साथ खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन रेडियो स्टेशन ने मुझे वो आत्मविश्वास पैदा किया कि मैंने उनके साथ बैठ के उनका इंटरव्यू लिया। आज मैं पुलिस में कामयाब क्यों हूं, क्योंकि रोहतक रेडियो स्टेशन पे जब हम थे तो रात की ड्यूटी आती थी तो डबल पैसा मिलता था उस दिन का। और रात की ड्यूटी क्या होती थी, ये क्रिकेट के मैच चलते थे, क्रिकेट के मैच कहीं और से रिले हो रहे थे, लेकिन बीच में यदि कनेक्शन कट जाता था ना तो थोड़ा सा हमें म्यूजिक देना होता था, और उस दिन रात को डबल पैसे मिलते थे। तो रात को हमें जाते थे, चाहे लाल साहब थे उनकी गाड़ी थी, घर से लेके आती थी छोड़ के आती थी, लेकिन रात की ड्यूटी से मुझे तो रेडियो स्टेशन ने ही तैयार कर दिया था। तो जब पुलिस की रात की पेट्रोलिंग होती थी मैं कभी नहीं घबराई, क्योंकि मुझे ये आत्मविश्वास रोहतक रेडियो स्टेशन ने दिया। और मुझे नहीं, मेरी इस भाषा को तराशा। मैं एक ग्रामीण अंचल से हूँ, एक जाट परिवार से हूँ, सै और शै का अंतर ही नहीं पता था मैं मुझे सांप क्या है, षटकोण क्या है, शलगम क्या है, सबको सै बोलती थी, इंडियन एक्सप्रेस बोला करती मैं। लेकिन जो हमारे पैक थे गुप्ता जी, उन्होंने इतना मांझा हमारी भाषा को सुधारा। तो मुझे लगता है मैं और सुमित्रा, हम जो दोनों हैं, जो मान सम्मान हमें रेडियो स्टेशन से मिला, जो आत्मविश्वास हमें मिला, मुझे नहीं मेरे जैसी बहुत बहनों को मिला होगा, हम इसके आजीवन आभारी रहेंगे। और मैं भी वही बात कहूंगी जो मलिक साहब ने कही थी, जब हम जाते थे उस समय तो पूरा भरपूर होता था रेडियो स्टेशन, अब भी बुलाते हैं मुझे, और वहां दो ही मिलते हैं मुझे, संजय बाली जी, और उसने तभी नहीं सिखाया, अब भी मुझे सिखाया। लेकिन जब मेरे लिए 50 रुपए की कीमत थी, अब जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरने जाती हूँ तब मेरा सीए पूछता है, मैडम ये प्रसार भारती क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं प्रसार भारती। बोला जी आपके पैसे आए हुए हैं। मैंने कहा पैसे? फिर मुझे ध्यान आता है, ओहो मैं तो वहां पे 2-3 बार इस साल रेडियो स्टेशन गई हूँ और ये पैसे मेरे खाते में आए हैं। तब मुझे ये पता लगता है कि यदि मैं रेडियो स्टेशन पे टॉक देने जा रही हूँ तो इसको एक्सपर्ट माना जाता है और वो प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो मुझे तो आज भी ये मेरा आकाशवाणी ही सिखा रहा है, मरते दम तक सीखते रहेंगे। और 50 वर्ष आज हो गए हैं, शायद 100 वर्ष हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन रेडियो स्टेशन से जुड़ी हुई अन्य कलाकार अदाकारा और जो भी कलाकार होंगे, भविष्य के उभरते हुए बच्चे होंगे, वो जरूर देखेंगे। और मेरा ही प्रभाव रहा, आज जब मैं इंटरव्यू दे रही थी मुझे उसने बताया कि जी आपकी भतीजी सुनी थी और स्वाति वो भी हमारे रेडियो स्टेशन पे हिसार में काम कर रही हैं, क्योंकि वो रास्ता मैंने खोला। तो आप अपने बच्चों के लिए रास्ता खोलें, और यदि आज आपको बच्चे संस्कारी बनाने हैं तो उनको रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम सुनाने शुरू कर दो, सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे। आज जो मैं अधिकारी हूँ, एक लेडी होते हुए उस समय तो लड़की थी, करंट अफेयर्स मुझे तैयारी नहीं करने पड़े, क्योंकि रेडियो स्टेशन के युवा संसार में ग्रामीण बहनों में हम यही कार्यक्रम करते थे। और एक लास्ट सच्ची बात बताते हुए वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ग्रामीण बहनों में लेटर भी आते थे, पत्र भी हम पढ़ते थे। तो एक बहु झोलरी से कमला ने एक पत्र लिखा था, और उसने लिखा था कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा 17 साल का घर से निकल गया है, और आप रेडियो स्टेशन पे ये इस तरह के कार्यक्रम करते हो, मुझे आपका कार्यक्रम सुनकर बहुत हिम्मत आई, मुझे अब भी नाम है, याद है कि मेरे बेटे का नाम सुल्तान है। और उसको जब हमने वहां अनाउंस किया, शायद किसी ने हरिद्वार में वो प्रोग्राम सुना होगा, और वो सुल्तान बच्चा उस आश्रम में था। वहां से उन्होंने पत्र लिखा रेडियो स्टेशन को, उस आश्रम वालों ने, और मुझे लाल साहब ने बुलाया कि भाई ऐसे कोई था। और जब हमने वो पत्र ढूंढा, क्योंकि केवल इतना ही हमारे पास सूचना होती है, बहु झोलरी में लाल साहब ने किसी को भेजा और उस कमला को ढूंढा और उनका परिवार जाकर सुल्तान को वापस लेकर आया। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बहुत दूर तक जाता है, और हमें इसका लाभ भी होता है और बहुत लोगों का भला होता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय आकाशवाणी रोहतक।
2: बहुत ही ओजस्वी शब्दों के साथ मैम ने अपनी बात रखी, और मैम के ही जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा, आकाशवाणी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं बताना चाहूंगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैडम के सुपुत्र मानव को मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और उस दौरान जब मैम से मैं बात करती थी तो मैम ने अपनी DSP होने की यात्रा एक बार मेरे साथ साझा की कि HCS की जो परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न ऐसा था जो फसल की किसी किस्म को लेकर था, और उसका जवाब मैं केवल इसलिए दे पाई क्योंकि आकाशवाणी के कृषि कार्यक्रम में उसका जवाब छुआ गया था। तो आकाशवाणी रोहतक की ये ताकत है कि यहाँ पर जो हम कहते हैं खेल खेल में सीख जाते हैं, बात बातों में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसी के साथ एक और चीज़, जैसे मैम ने अपनी जोड़ी बताई, वैसे ही संपूर्ण भाई और रामफल भाई, ये कृषि दर्शन पर हमारा चलता था ग्रामीण संसार 6:20 से 7:30 बजे तक। मेरे मामा जी के घर में मेरे नाना जी रेडिया बोला करते, अगर रेडिया चल लेगा भाई संपूर्ण भाई ना आना, राम फल भाई ना आना है। उस टाइम पे कोई बच्चा मजार कोई आवाज कर दे, पिन ड्रॉप साइलेंस, 6:20 से लेकर 7:30 बजे तक सारे बच्चे यूं कहा करते थे, एक बार तो राम राम बोली दूसरी बार आना कोडबो होगी। तो वो जो जोड़ियां थी बचपन में हमें समझ नहीं आता, लेकिन अब समझ आता है कि उन जोड़ियों ने हमें जो सिखाया, हमें संस्कारों से जोड़ा, हमें खेती से जोड़ा, और हरियाणा होना और हरियाणवी होना क्या है वो बखूबी समझाया। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं मंच पर बुला रही हूँ मैम सुमित्रा हुड्डा जी को, वो आएं और अपनी यादें हमारे साथ साझा करें। मैम सुमित्रा हुड्डा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भूमि पेडनेकर जी की माँ हैं, और ये गौरव की बात है कि एक माँ एक ऐसी बेटी को जन्म देती है और एक ऐसी बेटी को तैयार करती है जो सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद पूरे भारत की पहचान बन जाती है। मैम सुमित्रा हुड्डा जी मंच पर।
3: सारे बाण भाइयों ने राम राम। मेरी बेबे सुमन तो घनी हिंदी काटगी, उतनी हिंदी में ना आती। अब हुआ ये था कि हमारी जोड़ी तो बहुत मशहूर थी, काफी कुछ सुमन ने बता दिया, और सुमन की माँ मेरी बुआ लग गई थी। तो जब मैंने कहा सुमन चाल रेडियो स्टेशन चले, बोला ना बड़े बदमाश लोग हो मत जाइयो। तो मैं तो गई, फिर सुमन ने मैं कहा कोई बदमाश ना है, सब बड़े बढ़िया लोग हैं, लाल साहब मिले उधर। और हमारी तो स्थापना जैसे 8 मई 1976 को हो गई थी। उसके बाद मैं एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि मैं हरियाणा में नहीं रहती थी, मैं आई थी बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से पढ़ के, और मुझे हरियाणा का मतलब रिस्क नहीं मालूम था स्टेज पे जाने से क्या होता है। और मैं पहली लड़की थी जिसने स्टेज पे जाके मोनो एक्टिंग शुरू की थी हरियाणा में। तो समझो, आप समझ सकते हो आज से 55 साल पहले होगा, 50 साल पहले तो आकाशवाणी थी, उससे 1-2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो हंगामा हो गया, तो वहाँ से ये डिबेट करा करती जैसे अब करगी डिबेट, और मैं यो करा करती जो भी करण लाग रही। तो उसके बाद हमारी, क्योंकि ये मेरी बुआ की बेटी भी थी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी और हम क्लास में भी एक में थे, तो एक रोचक सा किस्सा बता दे उसमें। अपार्ट फ्रॉम आकाशवाणी, पहले मैं ये बता देती हूँ आकाशवाणी के लिए मेरे साथ क्या हुआ। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, तो मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़, और मेरे को यहाँ से माइग्रेशन लेके पंजाब यूनिवर्सिटी चली गई फाइनल ईयर में। और मेरा जो शेड्यूल रहता था, मेरे को आकाशवाणी छोड़ना नहीं था। क्यों नहीं छोड़ना था, उसका एक कारण ये भी था, वो 50 रुपये। मेरे फादर ने, जब मैं आई राजस्थान से, तो मेरे को वहाँ पैसे भेजते थे और मैं बड़ी इंडिपेंडेंट थी, अपने बैंक जाती, वहाँ से पैसे निकालती, अपनी मर्जी से खर्च करती। जब मैं हरियाणा आ गई रोहतक में, मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने कहा डैडी माई पॉकेट मनी। बोला किसी पॉकेट मनी, मगर पॉकेट मनी का चलन ही नहीं था। बोला अब तो तू वापस आ गई, अब कैसे पैसे। तो वहाँ एक रेलवे स्टेशन के पास स्कूल हुआ करता और मैं डांस बहुत अच्छा डांस करती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई एक सुमित्रा है, वो हमारा तैयार करवा देगी। मन ने तो नाचना था, मैंने खूब बढ़िया तैयार करवाया, उनका बहुत अच्छा डांस हुआ और उन्होंने मेरे को वही 50 रुपये दिए। तो मैंने कहा डैडी से मांगना ही नहीं अब। उस दिन के बाद से मैंने डैडी से कभी कभी कभी भी पॉकेट मनी नहीं मांगी। और मैंने जब डैडी ने मना किया था कि कैसी पॉकेट मनी, तो मैंने कहा ना मांगू, ये पाछा ना मांगू। तो वो मेरा वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद आकाशवाणी आई और वही 4 प्रोग्राम दिया करते और वही 200 रुपये मिला करते। हम तो सेठ हो रहे थे, जब धन्ना सेठ हो रहे थे, मतलब उस जमाने में 200 रुपये एक स्टूडेंट के पास आ जाएं, आप सोचो। मैं तो, हम तो फिर इसके याद ना है, हम तो ब्रेड पकौड़े सारे ग्रुप ने खवाया करते और जो ना खाता उसने ज़बरदस्ती देते। फिर क्या हुआ, मैं चंडीगढ़ चली गई तो मेरे को तो रेडियो नहीं छोड़ना था और उस टाइम मैं करनाल फ्लाइंग क्लब में पावर फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी ले रही थी। तो मैं क्या करती, वहाँ पे फ्राइडे को चलती, सैटरडे संडे ट्रेनिंग करती, मंडे को प्रोग्राम देती और उसके बाद फिर चंडीगढ़ जाती बस में, क्यों सारा बस में हो रहा था काम। तो अगर मैं आकाशवाणी की बात करूँ, मेरा तलफ़ुज, मेरा जो बोलने का आरो अवरो, जो मेरे को बहुत काम में आया बाद में फिल्म में, फिल्म के टाइम में इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, तो वहाँ पे मुझे बहुत काम आया। और आकाशवाणी का ऐसा हो गया था, जब मैं आकाशवाणी में पहली हरियाणा की जो अनाउंसर थी वो नियुक्त की गई थी, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया था मेरे प्रोबेशन पीरियड में ही, क्योंकि उस वक्त मुझे फिर एक फिल्म मिल गई थी अमेरिकन, जिसकी मैं ट्रांसलेटर बन गई थी। तो उसमें भी जो श्याम भाई थे वहाँ, जो इन्होंने बताया पहले अनाउंसर, उन्होंने हमारी भाषा पे बहुत काम किया, जैसे सुमन ने भी डिस्कस किया उसके बारे में। लेकिन यहाँ से आप ऐसा समझो कि हमारी नींव बनी, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो मैं ड्रामा आर्टिस्ट भी थी आकाशवाणी के साथ। तो किसी भी तरह से आप समझे कि वहाँ से बहुत जीवन में हमें जब कोई बात करता था वहाँ से समझ आ जाती थी वोकल कॉर्ड से, इस आदमी की इमोशन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, आँखों के पीछे क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ज़बान से कुछ और निकल रहा है। क्योंकि जब आप इमोशंस को समझने लगते हैं तो उसमें भाषा का अंतर, आपको जो भाषा गले से निकल रही है, जो आदमी होठों से बोल रहा है, वो कुछ और है, जो अंदर है वो कुछ और है। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंस हुए वो बड़े ब्यूटिफुल हुए लाइफ में। बहुत जगह इन एक्सपीरियंस ने हमको बचाया, बहुत जगह हमको बहुत सारी तारीफ मिली, और ज़्यादा तो सारी मेरी भाण बता गई, बाकी तो हमने जो उत्पने करे थे हमने जो शुरू करा था। फिर फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, हमने हरियाणा की पहली फिल्म बनाई, फिर मैंने दूसरी फिल्म बनाई सांझी, जो कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में इनवाइट हुई और उसको एक साल तक वहाँ चली, वो उतरने नहीं दिया उस फिल्म को। राजस्थान में सिल्वर जुबली कर गई थी। तो बहुत सारे, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेस हमारा था, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई एक कल्चरल जर्नी की, ये तो पुलिस में चली गई, मैं दूसरी तरफ चली गई थी, तो वो आकाशवाणी से हुई। भाषा को जो सुधारा गया, इमोशंस की ऊंचाई और निचाई जो समझाई गई, वो यहाँ से समझाई गई। बस मैं ज़्यादा लंबा ना करूँ क्योंकि और प्रोग्राम है। अरे यो मेरा भाई बैठा है ना, सुभाष नगाड़ा है, जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, कॉलेज में एडमिशन लिया था, दास मैडम थी और ये हम डांस करते थे और ये नगाड़ा बजाया करता, और जब से इनका नाम हमने सुभाष नगाड़ा कर दिया था। तो बहुत आकाशवाणी ने बहुत बड़े बड़े कलाकार दिए, बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत हरियाणा को ऊपर उठाया, और मैं भी आकाशवाणी की देन हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार मैम सुमित्रा हुड्डा जी। ये संस्मरण है जो यादों की किताबों में छुपे रहते हैं, कभी कभी अवसर मिलते हैं उनको खोलने का, तो आज आप आए, हमें भी मौका मिला कि आपसे कुछ सुनने का। और धन्य और सत्तो बहन की जोड़ी जो एक बार फिर से मिली, और भी ऐसे कलाकार हैं, और भी ऐसे हमारे ईश्वर यात्रा के कई ऐसे हमराही हैं जो हमारे बीच में। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस बड़े दिल के लिए जो आपने कहा है। और ईश्वर यात्रा के मैंने कहा था कि कई हमराही हमारे बीच में है, भाई पंकज शर्मा, पंकज भारद्वाज जी हमारे बीच में है, जो हमारी एक बहुत सुरीली आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़, और नरेश खत्री जी हैं उनके साथ, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब जो, क्योंकि जिन कलाकार को हमने बुलाया वो आप ही के लिए बुलाया है, आप बातचीत भी होती रहे, मनोरंजन भी होता रहे, और ये पल ऐसे ही बीत

रहे तो मैं भाई सोमवीर कथुरवाल से अनुरोध करूंगा कि वो आए अपनी प्रस्तुति के लिए बहुत सम्मान के साथ। बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत ही युवा ऐसा कलाकार जो आज छाया हुआ है पूरी हरियाणवी बोली को लेकर के। सोमवीर कथुरवाल का स्वागत कीजिए करदल ध्वनि के साथ।

0: से?
1: हमारे जो अधिकारी भी रहे और आकाशवाणी का ये गौरव है कि वो अधिकारी के तौर पे भी काम करे और आज टॉप ग्रेड आर्टिस्ट में उनका नाम आता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे निदेशक रहे श्रीमान कैलाश वर्मा जी की। अगली प्रस्तुति उनकी है करतल ध्वनि के साथ, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा। कैलाश वर्मा जी के कुशल नेतृत्व में आकाशवाणी ने जब अपनी एक नई राह खोजी, नई पहचान बनाई, वहीं कई तरह के गीतों की नोटिंग भी आपने अपने कार्यकाल में कर, मलिक साहब ने जो काम शुरुआत किया था उसके बाद उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया।

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सावन के महीने का आप सभी को सुर के माध्यम से, लोक धुन के माध्यम से, हरियाणवी बोली के माध्यम से आप सभी को परिचय कराया। माननीय कैलाश वर्मा जी आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने हरियाणवी त्यौहार, हरियाणवी रस्में, उन सभी से जुड़ी हुई लोक गायकी को संजोने का काम किया अपने गायन के माध्यम से। मुझे याद आ रहा था जब मैंने सर को पहली बार सुना 2015 में, एक मंच पर सर ने गाया था, आजा बहु आंगना में कांगना खेले, बेटा तभी प्यारी बहु तना लाल उगले। तो इस गीत को सुना और वही समा मुझे आज यहाँ पर दिख रहा था। सर इसी प्रकार लगे रहें, परमात्मा उनको उच्च कोटि का स्वास्थ्य दे, अच्छा भविष्य दे, उनकी आवाज़ यूं ही हमें अभिभूत करती रहे। और अब हर विधा का जिक्र मंच से, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हर विधा का जिक्र हो चुका है। अब जो विधा मैं यहाँ पर जिक्र करने वाली हूँ वो है नाटक की विधा, चाहे वो लघु नाटक हो, वो पार्श्व नाटक हो, या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट्री हो। जब स्क्रिप्ट लिखने का काम आता था तो शहर से, रोहतक शहर से, पूरे हरियाणा से लेखकों को बुलाया जाता था, और उन्हीं में से सबसे ज़्यादा आकाशवाणी के लिए जिन्होंने नाटक लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, वो हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शर्मा जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के पद से सेवानिवृत्त हैं, हरियाणवी संस्कृति को संजोने के लिए बोल हरियाणा रेडियो चैनल चला रहे हैं, और मुझे भी आकाशवाणी तक लाने वाले वही थे। मैं मंच पर बुला रही हूँ डॉक्टर आनंद शर्मा जी, जोरदार तालियों के बीच आएं और आकाशवाणी से जुड़े हुए अपने विभिन्न संस्मरणों को सभी के साथ साझा करें।
1: आकाशवाणी परिवार से जुड़े हर सदस्य को आज का ये महान दिन बहुत शुभ हो, और माननीय संजय बाली जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अग्रिम बधाई। बात नाटक की चली है तो मेरा नाटक से ज़्यादा जुड़ाव रहा, मेरी विधा नाटक ही रही है, मेरी पीएचडी और डीलिट भी इन्हीं विषयों पर रही है। मैं मूल रूप से सोनीपत से हूँ, लेकिन 1982 में मैंने इसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और उसके बाद मैं रोहतक का होके रह गया, वापस ही नहीं जा पाया। हालांकि आज भी मेरा घर है, मेरा परिवार है। और आकाशवाणी में मैं 1982 में युवा संसार से जुड़ा था, और उस समय एक टॉक के लिए मुझे केवल 5 रुपये का चेक मिला था, और वो 5 रुपये का चेक आज 5,000 में भी तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब तो हम इतने कार्यक्रम दे चुके हैं, देते रहे हैं। मुझे मूल रूप से खेल और विज्ञान से संबंधित टॉक्स के लिए बुलाया जाता था। माननीय कपिल, राकेश कपिला जी यहाँ मौजूद हैं, मैं नमन करता हूँ। राकेश कपिला जी ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया आकाशवाणी पे, मैं भी उन्हीं के साथ लगा रहा। और धर्मपाल मलिक जी ने एक आर्काइव के लिए मेरी टॉक की थी, वो आर्काइव में मौजूद है। वहीं माननीय कैलाश वर्मा जी ने एक 5 घंटे का इंटरव्यू मैंने किया था, जब माननीय कैलाश वर्मा जी आकाशवाणी के निदेशक थे, हमारे यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे माननीय एचएस चहल जी, उनका इंटरव्यू मैंने 5 घंटे का किया था, और वो एडिट करके 3 घंटे का, जैसा मलिक साहब ने बताया, आर्काइव में आज भी मौजूद है। वो मुझे करने का सौभाग्य मिला। इस आकाशवाणी ने, जैसा हमारी बहन सुमन और हमारी बहन सुमित्रा जी ने बताया, यहाँ से संस्कारों की एक नई सीढ़ी चलती है। यहाँ आकर, उस प्रांगण में आकर हम कितने संस्कारित हो सकते हैं, ये हमने वहाँ से सीखा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने एमडी यूनिवर्सिटी के कैंपस के आकाशवाणी में भेजे, जो विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान देते रहे। इस आकाशवाणी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है युवा पीढ़ी को आगे ले जाने में। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम भले ही 10 लाख से ज़्यादा की आबादी में रह रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी से जुड़े हुए चुनिंदा लोग हैं जिनकी एक अलग पहचान होती है, उनके बारे में ये कहा जाता है यार ये आकाशवाणी पे बोलता है। तो उस एक सामान्य व्यक्ति को विशेष व्यक्ति बनाने में आकाशवाणी का हमेशा बहुत योगदान रहा है। मैं बहुत ही मनोयोग से आकाशवाणी के पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और आकाशवाणी का ये सफर युग युगों तक चलता रहे इसकी कामना करता हूं। नमस्कार।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के स्वर्णिम अवसर पर आज हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा के पहले पद्मश्री अवार्डी श्री महावीर गुड्डू जी, आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए, वर्षों से जुड़े हुए, एक बात जो मैं इनके बारे में कहना चाहूंगी, वो कलाकार मौजूद है जो पद्मश्री भी लेते हैं, कभी नोबेल भी लेते हैं, कभी ओस्कर भी लेते हैं, और इन्हीं से भारत बनता है। अब आप सभी के बीच पद्मश्री अवार्डी माननीय श्री महावीर गुड्डू जी। अब हमारे सामने श्री महावीर गुड्डू जी अपने वक्तव्य और अपनी प्रस्तुति के साथ।

0: इस रेडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने लगभग सभी पुराण पढ़ दिए, चाहे शिव पुराण है चाहे ब्रह्म पुराण है, किसी भी पुराण में कोई लेख नहीं है कि शंकर भगवान भंग पीते थे। अगर कोई दिखा दे रेडियो के माध्यम से, मैं दावा करता हूं संजय वाली जी के पास आ जाए, वो रेडियो सुन करके प्रूव कर दे, 1,00,000 रुपये मैं उसको दे दूंगा। कहीं पर भी नहीं है, तो हम जैसे कुछ कलाकारों ने फिर बात उभर के आई कि पंडित मांगे ने ऐसा क्यों कहा, वो इसलिए कि माता पार्वती का टेस्ट लेना चाहते कि मैं फक्कड़ फकीर हूं, साधु हूं, संत हूं, मैं तो भंग पीता हूं।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रोहतक की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर ये

0: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। निजी सुनी आकाशवाणी रोहतक की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर रेडियो रिपोर्ट का ये शेष भाग।

0: बहुत बहुत आभार महावीर गुड्डू जी। ऐसी परंपरा में हमारे एक कलाकार हैं रणबीर सिंह बड़वासणिया, गढ़वा बैंजू पे गाते हैं, बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं और बहुत सिद्ध कलाकार हैं वो। तो आज पंडित जगन्नाथ जी की अपनी एक रचना, जो उनके गुरु हैं उनकी अपनी एक रचना लेकर के वो आ रहे हैं। जब तक वो अपना साजबाज रखें, मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं राकेश कपिला जी। स्पोर्ट्स का जैसा कि बताया था कि उन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ काम किया है, तो कुछ शब्द इस अवसर पर उनसे कहने के लिए मेरा सादर आग्रह है कि वाएँ और अपने मन के उद्गार कुछ हमारे साथ साझा करें।
1: बात बड़ी अजीब सी है, खेल के मैदान में बारिश हो जाए और बारिश में चार चार पाँच पाँच फीट का पानी स्टेडियम में इकट्ठा हो जाए और सारी रात लगे रहने के बावजूद भी पानी निकलने का काम चलता रहा और हम रेडियो पे बैठे अपने रोहतक स्टेशन को ये बोलते रहे कि अभी अंपायर्स ने पिच का निरीक्षण नहीं किया। जब तक अंपायर की तरफ से सिग्नल नहीं मिलता तब तक वो मैच खत्म नहीं डिक्लेयर किया। तो ये कमेंट्री चलते रही, हम लोग जितने भी आंकड़े दे सकते थे, जो भी हम कर सकते थे। तो ऐसा अनुभव हमारे साथ बार बार हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस स्टेडियम से मैं कमेंट्री कर रहा था, अभी शुरू ही किया था, लाइट चली गई, कोई स्टैंड बाई नहीं, सिर्फ एक माइक था जो हमारा कनेक्शन चल रहा था। और उस कमेंट्री में 45 मिनट उस स्टेडियम के अंधेरे में अकेला मैं बैठा, मेरा प्रोड्यूसर भाग गया, मेरा को कमेंटेटर्स निकल गए, स्टैटिशियन मेरे साथ बैठ के वो मेरे को स्टैटिक्स देता रहा और मैं उस स्टैटिक्स को अपने अनाउंस द्वारा अपने लोगों को सुनाता रहा। और बहुत सारे कहना चाहिए कि लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना। फिर मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना पिता पुत्र की जोड़ी को लेके आया जाए। एक बेटा ही अपने पिता के बारे में ज़्यादा बोल सकता है, एक अच्छे खिलाड़ी को हम इतना नहीं जानते होंगे। तो मैंने राजेंद्र गोयल और नितिन गोयल को बुलाया स्टूडियो में, उनसे मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं पूछूँगा, आपका बेटा आपसे पूछेगा कि आपने कैसे खेला। और ये उन्होंने एक वृत्तांत सिवाय सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगा। बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में इंग्लैंड में टीम गई, वहाँ पर राजेंद्र गोयल 12th मैन हो गए, डिक्लेयर हो गए। और बेदी ने उनसे रात को कहा कि भाई तू खेल रहा है और रातों रात जाके अपनी किट बना के ला। अब गोयल साहब गए रात को, कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा, किससे किया होगा, तो जो वो उन्होंने बताया तो मेरे को बड़ा यकीनन बुरा। और फिर सुबह उनको कहा कि तू यू आर नॉट प्लेइंग, आप बोले क्यों पहले, एक कप्तान की जिम्मेदारी है कि आप बोले तो उसको पूरा करें। और कई चीजें जैसे हम लोग सीखते हैं, अब मालिक साहब सामने बैठे हैं, कई बार होता था तो मालिक साहब सीधा एक उनका जो तकिया कलाम कहूँ या वो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए होता था, अब वो मेरे साथ ही रहेगा। तो अच्छा लगता था, उस टाइम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मैं आपसे जयपुर में भी मिला, चित्तौड़गढ़ में भी मिला, कई जगह मिला। वो कहते यार तुम्हारा एक डायरेक्टर है, मैंने कहा नहीं मैं तो कई डायरेक्टर के साथ क्या, किसकी बात कर रहे हो। कहते आप कपिल साहब को जानते हो, मैंने कहा जानता हूँ, कि मैं कपिला हूँ वो कपिला है, उनका फोन मेरे पास आता है, मेरा फोन उनके पास आता है। अरे कपिला तेरी आवाज को क्या हो गया, कपिल साहब बोलते क्या हुआ मेरी आवाज को क्या हुआ। तो मैंने कहा सर ये तो होना है। कहते या तो तू ट्रांसफर कर रहे या मैं ट्रांसफर करा लू। मैंने कहा सर मेरे जानने वाले सारे जो भी हैं ऑफिस में फोन आता है उसका बात करते हैं। और खेलों के साथ जुड़ना मेरा बचपन से रहा, मेरे को आज भी याद है जब मेरे फादर, मैं उससे सिर्फ 6 महीने का था जब मेरे को उन्होंने स्विमिंग पूल में फेंक दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने यूँ नहीं किया कि तू यहाँ आ जा, उठा के सडनली उठा के फेंक दिया। मेरी मम्मी चिल्लाती रही कि बेटे इसको बचाओ। तो क्या बचाऊँ, ये अपने आप हाथ पर मारेगा, अपने आप स्ट्रांग होगा, फौजी का बेटा है, ये ऐसे स्कंप नहीं करेगा। वो दिन से आज तक मैं भी खेलों में अभी भी जुड़ा हूँ, जबकि मैं 25 साल की मेरी सर्विस जो है वो आकाशवाणी को मैंने दी। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ दिया। आज भी जब भी जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे से ये पूछते हैं कि यू आर अ रेडियो मैन, तो आप टेलीविजन में क्यों नहीं आए? दो अभी स्टार स्पोर्ट्स के साथ मेरा जुड़ाव है, वर्ल्ड कप मैं अभी कवर करके आया। तो मैंने कहा देखिए, रेडियो और दूरदर्शन या टीवी में सिर्फ एक फर्क है। कहते क्या फर्क है? मैंने कहा आप बताइए। तो मैंने उनको कहा कि रेडियो जो है वो मुर्दा गाड़ता है और दूरदर्शन गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ता है। हम अपने लिसनर्स के मेंटली पिक्चर्स को उनको बताते हैं कि ये क्या हो रहा है, और दूरदर्शन रीप्ले करके बताता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो हालांकि ज़्यादा दूरदर्शन में मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा स्पोर्ट्स में, लेकिन फिर भी कॉमनवेल्थ गेम्स की जब ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली 2010 के लिए, तो मेरे को वहाँ पर आश्रय के लिए बुलाया दूरदर्शन ने। कहा आप हमारा कमेंटेटर नहीं है, आप देख लीजिए, तो आप 5 मिनट कमेंट्री कर लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। सर मैं 5 घंटे लगातार आश्रय के बारे में बोलता रहा, जबकि मेरे को आश्रय की ABC भी नहीं मालूम थी। लेकिन वहाँ पर बिठाया बंदे को, लीलाराम जी हमारे हुआ करते थे, आर्चर बहुत पुराने, और जयपुर में सबसे पहले मैं उनसे मिला जब वो रेलवे में वेस्टर्न रेलवे में उनके अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उनका टेस्ट ले रहे थे। तो बहुत कुछ ऐसे अनुभव भी आते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन होता है। अभी बाली जी ने भी बताया कि हम यहाँ पर ही फंस गए थे, तो उन 3 में से 2 आज भी हमारे यहाँ सामने आपके सामने हैं। एक रिटायर हो गए, वो यहाँ पर नहीं है। हम कैसे बचे ये हमारा दिल जानता है। गाड़ी में पेट्रोल छिड़क दिया गया था, चारों पहियों के हवा निकाल दी गई थी, शीशे तोड़ दिए गए थे। उसके बाद गांव के 2 बुजुर्ग थे, मैं नहीं जानता, वो आके उन जो बदमाश लोग थे उनको पीछे हटाकर खिड़की खोलकर हमें गाड़ी से जबरदस्त खींच के उन्होंने बोला भाग सकते हो तो भाग लो, जब तक मैं इनको रोक सकता हूँ उसके बाद नहीं रोक सकता। और वो इंसिडेंट सुबह 9:30 बजे हुआ। रात को 11:30 बजे जब आकाशवाणी का प्रसारण समाप्त हो गया, हम लोग पहुंचे तो एक शख्स वहां पर बैठा हुआ हमारा इंतजार कर रहा था, नंगे पैर दौड़कर आया था। वो हमारे आदरणीय स्टेशन इंजीनियर सैनी जी। उन्होंने सबसे पहले हालचाल हमारा पूछा कि तुम आगे, कहते अब मैं जाके पानी पीऊंगा। वो अटैचमेंट, वो जुड़ाव, और खाने की बात, पीने की बात, भूलने की बात, याद करने की बात, यही रेडियो है,

0: और यही 25 साल का सफर मेरा रेडियो के साथ रहा, और आज भी मैं वही कहता हूँ कि मैं बोलने की खाता हूँ, हवा में रहता हूँ, हवा में जीता हूँ, और शायद हवा में ही मैं चला जाऊँ, यही उम्मीद है। थैंक यू सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कपिला जी आपका अपने अनुभव साझा करने के लिए। और अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हमारी है, एक रागनी लेकर के, एक भजन लेकर के, हमारे हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार भाई रणबीर सिंह बड़वासनिया, मान सम्मान के साथ मंच पर तालियों की गर्जना के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन इस उत्सव।
2: तो आइए, सबसे पहले तो आज ये 50 वर्ष पूरे होने पर जो संगीत समारोह रखा गया, आए हुए सभी महानुभाव को हाथ जोड़कर राम राम प्रणाम है, और उसके बाद एक भजन आपके सामने। कैसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी आपका इस भजन के लिए। और एक और शख्सियत हमारे बीच में अभी विराजमान हुई आई हैं, रघुवेंद्र मलिक जी। रघुवेंद्र मलिक जी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। लेकिन इससे पहले एक दो और हमारे ऐसे आकाशवाणी की इस यात्रा में जुड़े हुए कलाकार हैं, और एक ऐसी आवाज़ जो आज आकाशवाणी हिसार को गुंजायमान कर रही है। हालांकि आकाशवाणी हिसार से हमारे ADP पवन कुमार जी यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो भाई आजाद सिंह दोहन, जिनकी शुरुआत आकाशवाणी रोहतक से हुई, और उसके बाद जब आकाशवाणी हिसार आरंभ हुआ तो वहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए
1: कार्यक्रम सुनने सारे बाण भाइया ने आजाद भाई की राम राम। आकाशवाणी के सफर के 90 वर्ष, आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष होने पर आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई। मैं 8 मई 1995 को आकाशवाणी के स्थापना दिवस पे आकाशवाणी समारोह देखने के लिए आया था, और 17 तारीख को ऑडिशन निकला था। चहल साहब ने मेरे को पहली बार एक कार्यक्रम में बुलाया था, और मैं 30 मई को ऑडिशन पास होके 1 जून को पहला कार्यक्रम दिया था। आज तो रेडियो के मैं संस्मरण सुनाता हूँ, मैं सबसे दूर का कंपेयर रहा, 160 किलोमीटर से आता था, 140 रुपये किराया लगता था, 150 रुपये मिलते थे। और मेरे पिताजी ये पूछते थे कि भाई तू तड़का आओगा, तो जब कृषि की बातों में, जब किसान वाणी कार्यक्रम में कृषि जगत में कहते कि भाइयों कल बातचीत करेंगे कपास फसल की कीड़ों से रक्षा, तो कल आओगा। और जे न्यू कह दूं भाइयों तड़के बातचीत करेंगे कपास फसल की कीड़ों से रक्षा, तड़के उड़े ड्यूटी है, यू मेरा मेरे बाबू का कोड था। हरियाणा की संस्कृति में बड़ी धनाढ्य है, एक महिला का पति गुम हो गया, मंजरी जी आप पुलिस विभाग से जुड़ी हैं, एक महिला का पति गुम हो गया, पड़ोसन लेकर थाना में गई, नुली थानेदार जी मेरा पति गुम हो गया। पुलिस सब तू पूछा कर रहे है, उलिया बता माल बरामदगी। ये हमारा हरियाणा, हरियाणा की संस्कृति में चंद लाइनें रेडियो के मार्फत से जो बातें सीखी, आपका बेटा, आपका बालक, आपका भाई और बेटी, तेरा काका लागू, बड़ी गंभीर बात की ओर लेकर जाऊंगा। सरकार ने जब मुझे चुटकुला सम्राट का पुरस्कार दिया तो मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन आकाशवाणी की मार्फत माबरी गुड्डू के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने चुटकुले सीखे हैं। एक बार पद्मश्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं, वो गंभीर बात बेशक एक मिनट फालतू लग जाए, फिर आहार पर प्रहार करेंगे। सबके लिए भोजन की व्यवस्था आकाशवाणी रोहतक ने कर रखी है, इस हार बस अड्डे पर उड़ाऊंगा, गंभीरता की ओर लेकर जाऊंगा, इशार बस अड्डे पर रोड़ा हो गया, पीछे मांगन वाली बोली का छोरा हो गया, आसन दे दूंगा, इशार बस अड्डे पर रोड़ा हो गया और पीछे मांगन वाली बोली का छोरा हो गया। एक जना नबला रही तो कुआरी थी, दूसरा नबला या तो लाचारी थी। भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, और खाकी वर्दी पहरे थानेदार ने देख के बोले की आंख पत्थर आ गई। थानेदार बोले की हालत ने देख के ऊपर तला लिखाओ था, और वो न बालक गुंठा चूस के जमाने ने अपना न दिखाओ था। थानेदार बोले मेरी धर्म की जाई, बताई पाप कितने लियाई। बोली ने होश आया, थोड़ा हशर ठाया, और न्यू बोली मात पिता ने जुलम करे मैं कूड़े बीच बगाई, मात पिता ने जुलम करे मैं कूड़े बीच बगाई और नहीं फेंकनिया था मेरी।
2: बहुत ही सुंदर और सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। आकाशवाणी केवल कार्यक्रम नहीं देता, आकाशवाणी जीवन को वो आकार देता है जिसे आने वाली पीढ़ी संवर जाती है। वर्ष 2015, मैं बस 20 सेकंड लूंगी क्योंकि क्योंकि जब सर बता रहे थे तो मुझे अपना भी सफर याद आ रहा था। वर्ष 2015 में पहली बार युवा संसार और एक लघु नाटक के जरिए आकाशवाणी से जुड़ना हुआ। 2016 में बतौर जनरल अनाउंसर सिलेक्शन हुआ, और हम सभी को पता है कि 2016 में एक अध्याय हरियाणा के रोहतक जिले के इतिहास में आया था कि उस समय 15 फरवरी से और 22 फरवरी तक हम सभी आगजनी का शिकार थे। कोई भी सड़क, कोई भी गली ऐसी नहीं थी जहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि ना हो। उस दौरान हमारा आकाशवाणी पर प्रशिक्षण हुआ, और पहले दिन का एक वाक्य जिसके कारण घर से मैं भी निकल पाई, रामफल चहल सर हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, और पहले ही दिन, क्योंकि दोपहर तक सामान्य माहौल था, जब ये हुआ कि सर कल कैसे आना होगा, तो सर का एक वाक्य था कि सियाचिन बॉर्डर पर भी लोग खड़े हैं, और उस एक वाक्य ने पूरे सप्ताह का हौसला दे दिया। 16 फरवरी से और 22 फरवरी तक हर रोज सुबह निकलना, 10 बजे आकाशवाणी पहुंचते थे, 6 बजे तक प्रशिक्षण लेते थे। आप सभी यकीन नहीं करेंगे कि सबको पता था कि ये लड़की हर रोज पैदल आएगी, हर रोज पैदल जाएगी। मिलिट्री खुद बता देती थी आज वहां पर माहौल सही, आज उस सड़क से जाओ, आज उस गली से जाओ। और उस दिन के बाद से आज तक केवल बोलना ही नहीं सिखाया, दिन रात का डर दूर किया, समय का प्रबंधन सिखाया कि यदि 5:59:59 पर दिल्ली से रिले जाना है तो 5:59:59 पर वाक्य कैसे खत्म होना चाहिए। ये बात इस मंच से मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज सभी जो बैठे हैं सामने आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी आकाशवाणी से जोड़िए। भले ही आकाशवाणी पर आज कार्यक्रम जो हैं वो सीमित हैं, लेकिन संभावनाएं आज भी असीमित हैं। अपने बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ने के लिए किसी कोचिंग सेंटर के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स या लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसको आपके शहर में बने हुए आकाशवाणी या दूरदर्शन के केंद्र की ज़रूरत है। सही मायने में वहाँ पर व्यक्तित्व गढ़ते हैं, और ये सभी नायाब हीरे जो माँ भारती को समर्पित रहते हुए अपना जीवन जी रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को इन्होंने तैयार किया है, मैं इन सभी को साधुवाद करती हूँ। और आकाशवाणी हिसार की टीम हमारे बीच है, दूरदर्शन हरियाणा की टीम हमारे बीच है, चंडीगढ़ से हमें विशेष सहयोग मिला है, उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी के सामने एक सामूहिक प्रस्तुति, उसके बाद हम 50 वर्षों का स्वर्णिम सफर एक केक काटने के माध्यम से हम यहाँ पर मनाएंगे। उसके बाद आप सभी के लिए, जो भी यहाँ पर आकाशवाणी के प्रस्तोता श्रोता है, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए सम्मान चिन्ह आकाशवाणी रोहतक ने रखे हैं, उनका वितरण किया जाएगा। और फिर आप सभी की फरमाइश पर यहाँ पर मंच पर सभी गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जो आप कहेंगे वो मंच से प्रस्तुत किया जाएगा। अभी एक सामूहिक प्रस्तुति मालविका दीदी और उनकी टीम से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ हरियाणवी कार्यक्रम होते हैं वहाँ वहाँ ये टीम अपनी प्रस्तुति दर्ज कराती है, आकाशवाणी से जुड़ी हुई है। जोरदार तालियां इस टीम के लिए आकाशवाणी के स्वर्णिम अवसर पर।

0: जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी जो रंगत बिखेरी है मंच पर। तो मालविका जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और अब इसके बाद एक ऐसी परंपरा जो हमारे श्रोता हैं उनके मन के उद्गार हैं, और उन्होंने महेंद्र शाह जी जो अपना एक स्नेह लेकर के आए हैं यहाँ पर, उसकी व्यवस्था मंच पर मैं आग्रह करूँगा हमारे साथियों से कि वो मंच पर उसकी तैयारी करें। और इसी बीच में हम जब बात करते हैं तकनीक की, तो तकनीक का एक ऐसा सम्मोहन होता है जो आपकी आवाज़ को, आपके प्रसारण को बहुत ही अलग अंदाज दे देता है। उसी तकनीक के एक हमारे बहुत उच्च अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, श्रीमान महावीर सिंह जी दोहन। प्लीज़ आएँ और थोड़ा सा समय हमें दें, थोड़ा बताएं कि एक आवाज़ एक स्टूडियो से और श्रोता तक पहुँचने में कितना परिश्रम होता है, कितना तकनीक का प्रयोग करके हम उस आवाज़ को एक सुपरफाइन बना करके अपने श्रोताओं तक देते हैं। तो बहुत सम्मान के साथ महावीर दोहन जी।
1: आदरणीय सभी आगंतुक मित्र मंडली, ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो पर्दे पे दिखती नहीं है और आवाज़ में सुनाई नहीं देती है। लेकिन सौभाग्य इसलिए भी था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी प्रभागों में मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और इंजीनियर तो मैं पेशे से था ही, मुझे डीडी भारती का भी चार्ज 2 साल के लिए मिला था, तो मैं कुछ संस्मरण आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि मानव की सभ्यता में तीन आविष्कार हुए हैं सबसे बड़े, एक है पहिए की खोज और एक आग की खोज, और तीसरा था संचार की। संचार क्रांति में 21 साल का लड़का था मार्कोनी इटली का, 1895 में उन्होंने जो है ये रेडियो तरंगों का किया था खोज। मैं अगर इतिहास की रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बात करूं तो उसमें मेरा अच्छा खासा अध्ययन किया हुआ है, और लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आकाशवाणी रोहतक से मुझे अनुभव मिला था उन चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले श्रोता के तौर पर, मैं जब जमशेदपुर, उन दिनों में बिहार था, आजकल तो झारखंड है, वहाँ जब पोस्टिंग थी तो आकाशवाणी की फोक म्यूजिक सुनने की बड़ी इच्छा थी। और ये सीमा दैया जो थी उस समय एक रात को 10 बजे थारी पसंद कार्यक्रम किया करते थे। उस थारी पसंद के लिए वहाँ भिवाणी से कुछ और बढ़िए लोग जमशेदपुर में थे, और वो सब आकाशवाणी के रेडियो कॉलोनी में, मुझे अब भी याद है उस समय की इतना भयानक मंजर होता था कि वहाँ एक तरफ मलखान सेना होती थी, एक तरफ है समाज का सब, मतलब वहाँ पर गुंडागर्दी चरम पर होती थी रात, वो सारे कॉलोनी में आया करते और हम बहुत ठट्ठे किया करते थे। यहाँ आकाशवाणी में आकर एक सबसे बड़ी जो चीज़, अभी आपने कार्यक्रम देखा, आवाज़ से जो चीज़ निकलती है वो सिर्फ एक एयर प्रेशर है, इसको बिजली बनाना और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के माध्यम से रिसीवर तक जाना, ये सारा काम इंजीनियर्स का होता है। गंभीर साहब हैं यहाँ 86 वर्षीय, जो क्या कहेंगे इसके वेटरन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने सारा उतार चढ़ाव देखा है। हम आकाशवाणी रोहतक में होते थे तो श्री कृष्ण शर्मा म्यूजिक, हमारा बड़ा कन्फ्रंट होता था कि कलाकार और माइक कहाँ रखना है, कैसे करना है, वो मेरा डोमेन है। और हम कहा करते थे कि आपको यही नहीं पता इस माइक की फ्रीक्वेंसी और सेंसिटिविटी क्या है, कि आपका अभी भी आज भी मैं देख रहा था कि नगाड़ा इतना डोमिनेट कर रहा था कि महावीर जी थोड़ा पीछे हो जाते थे, इनकी आवाज़ तो पीछे दब जाती थी। तो ये एक चीज़ ऐसी थी जिस पर हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया। एक चीज़ और जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो रेडियो टावर्स, जेसी बोस ने कहा था इवन मेटल्स हैव फीलिंग्स, जो भावनाएं हैं वो पेड़ पौधों में तो होती है, मेटल्स में भी हैं। कि टावर्स के ऊपर हमने एक अच्छा अध्ययन किया था जिस पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था एशिया पैसिफिक बोर्ड। वर्मा जी से एक बड़ा उनका सिग्नेचर सॉन्ग है, वो असल में आजकल शायद वो भी खुद भूल गए, एक गीत हुआ करता था, पाड़ियो रे पाड़ियो इतना तो दियो रे बताए गोकुल कितनी के दूर, वो शायद अब भी भूल गए लेकिन बहुत वो था। मुझे लगता है कि रेडियो की आवाज़ आप तक जाती है, और तरंगों का जो विज्ञान है इसके ऊपर कभी न कभी एक विस्तृत वार्ता भी हम किसी से करेंगे। फिलहाल बड़ा अच्छा लगा, जितने ज़्यादा पुरोधा हैं आकाशवाणी के वो सब यहाँ पर आए हैं और उन लोगों का लाइव इंटरेक्शन देखा, और एक श्रोता के तौर पर भी जो लोगों ने ये प्यार भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी रोहतक या आकाशवाणी इटसेल्फ शाश्वत है, इसका कार्यक्रम चलता रहे, रूप बदलता जाएगा। हमने डिजिटल पर बहुत काम किया था एनालॉग से, वो रूप बदल जाएगा लेकिन आकाशवाणी कभी खत्म नहीं होगा आपके साथ, और उनको जिंदा रखने के लिए आवाज़ तो इनकी होंगी, तरंग हमारी होंगी। जय
0: महेंद्र शाह जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा, आप आएँ और आप जो एक एक आकाशवाणी के जन्म दिवस पर लेकर के आए हैं, और इसी क्रम में मैं हमारे क्लस्टर हेड सुमित गोयल जी से अनुरोध करूंगा, डीपी मलिक जी से अनुरोध करूंगा, रामफल चहल जी, सुमन मंजरी जी, सुमित्रा हुड्डा जी और महावीर दोहन जी और महावीर गुड्डू जी को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा कि वो आए और इस परंपरा का निर्वहन करें केक काट करके। कैलाश वर्मा जी और आकाशवाणी हिसार से हमारे पवन जी आए हुए हैं, हमारे एडीपी पवन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आए, और मिसिस गोयल आई हुई है हमारे बीच में बड़े सम्मान के साथ, उनका भी आमंत्रण है, प्लीज मैम आए और आप भी सहभागी बने, इन क्षणों के गवाह बने कि आकाशवाणी की गोल्डन जुबली पर 50 वर्ष पूरे होने पर एक श्रोताओं का प्यार हम सब ने मिलकर के साझा किया, हम सब ने मिलकर के उसको बहुत अनुभव से, बहुत ही अनुभूति के साथ उसको जिया। और महावीर गुड्डू जी एक सम्मान खुद अपने साथ भी लेके आए हैं हमारे आकाशवाणी के एडीपी संजय बाली जी के लिए, एक सम्मान एक पगड़ी के रूप में, जो कि सबसे बड़ा सम्मान होता है पगड़ी किसी को पहनाना। तो संजय बाली जी प्लीज आए मंच पर और ये सम्मान आप स्वीकार करें। निदेशक आकाशवाणी रोहतक की जो जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं सुमित गोयल जी की अगुवाई में हमारे जी क्लस्टर हेड हैं, और
2: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर भूमिका शर्मा इजाजत लेती हूँ, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रोहतक की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर ये रेडियो रिपोर्ट। इसमें गायक कलाकार थे महावीर गुड्डू, सोमवीर कथुरवाल, मीनाक्षी मालविका, गुलाब सिंह खांडेवाल, कैलाश चंद वर्मा, रणवीर वर्णवासनिया। संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रेम सिंह, नगाड़े पर सुभाष, सरंगी पर राजेश, हारमोनियम पर दिनेश और क्लारनेट पर ओम प्रकाश। वाचन था सपूर सिंह बागड़ी का और भूमिका शर्मा का, प्रस्तुति थी संजय वाले की। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि की 11:46 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण ही समाप्त होते हैं, कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, जय हिंद।